नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल, लेकर हाजिर हूँ आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ, आपकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ वागड़ रेडियो पर। साथ ही साथियों, हम देख पा रहे हैं कि स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बज चुके हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोता साथियों, आज सभा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले भक्ति, श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी से। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। अगला कार्यक्रम होगा इसी कड़ी में सच्चा बचपन। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर, और इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोता साथियों, इसी के बाद हम रूबरू होंगे कार्यक्रम आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर के साथ में। फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे अधिकार कानून नियमों से जुड़ा सच्चा स्वराज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और अंजलि पारशर। इसी क्रम में श्रोता साथियों, आगे बढ़ते हुए हम रुक करेंगे हमारी परंपराओं लोक राजस्थानी गीतों से जुड़ा कार्यक्रम लोक संगीत, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8:30 पर राजस्थानी गीतों के साथ में। श्रोता साथियों, फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मेरे साथ में यानी कि आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल के साथ में, और मेरे साथ होगी हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर। आगे बढ़ते हुए हम सुन पाएंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर। श्रोता साथियों, फिर हम रूबरू होंगे कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से, इसे लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 10:00 बजे। फिर इसी क्रम में हम रुख करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों, आप अपने फरमाइश के गीतों को सुन सकते हैं 11 से 1 बजे तक वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, और फरमाइश के गीतों को दे सकते हैं प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, यह तो थी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज की सभा में सबसे पहले कार्यक्रम आराधना से।

0: आज के सुविचार।
1: दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करते हैं। हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि इन सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं, और यदि अनजाने में भी कोई अन्य व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है, क्या हमने कभी विचार किया? सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देते, अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोपते, अर्थात किसी की स्वतंत्रता का अस्वीकार करते हैं। और जब स्वतंत्रता का अस्वीकार किया जाता है तो उसका हृदय दुख से भर जाता है, और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का देह है, क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं? स्वयं विचार कीजिए।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाए
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन
0: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके
2: जल्दी थकान थावी शारीरिक कमजोरी याददाश्त में कमी श्वास फूलवू आ सब एनीमिया ना लक्षण है
0: होवे भयन बोनू आ लक्षण आपड़ने आपड़े मैं देखाए तो आपड़ने आपड़े पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निशुल्क जांच करावी सुवे
2: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है
0: होवे एनीमिया ते की बचा बल्ले आपड़ने खवाना में दाल पत्तेदार सब्जी गुड़ बाजरा तिल नींबू ने संतरा गोभी तरबूज आंवला टमाटर नु सेवन करवो सुवे
2: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो अनिमिया थकी बची शकंगा
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बुनो ने आपनी बुन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बुन आप हमरी रहो आपरो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु घणे मन स्वागत करो हो अमारे आसे कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम की भाई बुनो अमे अमारे टेम माते हासिल थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाथे। तो भाई बुनो आज हमारे कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नो विषय है कि खरीफ नो आज सीजन चाली रू है, इनमें अपने अवड़े ना टेम में कई कई बातों नो ध्यान रखू है ने अणी वातों नो ध्यान रखते तके आपड़े आपड़ा उत्पादन ने असल तरीका तकी हेते प्राप्त करी शकों। तो अणा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी अब तकी घणा कानी वात थाएंगा, पण कार्यक्रम शुरू कर इने पहले आपने हमरा विदा गीत ने मोरे कर आपड़ी वाते। तो बाइन बोनो आप हमरते रेजू आपड़ो रेडियो आपड़ी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: ये बहुत जरूरी है कि हम किस तरह से हमारी फसल का ख्याल रखें। तो देखा जाए तो आप देखते हैं कि जो खरीफ की जो भी फसल है उसमें क्या है कि ये ऐसा समय है जो फसल पक रही है, अगर फलियां हैं तो उनमें दाने जो है उनका ग्रोथ हो रहा है, वो पक रहे हैं। मक्की के बूटे हैं, उनका ग्रोथ हो रहा है और वो पक रहे हैं। तो उसी तरह जैसे आपके अरहर है या कपास है या सोयाबीन है या बाजरा है, ज्वार है, या फिर आपका जो मिलेट्स है, रागी है, कुरी है, अगर ये आपने कर रखा है, तो इन सबको अभी समय है उनका पकने का और पकने की अवस्था हो चुकी है शुरू और कुछ समय बाद में जो है वो पक चुकी होगी। तो इसी तरह क्या है कि अभी वर्तमान में जो दो तीन चार चीजें हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला काम तो ये है कि आप जो है केवल खेत को दूर से नहीं देखें, उसको निरीक्षण जरूर करें। होता क्या है कि हमारे खेत है तो हम क्या तीन चार खेत है तो एक खेत तो आपके पास में है लेकिन दो खेत बहुत दूर है या आपका जाना नहीं होता है और दूर से आप देख के फसल अच्छी दिख रही है। तो वो अच्छी दिख रही है तो हो सकता है उसके अंदर कहीं प्रकार की समस्याएं पैदा हो सकती है। तो इस तरह से आप एक बार सप्ताह में दो बार कम से कम जाए खेत के चारों तरफ आप देखें, खेत के अंदर जाकर उसमें देखें कि किस तरह से जो आपकी फसल है वो पक रही है और दाने की अवस्था क्या है। इसके साथ ही ये देखना जरूरी है कि आपकी पत्तियों का रंग कैसा है, उन पौधे और जो आपकी फलियां हैं या बुट्टे हैं तो उनका ग्रोथ कैसा है, वो बढ़वार कैसी है उनकी, उसी तरह तने की जो स्थिति क्या है, इसी तरह अगर फलियां लगी हुई है तो उनकी बालियों की क्या स्थिति है। तो इसको पास से देखना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से खेत का हमें निरीक्षण करते रहना चाहिए क्योंकि जैसे हमारा खेत है, हमारी मिट्टी है, उस तरह से कहीं आपको ऊंची जगह मिलेगी, कहीं ढलान में हमारी जमीन है, कहीं जगह ऐसा है कि पानी भर गया हो, ऐसी स्थिति हो, मेड़ के पास अगर कुछ जैसे कीड़े वगैरह जो पैदा हो जाते हैं वो, तो इस तरह से उनका देखना जरूरी है।
1: बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से हमारे किसान भाई बहनों को अभी के समय में खेत का जो नियमित है वो निरीक्षण करना है, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, बारिश रुक सी गई है, तो मिट्टी की नमी को कैसे बनाकर रखना है हमारे किसान भाई बहनों?
0: देखिए, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि वर्तमान में आप देख रहे हैं कि हमारा जो पर्यावरण है उसमें जो बदलाव आया है उसके कारण जो है बारिश में अनियमितताएं आई है।
1: बिल्कुल,
0: कभी हो रही है तो कभी बिल्कुल नहीं हो रही है। और इस बार तो हमने सबने देखा है कि जो गर्मी है वो अभी जो हम गर्मी के दिन है उससे बेहतर गर्मी पड़ रही है।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह क्या होता है कि अभी क्या फसल पकने का समय है तो उसके पौधों को नमी भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: तो नमी के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अभी आप खेत में जाएं और उस मिट्टी को देखें कि उसमें कितनी नमी है।
1: बिल्कुल।
0: अगर नमी बिल्कुल नहीं है या सूख रहा है तो पौधे आपके पीले पड़ने लगेंगे, पत्तियां पीली हो जाएगी। अगर ऐसी स्थिति है तो आपके पास अगर पानी उपलब्ध है तो आप उसमें पानी जरूर दें, हल्का पानी पिलाएं, ऐसा नहीं कि आपको उसको भरना है।
1: बिल्कुल।
0: हल्का पानी जरूर दें। दूसरा, आप देखें कि उनकी जड़ें हैं, उन जड़ों को आप अगर अच्छे से देखेंगे मिट्टी के अंदर तो जड़ें नीचे सूखने लगेगी मिट्टी के साथ।
1: बिल्कुल।
0: और मिट्टी जो फटने लगेगी वहां आस पास से पेड़ के, तो हमें देखना चाहिए कि उसमें नमी कम है। अधिक नमी है तो आपको जो पेड़ है या खेत के अंदर आप थोड़ा सा मिट्टी को हटाकर देखेंगे तो पता लग जाएगा। अब बात रही इसको बना के कैसे रखें, तो बनाने के लिए एक तो ये है कि खेत में जो हमारे पत्तियां हैं जो उसमें गिर जाती है या ऐसे खरपतवार है जो हमारी खेती को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो उनको उखाड़ के इस समय तो बाहर नहीं निकालना, क्योंकि वो अभी आपका पलवार का काम कर रहे हैं अंदर, क्योंकि जो मिट्टी और जो हमारा पेड़ है उस दोनों के बीच में वो है, तो क्या कि पूरी तरह से जो गर्मी है जो धूप है सीधी उस मिट्टी पे नहीं जाती।
1: जी जी।
0: दूसरा क्या है कि जैसे हमारे यहाँ खेती करते हैं तो हम बहुत अच्छी स्थिति से करते हैं कि लाइन से करते हैं, तो होता क्या है कि हमारे जो पौधों की दूरियां ज्यादा होती है तो इस कारण वो जो धूप आती है वो सीधी मिट्टी पे गिरती है।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए उनको बचा कर रखे। दूसरा है, अगर आपके पास में कुछ फसलों के अवशेष है या आपने गाय भैंस जो आप रखते हैं पशु उनके जो चारा का अवशेष निकलता है आप उसको फैला सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: ताकि वो आपको अच्छे से मल्चिंग का काम करेगा। इस तरह से हमें रखना चाहिए। दूसरा कि अगर आपके पास पानी है तो क्योंकि अभी फसल पकने की स्थिति है तो आप उसमें पानी जरूर दे सकते हैं, हल्का पानी पिलाए ताकि उसको नुकसान ना हो। नहीं तो फिर दाने जो है आपके वो पकने में क्या होगा कि उस गुणवत्ता के साथ नहीं पकेंगे।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से हमें मिट्टी की नमी का ध्यान रखना है, खरपतवार का जो नियंत्रण है वो कैसे करना है, यही कीट और रोग की पहचान हमारे किसान भाई बहन कैसे कर सकते हैं?
0: देखिए, कीट और रोग है उसकी पहचान का सबसे आसान तरीका है वो है हमारा निरीक्षण। आप पौधों को बहुत नजदीक से देखें और देखें कि उसमें जैसे कोई कीट लग रहा है, या पत्तियों में है, या फिर जो पेड़ की जड़ों में है, या उसके तना में दिक्कत है, या फिर जो फसल लगी हुई है जैसे अगर मक्की के भुट्टे लगे हुए हैं तो उनको वो एक दो को खोलकर जरूर देखें कि अंदर की स्थिति क्या है। अगर उसमें जैसे सफेद मक्खी है या नीचे फंगस है या इस तरह की कोई दिक्कतें हैं, या जो शत्रु कीट है वो पूरी तरह से उस पर हावी है या कुछ नुकसान हो रहा है,
1: बिल्कुल,
0: तो उसका बिल्कुल बारीकी से आपको फसल को देखना पड़ेगा। कहीं जैसे आपके अगर मूंग है या आपने उड़द लगा तुअर है तो उसकी फली को आप खोल के देखें,
1: बिल्कुल,
0: तो उससे आपको पता लगेगा कि क्या स्थिति है। तो इस तरह से हमें है जो उसको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा कि अगर आपको लग रहा है कि कोई कीट है तो हमारे जो परंपरागत जो हम दवाइयां हैं जैसे दसपनी है, हमारे नीमास्त्र है, जीव अमृत है, तो ये चीजें हैं दोनों काम करती है। एक तो फसल को पोषण भी देती है और इनसे खाद भी मिलता है,
1: बिल्कुल,
0: तो और ये आपके कीटों को जो दूर भगाती है। वो कीट तो आप उसका छिड़काव करें लेकिन वो स्थिति देखने के बाद आप ये निर्णय लें कि कौन सी दवाई आपको छिड़कनी है और कौन से खेत में देनी है।
1: बिल्कुल,
0: हो सकता है कि सभी खेतों में ना हो, थोड़े एक दो खेत में हो, तो उस तरह से देख कर हमें परंपरागत जो दवाइयां हो उसका छिड़काव करना चाहिए।
1: बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातों से हमें अवगत करवा रहे हैं, तो और भी कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिनका हमारे किसान भाई बहनों को इस समय ध्यान रखने की जरूरत है?
0: जी, तो अगर और जो हम बात करते हैं कि अभी हमें और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो एक तो यह कि खेत में अगर अभी पानी नहीं है, बारिश नहीं है, लेकिन हो सकता है तेज बारिश हो जाए अचानक,
1: बिल्कुल,
0: तो उसकी निकासी की व्यवस्था आप पहले से तैयार रखें। दूसरा, जो पौधे हैं जो अनावश्यक पौधे होते हैं जिसको बोलते हैं, तो वहां पे क्या है कि होता क्या है कि हम उस मिट्टी खोद के पौधों को निकालने की कोशिश करते हैं या उनको काट लेते हैं। तो पहले देखें कि अगर आपने मिट्टी में कोई गड्ढा कर रहे हो तो गड्ढा आसपास की जो फसल आपको उसको नुकसान पहुंचा सकता है,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि वो आपकी मिट्टी का जो नमी है उसको प्रभावित करता है। इसी तरह जो है जैसे हम बात करते हैं कि इस समय फसल पक रही है तो इस समय एक ये भी कर सकते हैं, बीजों की जो पहचान है वो भी आप कर सकते हैं कि जो अच्छे पौधे हैं जिनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है तो आप उनको टेक लगा सकते हैं, मतलब कुछ कपड़ा बांध दिया आपने कि ये पौधों से मुझे बीज लेना है, तो वो भी आप अभी कर सकते हैं,
1: बिल्कुल,
0: उसको पहचान करके। इसके साथ में जो है जब बीज की बात हम करते हैं क्योंकि अभी फिर अपनी फसल का समय आ जाएगा, तो अभी क्या उसी तरह से हमको सिलेक्शन करना चाहिए, चुनाव करना चाहिए, ताकि आपकी जो आगे फिर से आपको बीज की जरूरत ना पड़े या फिर हमको बाजार में नहीं जाना, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है कि खेत में फसल लगी हुई है उसको आप परिवार के साथ जाकर उसको देखें, ताकि इससे एक प्रभाव और होगा कि आप बच्चों को भी साथ लेकर जाएंगे तो वो भी किस तरह से आप उसका संरक्षण कर रहे हो, निरीक्षण कर रहे हो, वो लोग चीजें समझते हैं।
1: बिल्कुल।
0: दूसरा कि कीट दिखाई अगर दे रहा है तो आपने तुरंत उस पर कुछ छिड़कने की कोशिश ना करें,
1: बिल्कुल,
0: पहले उसको अच्छे से जाने पहचाने क्या प्रकोप है, कौन सी दवा उसमें काम करेगी, कैसे करेगी, वो जरूर। इसके बाद में जो खरपतवार है जिसमें हमने बोला है कि उसका नियंत्रण है वो आप सोच समझ के रखें ताकि उसकी जो पैदावार है उसको प्रभावित ना करें।
1: बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आपने कार्यक्रम में बताया हमारे श्रोता साथियों को कि खरीफ की जो फसल अभी के समय में है उसका ध्यान उन्हें कैसे रखना है और किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान देते हुए उन्हें अपने उत्पादन को बनाए रखना है, तो बातें ढेर सारी हो गई हैं, तो अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जी, तो मैं सभी को ये संदेश देना चाहूंगा कि खरीफ की फसल की जो अंतिम अवस्था है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो वर्तमान की फसल को बचाने का समय है, तो आप जो है बल्कि अपने जो मौसम है, नींव है, तो उसकी जो आने वाली फसल की नींव भी आप रखने वाले और इसको बचाना भी है,
1: बिल्कुल,
0: तो बहुत सोच समझ के जो है आप लोग अपने खेत का निरीक्षण करें, उसकी अवस्था को जानें और अच्छे पैदावार के लिए फसल का संरक्षण करें।
1: बिल्कुल। तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: जी धन्यवाद।
1: भाई बोनो जिम के अवडे आपने वैसे में मांगीलाल जी जुड़े तक हता ने एने आपना ने घणी असल तरीका थे कि घणा कानी बातें बताड़ी है। आशा कर रहा हूं कि आ हंगरी बातें आपने गमी होंगा क्योंकि अभी टाइम थे गयो है आपने अणस कार्यक्रम तक ही सूटा पड़वानो। तो सूटा तो पड़ा पर साथ पहले हमरी लाइक और गीत ने मोरे पड़ो सूटा।

0: हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। साथियों आज हम कार्यक्रम में बात करने वाले हैं कि बच्चों के लिए अच्छा खाना बहुत जरूरी है या सिर्फ खाना खिलाना ही पर्याप्त नहीं है। यह भी समझना जरूरी है कशिश कि बच्चे क्या कितना और किस उम्र में खा रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: आजकल बच्चों के पोषण को लेकर कई तरह की बातें सुनने को मिलती है। कोई कहता है कि बच्चा मोटा है तो स्वस्थ है, कोई कहता है कि महंगा हेल्थ ड्रिंक ही बच्चे के लिए बहुत ताकतदार होता है, कोई सोशल मीडिया पर देखकर किसी एक खाद्य पदार्थ को बच्चों के लिए सबसे अच्छा मान लेता है। लेकिन श्रोता साथियों, क्या हर सुनी सुनाई बात सही है? ये जरूरी नहीं है। तो आज कार्यक्रम सच्चा बचपन में हम बात करेंगे सही जानकारी से सही पोषण, भ्रम से कैसे बचें।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो बातें इस विषय को लेकर ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत-संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्या ना शुरुआत इसी दस्तूर को निभाते हुए एक प्यारे से गीत के साथ हम करें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले विषय से तो रूबरू आपको करा ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं सही जानकारी से सही पोषण को लेकर, साथ ही हम भ्रम से कैसे बच सकते हैं। अगर बात करें अंजलि जी की सही पोषण क्यों जरूरी होता है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चों का शरीर लगातार बढ़ रहा होता है, उनकी हड्डियों, मांसपेशियों, दिमाग और रोगों से लड़ने की क्षमता के विकास के लिए अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत होती है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए साथियों, बच्चे की थाली में केवल पेट भरने वाला भोजन नहीं बल्कि विविध और संतुलित भोजन भी होना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: जैसे कि दालें, अनाज, सब्जियां, मौसमी फल, दूध, दही, अंडा, परिवार में उपलब्ध होने वाली पौष्टिक खाद्य पदार्थ जो होते हैं, वो बच्चे की उम्र और जरूरत के अनुसार बच्चों के भोजन का हिस्सा बनाए जा सकते हैं। साथ ही एक ही चीज रोज खिलाने से श्रोता साथियों भोजन में विविधता नहीं देखी जाती, इसलिए आपसे कहना चाहेंगे कि आप बच्चे को एक ही चीज रोज न खिलाएं बल्कि भोजन में विविधता बनाए रखें।
1: जी हाँ, यही कशिश अब बात आती है कि भ्रम से कैसे बचें। तो श्रोता साथियों, बच्चे के भोजन को लेकर सबसे जरूरी बात है कि हर सलाह को तुरंत सच न माने। मोबाइल पर कोई वीडियो देखकर या किसी रिश्तेदार से सुनकर बच्चे के खाने में बड़ा बदलाव करने से पहले यह जरूर देखें कि जानकारी विश्वसनीय है या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है कि कोई एक खाद्य पदार्थ बच्चे की हर कमजोरी दूर कर देगा, तो ऐसी बातों पर सावधानी जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह किसी बच्चे को देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि वह स्वस्थ है या नहीं। केवल मोटा या दुबला दिखना ही बच्चे के स्वास्थ्य का पूरा पैमाना नहीं है। अगर बच्चे का वजन और विकास ठीक नहीं लग रहा, बच्चा लगातार खाना नहीं खा रहा या कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानी है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ANM और चिकित्सक से सलाह लेना बेहतर होगा।
0: बिल्कुल अंजलि जी, यही हम बात करें तो कई माता पिता बच्चे को खाना खिलाने के लिए मोबाइल चलाते हैं या बच्चे के मना करने पर जबरदस्ती खिलाते हैं। ऐसे में हम उनसे कहना चाहेंगे कि बच्चों को प्यार और धैर्य से भोजन कराना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: उसे श्रोता साथियों अलग अलग पौष्टिक चीजों का स्वाद और बनावट समझने का आप मौका दें। छोटे बच्चों के लिए उम्र के अनुसार भोजन की मात्रा और बनावट में बदलाव जरूरी होता है। जैसे कि 6 महीने पूरे होने के बाद स्तनपान के साथ उम्र के अनुरूप पूरक आहार शुरू किया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: हर बच्चे की जरूरत अलग हो सकती है साथियों, इसलिए किसी दूसरे बच्चे की डाइट देखकर अपने बच्चे की डाइट तय करना सही तरीका नहीं हो सकता।
1: बिल्कुल कशिश, यही बात आती है मोबाइल की जानकारी को कैसे परखें, क्योंकि जब भी बच्चों के पोषण से जुड़ी कोई जानकारी मोबाइल पर मिले तो 3 बातें हमेशा याद रखनी है। पहली, जानकारी किसने दी है। दूसरी, कि क्या उसका कोई विश्वसनीय आधार है। तीसरी, कि क्या जानकारी मेरे बच्चे की उम्र और जरूरत के लिए सही है। अगर जवाब स्पष्ट नहीं है तो उसे आगे भेजने के बजाय पहले किसी स्वास्थ्य कर्मी से पूछें।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि गलत जानकारी सिर्फ एक संदेश नहीं होता बल्कि वह हमारे बच्चे की थाली तक पहुंच सकती है। इसलिए बच्चे का स्वस्थ बचपन केवल इस बात से तय नहीं होता कि उसने आज कितना खाना खाया है, जरूरी यह है कि उसे मिलने वाला भोजन पौष्टिक, सुरक्षित और उसकी उम्र के अनुसार होना चाहिए।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से बातें हमारी बहुत अच्छी चल रही है, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, आज हम कार्यक्रम में जान रहे हैं सही जानकारी से सही पोषण, भ्रम से कैसे बचें। यही श्रोता साथियों बात बताना चाहेंगे आपको कि हमें बच्चों के भोजन को लेकर सुनी सुनाई बातों और सोशल मीडिया के हर दावे पर आंख बंद करके विश्वास करने के बजाय सही जानकारी की पहचान करनी होगी।
1: बिल्कुल,
0: हमारे घर में उपलब्ध दाल, अनाज, सब्जियां, फल और अन्य खाद्य पदार्थ भी बच्चे के लिए उपयोगी हो सकते हैं। जरूरत है कशिश तो बस उन्हें सही तरीके से और विविधता के साथ भोजन में शामिल करने की।
1: जी
0: और
1: हाँ।
0: सबसे जरूरी, अगर बच्चे के पोषण या विकास को लेकर कोई चिंता हो तो अनुमान लगाने के बजाय स्वास्थ्य कर्मी से सलाह ले, क्योंकि सही जानकारी से सही थाली बनती है और सही थाली से मजबूत बचपन बनता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें तो बच्चों की भूख को समझना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि हर दिन बच्चे की भूख एक जैसी नहीं होती, कभी बच्चा ज्यादा खाएगा तो कभी कम। इसलिए श्रोता साथियों, एक दो बार कम खाने पर घबराने के बजाय पूरे दिन के भोजन और बच्चे की सक्रियता पर आप ध्यान दें।
0: बिल्कुल,
1: खाने की तुलना दूसरे बच्चों से न करें, जैसे कि देखो तुम्हारी उम्र का बच्चा कितना खाता है और तुम इतना कम। श्रोता साथियों, ऐसी तुलना बच्चे पर दबाव डाल सकती है।
0: बिल्कुल,
1: हर बच्चे की पसंद और खाने की क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए आप खाने की क्षमता पर ध्यान न दें।
0: बिल्कुल कशिश, यही बात करें तो बिस्किट, नमकीन, मीठे पेय और दूसरे पैकेट वाले खाद्य पदार्थ जो हैं, वो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आ सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन उन्हें पौष्टिक भोजन का विकल्प नहीं समझना चाहिए। घर का जो अलग अलग खाना होता है उसको ही हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। इसी के साथ, बच्चे ने अच्छा काम किया है तो हर बार उसे चॉकलेट देना या गलती करने पर खाना रोक देना सही आदत नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: इससे बच्चे के मन में भोजन को लेकर गलत संबंध बन सकते हैं।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही अगर बात करें श्रोता साथियों तो भोजन की स्वच्छता भी पोषण का एक हिस्सा होती है। जैसे कि पौष्टिक खाना अगर साफ सफाई के बिना तैयार किया गया हो तो बच्चा बीमार पड़ सकता है। ऐसे में हाथ धोना, साफ पानी इस्तेमाल करना और भोजन को ढककर रखना उतना ही जरूरी है अंजलि जी।
0: बिल्कुल,
1: माता पिता की चिंता स्वाभाविक होती है, लेकिन बच्चे को उसकी इच्छा के विरुद्ध बार बार खिलाने के बजाय शांत वातावरण में भोजन की आदत विकसित करना बेहतर हो सकता है। इसलिए ज्यादा खिलाना हमेशा सही नहीं है साथियों। आपको कहना चाहेंगे कि बच्चे की थाली देखकर सिर्फ ये मत पूछिए कि उसने कितना खाना खाया, ये भी देखिए कि उसने क्या खाया, कैसे खाया और क्या वो भोजन उसकी जरूरत के अनुसार था। भ्रम से बचने का सबसे आसान तरीका है सुनी हुई बात को तुरंत मानना नहीं, सही स्रोत से जानना, क्योंकि बच्चों के पोषण में छोटी सी सही जानकारी रोज की आदत बदल सकती है और गलत जानकारी लंबे समय तक बच्चों को और उनकी सेहत पर नुकसान पहुंचा सकती है।
0: बिल्कुल कशिश, यही श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि बच्चे की सेहत की नींव किसी एक दिन या किसी एक भोजन से नहीं बनती, यह रोज की छोटी छोटी आदतों से तैयार होती है। बच्चा क्या खाता है, खाने का माहौल कैसा है, परिवार भोजन को लेकर उससे किस तरह बात करता है और बीमारी या कमजोरी के समय सही सलाह कहाँ से लेता है, इन सभी बातों का असर उसके

0: बचपन पर पड़ता है। इसलिए बच्चों के पोषण को लेकर हमें डर या भ्रम के बजाय समझ और धैर्य अपनानी चाहिए। हर नई जानकारी को सच मानने की जल्दबाजी न करें, खासकर जब बात बच्चे के स्वास्थ्य की हो। तो सोशल मीडिया की सलाह या किसी के व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर निर्णय लेने के बजाय विश्वसनीय स्वास्थ्य कर्मी से जानकारी लेना ज्यादा सुरक्षित है।
1: बिल्कुल,
0: तो जैसा कि कशिश बातें कार्यक्रम में बहुत अच्छी चल रही है, कुछ और छोटे मोटे महत्वपूर्ण बातें हैं वो कार्यक्रम के माध्यम से हम आगे अवश्य करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: जी हाँ अंजलि जी।
2: चकरका

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि कशिश गीत से पहले तो हमने ढेर सारी बातों को जान ही लिया, यही श्रोता साथियों से अंत में कहना चाहेंगे कि बच्चों को स्वस्थ बनाने की जिम्मेदारी केवल माँ की नहीं होती है, पिता, दादा दादी और परिवार के दूसरे सदस्य भी भोजन और देखभाल में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। जब पूरा परिवार मिलकर बच्चे की थाली और उसकी आदतों पर ध्यान देता है तो बच्चे के लिए स्वस्थ वातावरण बनता है। बच्चों को भी धीरे धीरे अपने भोजन को पहचानना सिखाएं, उन्हें बताएं कि अलग अलग रंग की सब्जियां क्यों खानी चाहिए, दाल और दूसरे प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ क्यों जरूरी है, पानी क्यों पीना चाहिए और हाथ साफ रखना क्यों जरूरी है। जब बच्चा भोजन का कारण समझने लगता है तो स्वस्थ आदतें केवल माता पिता के कहने से नहीं उसकी अपनी समझ से बनने लगती है। और हाँ श्रोता साथियों, बच्चों के स्वस्थ होने का मतलब यह नहीं है कि वह हमेशा ज्यादा खाए, उसका वजन लगातार बढ़ता रहे। असली बात यह है कि उसका उम्र के अनुसार विकास सक्रिय रहना, सामान्य रूप से खाना पीना और जरूरत पड़ने पर समय पर स्वास्थ्य सलाह मिलना। इस तरीके से हम अपने घर से छोटे से शुरुआत कर सकते हैं, बच्चे की थाली में बदलाव के साथ अपनी जानकारी में भी बदलाव ला सकते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी हो चुकी है और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी जी,
1: तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे कार्यक्रम का पता हम हमारे दोस्तों को बताएं।
0: बिल्कुल, तो लिख लीजिए श्रोता साथियों, हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
1: बिल्कुल,
0: हमारा फोन नंबर है 9414082643।
1: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हमारी बातें रहने वाली है कि एक सफर हजार सीख यात्रा युवाओं को कितना बदल सकती है। श्रोताओं, जैसा कि कभी आपने सोचा होगा कि हम जब अपने घर से बाहर निकलते हैं, किसी नए शहर में जाते हैं, किसी गांव को देखते हैं, पहाड़ों के बीच पहुंचते हैं, किसी ऐतिहासिक जगह को देखते हैं या फिर किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत करते हैं, तो आखिर हमारे भीतर क्या बदलता है?
0: बिल्कुल,
1: कि यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का नाम है या फिर यात्रा हमारे सोचने का तरीका है, लोगों को समझने का नजरिया है और खुद को पहचानने का तरीका भी बदल सकती है।
0: जी हाँ।
1: तो इसी सवाल के साथ आज का हमारा विषय है, जैसा कि एक सफर हजार सीख यात्रा युवाओं को कितना बदल सकती है। तो
0: जी हाँ,
1: विषय को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत में, जैसा कि हमारा दस्तूर है कि शुरुआत में हम हमारे श्रोता साथियों को गीत संगीत सुनवाते हैं, तो सुनवा देते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।
0: बिल्कुल, तो युवा साथियों आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय से रूबरू आपको करा ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं एक सफर हजार सीख को लेकर, और यात्रा हमारे युवाओं को कितना बदल सकती है। जागृति जी, अगर यहाँ पर बात करें कि यात्रा सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि अनुभव होती है, तो हम अक्सर यात्रा को छुट्टियों, घूमने फिरने और तस्वीरें खींचने से जोड़कर देखते हैं। किसी नई जगह जाना, वहाँ की खूबसूरत तस्वीरें लेना, दोस्तों के साथ समय बिताना या फिर वापस घर आ जाना। लेकिन दोस्तों, अगर हम थोड़ा गहराई से देखेंगे तो यात्रा इससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है।
1: बिल्कुल,
0: यात्रा हमें किताबों से बाहर की दुनिया पढ़ाती है। किताब में हम किसी गांव के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम उस गांव में जाकर वहां के लोगों से मिलते हैं, जागृति जी, उनकी दिनचर्या देखते हैं, उनके संघर्षों और खुशियों को समझते हैं, तब उस जानकारी का अर्थ हमारे लिए और अलग हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: हम किसी संस्कृति के बारे में किताबों में पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम उस संस्कृति के लोगों के साथ बैठते हैं, उनका भोजन देखते हैं, उनकी भाषा सुनते हैं और उनकी परंपराओं को समझते हैं साथियों, तब हमें महसूस होता है कि दुनिया कितनी विविध है। इसलिए कहा जा सकता है कि एक सफर कई बार हजार किताबों जितना अनुभव दे सकता है।
1: जी हाँ,
0: हालांकि यात्रा किताबों का विकल्प नहीं है, लेकिन किताबों से मिली जानकारी और यात्रा से मिले अनुभव एक दूसरे को और मजबूत कर सकते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि युवा अवस्था जीवन का वो समय है जब व्यक्ति अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में और दुनिया के बारे में बहुत कुछ समझने की कोशिश करता है। यही वो समय है जब हमारे सामने कई सवाल आते हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मेरा क्या लक्ष्य है, मुझे किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहती हूँ, मेरी ताकत क्या है, मेरी कमजोरी क्या है। श्रोताओं, इन सवालों के जवाब हमेशा सिर्फ घर या किताबों में नहीं मिलते, कई बार हमें अपने जवाब अनुभव से मिलते हैं।
0: हाँ।
1: और यात्रा ऐसे अनुभव का एक महत्वपूर्ण माध्यम हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: जब युवा अपने परिचित वातावरण से बाहर निकलते हैं कशिश, तो उसे अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हम देखते हैं कि उन्हें नए लोगों से बात करनी पड़ती है, रास्ते समझने पड़ते हैं, समय का ध्यान रखना होता है और कभी कभी अचानक बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना भी पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: और यहीं से शुरू होती है असली सीख।
0: जी हाँ जागृति जी, अगर हम बात करें कि यात्रा से हमारे युवा साथियों को क्या क्या सीख मिलती है, तो श्रोता साथियों, पहली सीख है आत्मनिर्भर बनना। जैसे कि यात्रा हमें सबसे पहले चीज जो सिखाती है वो है आत्मनिर्भरता। जागृति जी, घर में रहते हुए बहुत सी चीजें हमारे लिए पहले से व्यवस्थित होती है, जैसे कि समय पर खाना हमें मिल जाता है, जरूरत की चीजें आसानी से मिल जाती है, कहीं पर अगर जाना हो तो कोई साथ छोड़ देता है। लेकिन जब हम यात्रा पर होते हैं तो कई निर्णय हमें खुद लेने पड़ते हैं साथियों।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि कहाँ जाना है, कितने समय में पहुँचना है, अपनी चीजों का ध्यान कैसे रखना है, अनजान परिस्थिति में किससे मदद लेनी है। इन छोटी छोटी परिस्थितियों से और जिम्मेदारियों से आत्मनिर्भरता विकसित होती है।
1: जी हाँ,
0: ऐसे में हमारी युवा साथियों को धीरे धीरे ये समझ आ जाता है कि हर समस्या का समाधान कोई दूसरा नहीं करेगा, कई बार हमें खुद भी रास्ता तलाशना होगा।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, ये सीख आगे चलकर जीवन की बड़ी परिस्थितियों में भी हमारे काफी काम आती है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि हम जिस वातावरण में बड़े होते हैं वही हमें दुनिया की पहली तस्वीर देता है। हमारे घर की परंपराएं, हमारे आसपास के लोग, हमारा शहर या गांव, इन सब का हमारी सोच पर प्रभाव पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जब हम दूसरी जगह जाते हैं तो हमें पता चलता है कि दुनिया में चीजों को देखने के बहुत सारे तरीके हैं। कहीं लोग अलग भाषा बोलते हैं, कहीं पहनावा अलग होता है, कहीं भोजन अलग होता है, कहीं रहने का तरीका अलग होता है, कहीं लोग त्योहार अलग तरीके से मनाते हैं, लेकिन इन सभी विविधताओं के बीच इंसान की भावनाएं कई जगह एक जैसी होती है।
0: जी बिल्कुल,
1: खुशी, दुख, मेहनत, उम्मीद, परिवार, दोस्ती और सपने, ये जो भावनाएं हैं वो सीमाओं से बड़ी होती है। यात्रा युवाओं को ये समझने में मदद कर सकती है श्रोताओं कि अलग होना गलत नहीं है।
0: बिल्कुल जागृति जी, साथी दोस्तों, यात्रा हमें सिर्फ जगहों से नहीं बल्कि लोगों से भी मिलाती है। तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से बातें कर ही रहे हैं और आगे भी ये बातें हमारी जारी रहेंगी, हम जानेंगे कि लोगों को समझना

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी कि एक सफर हजार सीख यात्रा युवाओं को कितना बदल सकती है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जान पा रहे थे कि यात्रा सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि हमारा अनुभव भी होती है।
1: बिल्कुल,
0: युवा और यात्रा का क्या रिश्ता होता है इसके बारे में भी हमने जाना था। साथ ही आत्मनिर्भर बनाना किस तरह से यात्रा हमें सिखाती है और दुनिया हमारी सोच से बड़ी किस तरह से हो सकती है, यही जानते हैं कि लोगों को समझना क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि कशिश, यात्रा हमें सिर्फ जगहों से नहीं लोगों से भी मिलाती है। किसी यात्रा में हम ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जिनकी जिंदगी हमारे अनुभव से बिल्कुल अलग हो।
1: जी जी,
0: किसी छोटे गांव का किसान हमें खेती के बारे में ऐसी बात बता सकता है जो हमने किताब में कभी नहीं पढ़ी हो।
1: बिल्कुल,
0: किसी स्थानीय कारीगर से मिलकर हमें पता चल सकता है कि एक साधारण से दिखने वाली वस्तु के पीछे कितनी मेहनत और कौशल छिपी है। किसी दुकानदार से बातचीत हमें स्थानीय अर्थव्यवस्था समझा सकती है। किसी बुजुर्ग से बातचीत हमें इतिहास की ऐसी कहानी सुना सकती है जो किसी किताब के पन्ने से भी ज्यादा जीवंत लगे।
1: बिल्कुल,
0: यात्रा हमें समझाती है श्रोताओं की हर व्यक्ति के पास एक कहानी है और हर कहानी से कुछ सीखा जा सकता है।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि साथियों कई बार हम किसी वस्तु को तैयार रूप में देखते हैं और उसके पीछे की मेहनत भूल जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जब हम किसी गांव में जाकर खेती देखते हैं, किसी हस्तशिल्प केंद्र में कारीगर को काम करते हुए देखते हैं, किसी पहाड़ी क्षेत्र में लोगों की दिनचर्या देखते हैं या किसी स्थानीय बाजार में छोटे व्यापारियों से मिलते हैं श्रोता साथियों, तो हमें ये समझ आता है कि रोजमर्रा की जिंदगी कितनी मेहनत से चलती है। यात्रा हमारे भीतर श्रम के प्रति सम्मान पैदा कर सकती है। तब हमें महसूस होता है जागृति जी कि किसी भी काम को छोटा समझना सही नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: हर काम के पीछे किसी व्यक्ति का समय होता है, कौशल होता है और मेहनत छिपी हुई होती है।
0: जी हाँ कशिश, इसी के साथ समस्या समाधान की क्षमता भी हमें यात्रा सिखाती है। साथ ही समय और जिम्मेदारी भी हमें यात्रा से हमें अनुभव हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: हर यात्रा कैमरे में नहीं बल्कि हमारे अनुभव में होती है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी भी हमारी बढ़ जाती है जब हम यात्रा करते हैं। अपनी पहचान को भी हमें समझना होता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपसे कहना चाहेंगे कि मान लीजिए श्रोताओं कि एक युवा अपने शहर से पहली बार किसी दूसरे राज्य की यात्रा पर जाता है। शुरुआत में उसे लगता है कि ये बस कुछ दिनों की घूमने की यात्रा है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात अलग अलग लोगों से होती है।
1: बिल्कुल,
0: वो एक छोटे से गाँव में रुकता है, वो एक किसान से बातचीत करता है, उसे पता चलता है कि किसान मौसम, पानी और बाजार की कई चुनौतियों के बीच खेती करता है। आगे वो एक स्थानीय कारीगर से मिलता है और देखता है कि एक साधारण वस्तु बनाने में घंटों की मेहनत लगती है।
1: बिल्कुल,
0: फिर वो किसी ऐतिहासिक स्थान पर जाता है और समझता है कि जिस इतिहास को उसने किताबों में सिर्फ कुछ पन्नों में पढ़ा था उसके पीछे कितनी लंबी कहानी है। घर लौटते समय वह वही व्यक्ति नहीं होता जो यात्रा शुरू करते समय था। उसका शहर वही है, उसका घर वही है, उसके दोस्त वही है, लेकिन उसकी नजर अब बदल चुकी है। अब वो मेहनत को अलग नजर से देखने लगता है कशिश, लोगों के जीवन को समझने की कोशिश करता है, प्रकृति के प्रति ज्यादा जिम्मेदार महसूस करता है।
1: जी हाँ,
0: और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि वो खुद को थोड़ा बेहतर समझने लगता है और यही है यात्रा की असली ताकत।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि युवाओं के लिए यात्रा का मतलब सिर्फ महंगे होटल, बड़ी गाड़ी या सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालना नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: साथियों, यात्रा का मतलब हमारे लिए होना चाहिए नई जगह देखना, नई भाषा सुनना, नई संस्कृति को समझना, इतिहास को जानना, स्थानीय लोगों से मिलना, प्रकृति को समझना, नई परिस्थितियों का सम्मान करना और सबसे बढ़कर खुद को थोड़ा और जानना।
0: जी हाँ,
1: जरूरी नहीं है कि सीखने के लिए हमेशा दूर देश ही जाना पड़े। कई बार हमारे आसपास का कोई गांव भी हमारे लिए एक नई दुनिया हो सकता है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, अपने ही जिले का कोई ऐतिहासिक स्थल हमें एक नया इतिहास सिखा सकता है, किसी स्थानीय बाजार की यात्रा हमें छोटे व्यापार की समझ दे सकती है और किसी किसान से बातचीत हमें मिट्टी और मेहनत की कीमत समझा सकती है। यानी कि जागृति जी, सफर की कीमत दूरी से नहीं अनुभव से तय होती है।
0: बिल्कुल कशिश, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि यात्रा हमें संवेदनशील भी बनाती है। जब हम केवल अपने जीवन को देखते हैं तो हमारी समस्या हमें सबसे बड़ी लग सकती है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जब हम अलग अलग लोगों की जिंदगी देखते हैं तो हमें समाज की विविध वास्तविकताओं का अनुभव हो जाता है। किसी के पास कम साधन हो सकते हैं लेकिन फिर भी वो खुश रहने की कोशिश कर रहा है, कोई कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपना काम कर रहा है, कोई अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे अनुभव हमें दूसरों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बना सकते हैं। हम समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी अलग परिस्थितियाँ होती है, इसलिए किसी को उसकी स्थिति देखकर तुरंत जज करने के बजाय उसके अनुभव को समझने की कोशिश करनी चाहिए।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि दोस्तों सवाल ये नहीं है कि हमने कितनी यात्राएं की हैं, सवाल तो ये है कि उन यात्राओं ने हमें कितना बदला है।
0: बिल्कुल,
1: अगर यात्रा के बाद हम थोड़ा अधिक जिम्मेदार बने हैं तो यात्रा सफल रही, अगर हम दूसरों की संस्कृति का सम्मान करने लगे हैं तो अभी हमारी यात्रा सफल है, अगर हम प्रकृति को लेकर ज्यादा संवेदनशील हुए हैं श्रोता साथियों और अगर हमने किसी नए कौशल या करियर के बारे में सोचना शुरू कर दिया है तो भी हमारी यात्रा सफल हो चुकी है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि असली यात्रा वह नहीं होती जो केवल हमें किसी स्थान तक ले जाए। असली यात्रा तो वह है जागृति जी, जो हमें अपने पुराने विचारों से आगे लेकर जाए।
0: जी हाँ कशिश, तो हमारे श्रोता साथियों को यही कहना चाहेंगे हमारी आज की इस बातचीत से कि श्रोता साथियों, सफर हमेशा मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होता, कई सफर हमें खुद तक पहुंचाने के लिए भी होते हैं। एक रास्ता हमें नया शहर दिखा सकता है, एक मुलाकात हमें नई सोच दे सकती है, एक गांव हमें मेहनत का अर्थ समझा सकती है, एक पहाड़ हमें धैर्य सिखा सकता है कशिश, और एक नदी हमें निरंतर आगे बढ़ना सिखा सकती है।
1: जी हाँ।
0: और एक छोटी सी यात्रा भी हमारे भीतर कोई बड़ा बदलाव ला सकती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए श्रोताओं, अगली बार जब आप यात्रा पर निकले तो केवल ये मत सोचिए कि मैं क्या देखने जा रहा हूँ, बल्कि ये भी सोचिए कि मैं क्या सीखने जा रहा हूँ, क्योंकि एक सफर हजार सीख दे सकता है अगर हमारी नजर सिर्फ रास्ते पर नहीं सीख पर हो तो।
1: बिल्कुल, याद रखिए युवा साथियों, रास्ते बदलते रहेंगे, जगह बदलती रहेंगी।
0: बिल्कुल,
1: और लोग भी मिलते और बिछड़ते रहेंगे, लेकिन हर सफर अपने साथ कोई ना कोई सीख जरूर छोड़ सकता है।
0: जी हाँ।
1: तो निकलते रहिए यात्रा पर, सीखते रहिए, अनुभव करते रहिए और अपने हर सफर को अपनी जिंदगी की एक नई पाठशाला बनाते रहिए।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि कशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की और उम्मीद करते हैं कि बातें हमारे श्रोता साथियों को जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ।
0: इन्हीं उम्मीदों के साथ आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेना चाहेंगे, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो दोस्तों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को। नमस्कार।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिंदगी पर बात की शुरुआत पानी तक ही करो। थोड़ू सी व्यायाम ने तात्कालिक जीवन जीवन। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगाव। जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपना वंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके। जल्दी थकान थावी शारीरिक कमजोरी याददाश्त में कमी श्वास फूलवू आ सब एनीमिया ना लक्षण है। होवे भाईन बोनु आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े में देखाय तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे। आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है। होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल पत्तेदार सब्जी गुड़ बाजरा तिल नींबू ने संतरा गोभी तरबूज आंवला टमाटर नु सेवन करवो सुवे। होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दाल खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा। वागड़ रेडियो एवं वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो जूनू हवाद सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा ज्वार रागी ने मक्का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो बेशी अनाज तकी ना तू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाघ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है सही जानकारी, जागरूक नागरिक और मजबूत लोकतंत्र को लेकर। अंजलि, लोकतंत्र केवल चुनाव के दिन मतदान करने का नाम नहीं है। लोकतंत्र की असली ताकत एक ऐसे नागरिक में होती है जो अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझता है, सही जानकारी प्राप्त करता है और किसी भी बात को बिना जांचे परखे आगे नहीं बढ़ता।
0: बिल्कुल,
1: आज के समय में हमारे हाथ में मोबाइल फोन है, इंटरनेट है और कुछ ही सेकंड में देश दुनिया की खबरें हमारे सामने आ जाती है। लेकिन जानकारी की ये तेजी अपने साथ एक चुनौती भी लेकर आती है, सही और गलत जानकारी में अंतर करना।
0: बिल्कुल,
1: किसी भी समाज में गलत सूचना भ्रम पैदा कर सकती है श्रोताओं, लोगों के बीच अविश्वास बढ़ा सकती है और सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकती है। इसके विपरीत हम देखते हैं अंजलि कि तथ्यपूर्ण और विश्वसनीय जानकारी नागरिकों को समझदारी से निर्णय लेने में मदद करती है। इसलिए कहा जा सकता है कि सही जानकारी जागरूक नागरिक की पहचान है और जागरूक नागरिक मजबूत लोकतंत्र की नींव है।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी कार्यक्रम में इस विषय पर हम ढेर सारी बातों को जानेंगे, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था और बातें भी रही थी कि हमारा विषय है सही जानकारी, जागरूक नागरिक और मजबूत लोकतंत्र को लेकर।
1: बिल्कुल, तो यही बात करें कि सही जानकारी क्यों जरूरी है। तो श्रोता साथियों, हम अपने दैनिक जीवन में अनेक निर्णय जानकारी के आधार पर लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: खेती से जुड़ा निर्णय हो, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हो, शिक्षा का विषय हो या सरकारी योजना का लाभ लेना हो, सही जानकारी आवश्यक है। क्योंकि जागृति जी, यदि किसी किसान को मौसम, फल, बीज या सरकारी सहायता से संबंधित गलत जानकारी मिल जाए तो उसका नुकसान हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: इसी तरह स्वास्थ्य से जुड़ी अफवाह किसी व्यक्ति को गलत कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकती है। इसलिए जानकारी प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी विश्वसनीयता से जांच करना भी जरूरी है। क्योंकि सही जानकारी हमें तथ्यों को समझने, सवाल पूछने और अपने निर्णय स्वयं लेने की क्षमता भी देती है।
0: बिल्कुल अंजलि, जागरूक नागरिक वो है जो केवल अपने अधिकारों की बात नहीं करता, बल्कि अपने कर्तव्य को भी समझता है। वो समाज और देश से जुड़े विषयों में रुचि रखता है, कानून और नियमों का सम्मान करता है और दूसरों के अधिकारों का भी ध्यान रखता है। श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कहना चाहेंगे कि जागरूक नागरिक वो है जो अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझता है, मतदान के महत्व को जानता है, सरकारी योजना और सार्वजनिक सेवाओं की जानकारी प्राप्त करता है, अफवाहों पर तुरंत विश्वास नहीं करता, सूचना के स्रोत की जांच करता है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करता है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जिम्मेदार रहता है,
1: बिल्कुल
0: जाति, भाषा, क्षेत्र या किसी अन्य आधार पर भेदभाव से बचता है, समाज में शांति और भाईचारे को बढ़ावा देता है, अपनी बात के साथ दूसरों की बात सुनने का भी सम्मान करता है। ऐसे नागरिकों की सक्रिय भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आज हम देखते हैं कि सोशल मीडिया सूचना का बड़ा माध्यम बन चुका है।
0: बिल्कुल,
1: कोई संदेश, वीडियो या तस्वीर कुछ ही समय में हजारों लोगों तक पहुंच सकती है। यही कारण है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय नागरिक की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हमें किसी भी संदेश को केवल श्रोता साथियों इसलिए सही नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि वह किसी परिचित व्यक्ति ने भेजा है। किसी समाचार या दावे को आगे भेजने से पहले ये जरूर देखें कि वह जानकारी किस स्रोत से आई है, कब की है और क्या किसी विश्वसनीय माध्यम से उसकी पुष्टि हुई है। पहले जांचें, फिर माने, उसके बाद ही साझा करें, क्योंकि यह डिजिटल नागरिकता का महत्वपूर्ण सिद्धांत हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि गलत जानकारी को आगे बढ़ाना केवल एक छोटी गलती नहीं होती है, इससे किसी व्यक्ति, संस्था, समुदाय के बारे में गलत धारणा बन सकती है। इसलिए जिम्मेदार नागरिक सोशल मीडिया पर भी सोच समझकर व्यवहार करता है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि लोकतंत्र नागरिकों को कई अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा, सूचना और अन्य लोकतांत्रिक अधिकार नागरिकों को सशक्त बनाते हैं। लेकिन अधिकारों के साथ कर्तव्यों की समझ भी जरूर रखते हैं। अपनी बात रखना हमारा अधिकार हो सकता है श्रोताओं, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति का अपमान करना या जानबूझकर गलत सूचना फैलाना जिम्मेदार नागरिकता नहीं है। इसी तरह हमें अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन साथ ही कानून का पालन, सार्वजनिक व्यवस्था का सम्मान और समाज के प्रति जिम्मेदारी को भी समझना होगा।
1: जी हाँ, क्योंकि हम देखते हैं जागृति जी कि लोकतंत्र में अलग अलग विचार होना स्वाभाविक हो सकता है। हर व्यक्ति किसी विषय को अपने अनुभव और समझ के आधार पर अलग तरीके से देख सकता है। मजबूत लोकतंत्र में विचारों की विविधता के लिए स्थान होते हैं। जागरूक नागरिक असहमति को दुश्मनी नहीं समझता, वो अपनी तर्क और तथ्यों के आधार पर रखता है और दूसरे व्यक्ति की बात सुनने का प्रयास करता है। इसलिए संवाद लोकतंत्र को जोड़ता है, जबकि अफवाह और गलत जानकारी समाज में दूरी बढ़ा सकती है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि गांव की ग्राम सभा से लेकर बड़े लोकतांत्रिक संस्थानों तक लोगों की भागीदारी और संवाद लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। जब नागरिक सवाल पूछते हैं, सुझाव देते हैं और जागृति जी सार्वजनिक विषयों पर चर्चा करते हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था अधिक सहभागी बनती है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि लोकतंत्र की शुरुआत हमारे आसपास के समाज से होती है। गांव में ग्राम सभा जैसी व्यवस्थाएं लोगों को स्थानीय विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा और भागीदारी का अवसर देती है। सड़क, पानी, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सार्वजनिक संसाधन और विकास कार्यों से जुड़े विषयों की जानकारी रखना गाँव के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है। कह सकते हैं कि एक जागरूक ग्रामीण नागरिक यह जानने का प्रयास करता है कि उसके गांव में कौन से विकास कार्य हो रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य है और उपलब्ध जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं उनका उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। जब गांव के लोग जानकारी के साथ अपनी बात रखते हैं तो श्रोता साथियों सामूहिक रूप से समस्याओं पर चर्चा करते हैं, तो स्थानीय लोकतंत्र मजबूत हो पाता है।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें निरंतर चल रही है, तो ये बातें आगे भी चलती रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि जागृति जी गीत से पहले हम जान पाए कि सही जानकारी, जागरूक नागरिक और मजबूत लोकतंत्र क्या है और उसका क्या महत्व है।
1: बिल्कुल अंजलि, यही जानते हैं युवाओं की भूमिका को लेकर। युवा किसी भी समाज की महत्वपूर्ण शक्ति है। आज युवा तकनीक से जुड़े हैं और तेजी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि युवाओं के लिए डिजिटल साक्षरता और तथ्य जांच की समझ बहुत आवश्यक है। अंजलि, अगर युवा सोशल मीडिया का उपयोग सकारात्मक जानकारी, शिक्षा, रोजगार, नवाचार और सामाजिक जागरूकता के लिए करेंगे तो वे समाज में अपना बड़ा योगदान दे सकते हैं। युवाओं को भी समझना होगा कि हर वायरल चीज सही नहीं होती और हर आकर्षक संदेश तथ्यपूर्ण नहीं होता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होगी।
1: बिल्कुल।

0: महिलाओं को अपने अधिकारों, सरकारी योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसरों की जानकारी होना बहुत जरूरी है और ये जो जानकारी होती है वो उन्हें अधिक सशक्त बनाती है।
1: बिल्कुल,
0: जब महिलाएं परिवार और समाज से जुड़े तो निर्णय में अपनी बात रख पाती हैं और सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेती हैं तो लोकतांत्रिक भागीदारी का दायरा भी बढ़ पाता है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने में सामुदायिक रेडियो अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। स्थानीय भाषा और स्थानीय संदर्भ में प्रसारित जानकारी लोगों तक आसानी से पहुंचती है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, मौसम, सरकारी योजनाएं, स्थानीय समस्या और सामाजिक जागरूकता, ये सारे विषयों पर विश्वसनीय जानकारी लोगों को अपने निर्णय बेहतर तरीके से लेने में मदद कर सकती है। श्रोताओं, सामुदायिक रेडियो केवल सूचना देने का माध्यम नहीं है बल्कि समुदाय की आवाज को सामने लाने का माध्यम भी बन सकता है और बन भी रहा है। जब स्थानीय लोग अपनी समस्या अनुभव साझा करते हैं अंजलि, तो संवाद और सहभागिता मजबूत होती है। अफवाहें अक्सर अधूरी या बिना प्रमाण वाली जानकारी से जन्म लेती है। कभी कभी एक छोटी सी गलत बात कई लोगों तक पहुंचते पहुंचते बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। इसीलिए श्रोताओं, हमें कुछ सरल बातें याद रखनी होगी। रुके, स्रोत देखें, तथ्य को जांचें, समझें और फिर साझा करें। अगर किसी जानकारी से डर, नफरत या भ्रम पैदा हो रहा है तो उसे बिना पुष्टि के आगे बढ़ाने के बजाय विश्वसनीय स्रोत से जांच कराना भी जरूरी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है। सही और गलत जानकारी में अंतर करना भी एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, एक शिक्षित और जागरूक नागरिक सवाल पूछता है, यह जानकारी कहां से आई है, क्या इसके पीछे कोई प्रमाण है, क्या अन्य विश्वसनीय स्रोत में यही बात कह रहे हैं। ऐसी सोच जागृति जी केवल जानकारी का उपभोक्ता व्यक्ति को नहीं बनाती बल्कि जिम्मेदार सूचना उपयोगकर्ता भी बनाती है।
1: बिल्कुल,
0: यही बात करें कि लोकतंत्र को मजबूत करने के क्या प्रयास हैं जो हम कर सकते हैं, तो श्रोता साथियों, हम हमेशा कहते हैं कि बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ हमारे रोजमर्रा के छोटे व्यवहार में परिवर्तन लाने की जरूरत है। सही जानकारी साझा करना, मतदान के महत्व को समझना, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता रखना, नियमों का पालन करना, ग्राम सभा और स्थानीय बैठकों में भाग लेना, दूसरों की बात सुनना और अफवाहों से बचना, ये सभी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी के उदाहरण हैं। जब लाखों नागरिक अपने छोटे छोटे कर्तव्यों को जिम्मेदारी से निभाएंगे जागृति जी, तब लोकतंत्र की नींव मजबूत हो सकती है।
1: जी हाँ अंजलि, लोकतंत्र केवल संस्थाओं से नहीं चलता बल्कि नागरिकों की जागरूकता और भागीदारी से मजबूत होता है। सही जानकारी नागरिकों को समझ देती है, समझ उसे जागरूक बनाती है और जागरूक नागरिक लोकतंत्र को मजबूत करता है। इसीलिए श्रोताओं, आज आवश्यकता केवल अधिक जानकारी की नहीं बल्कि सही जानकारी की पहचान और जिम्मेदार उपयोग की है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी सूचना को बिना जांचे आगे नहीं बढ़ाए, अपने अधिकारों के साथ कर्तव्य को भी समझे, दूसरों के विचारों का सम्मान करें और समाज के हित में जिम्मेदारी से भागीदारी निभाए, क्योंकि सही जानकारी से जागरूक नागरिक बनता है, जागरूक नागरिक से जिम्मेदार समाज बनता है और जिम्मेदार समाज से मजबूत लोकतंत्र बनता है। कहना चाहेंगे कि जानकारी सही होगी, सोच जागरूक होगी तो लोकतंत्र की नींव और भी मजबूत बनेगी।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से सही जानकारी, जागरूक नागरिक और मजबूत लोकतंत्र का निर्माण हो सकता है। आशा करते हैं कि सभी बातें श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagthara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
0: हिंडो स्कूल जा आपड़े, आपड़ा भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है हमारी परंपराओं की और हमारे अपने स्वास्थ्य से जुड़ी बातों। श्रोता साथियों, जरा सोचिए कि जब हम छोटे थे तब हमारे घरों में सुबह का नाश्ता क्या होता था। कहीं बाजरे की रोटी पर घर का बना घी लगाया जाता था तो कहीं मक्के की रोटी के साथ छाछ पी जाती थी, कहीं ज्वार की रोटी और लहसुन की चटनी खाने को मिलती थी, तो कहीं रागी का दलिया बनता था तो कहीं मक्का भूनकर बच्चों को दिया जाता था। उस समय शायद हम इन चीजों को मनीषा साधारण भोजन समझते थे।
0: जी हाँ,
1: हमें लगता था कि यह तो रोजमर्रा का खाना है, इसमें कौन सी खास बात है। लेकिन आज समय बदल गया है, हमारी थाली में कई तरीके के पैकेट वाले खाद्य पदार्थ, मैदा से बनी चीजें, मीठे पेय और जल्दी तैयार होने वाला जो खाना है वो हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। श्रोता साथियों, आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हमने कई बार अपने पारंपरिक भोजन को पीछे छोड़ दिया है।
0: बिल्कुल,
1: जिस बाजरे, ज्वार, मक्का और रागी को कभी हमारे घरों में बड़े चाव से खाया जाता था, आज उन्हीं अनाजों को दोबारा पहचानने और अपनाने की हमें जरूरत महसूस होती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं मोटे अनाज, परंपरागत भोजन और आधुनिक स्वास्थ्य को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं हमारे देश में भोजन की परंपरा बहुत पुरानी है। हमारे पूर्वज अपने आसपास उगने वाली चीजों को अपने भोजन का हिस्सा बनाते थे। उस समय श्रोता साथियों, आज की तरह बाजार में हर तरह के पैकेज्ड खाद्य पदार्थ तो उपलब्ध नहीं थे। गांव में लोग खेतों में पैदा होने वाले अनाज, दाल, सब्जियां, फल और दूसरे प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का उपयोग करते थे। श्रोता साथियों, इन्हीं पारंपरिक खाद्य पदार्थों में एक महत्वपूर्ण स्थान था मोटे अनाज का।
1: बिल्कुल
0: हम देखते हैं श्रोता साथियों कि बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का, कोदो, कुटकी, सागा और दूसरे जो अनाज होते हैं वे हमारे देश की पुरानी परंपरा का हिस्सा रहे हैं। इन्हें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और देश के कई हिस्सों में श्रोता साथियों इन्हीं अनाजों से रोटी, खिचड़ी, दलिया, लड्डू और कई तरह के पारंपरिक व्यंजन भी बनाए जाते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, उसी भोजन के गुणों को आधुनिक पोषण विज्ञान भी समझने और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। तो क्या श्रोता साथियों, हमारे दादा दादी और नाना नानी की रसोई में स्वास्थ्य का कोई ऐसा खजाना छिपा था जिसे हम आधुनिक जीवन की दौड़ में भूलते जा रहे हैं? क्या मोटे अनाज केवल पेट भरने का साधन है या ये हमारे शरीर को पोषण देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? क्या हम अपनी पुरानी खान पान की परंपराओं को आज के जीवन के साथ जोड़ सकते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब के साथ आज हम कार्यक्रम में ढेर सारी बातें जान रहे हैं कि किस तरीके से मोटे अनाज जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। मोटे अनाज जिन्हें आजकल मिलेट्स भी कहा जाता है, ऐसे अनाजों का समूह मनीषा जिनमें बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, सावा और अन्य छोटे अनाज शामिल होते हैं। मक्का भी हमारे पारंपरिक भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि श्रोता साथियों, पोषण की दृष्टि से उसे मिलेट्स के इस समूह से अलग अनाज माना जाता है।
0: जी हाँ,
1: हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में जलवायु, मिट्टी और खान पान की परंपराओं के अनुसार अलग अलग प्रकार के अनाज उगाए और खाए जाते हैं। जैसा कि मनीषा आपने बताया, राजस्थान के शुष्क इलाकों में बाजरा लंबे समय से लोगों के भोजन की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है। वहीं हमारे वागड़ क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की मिट्टी, मौसम, खेती और ग्रामीण जीवन का भोजन जो है वो उससे उनका बहुत ही गहरा रिश्ता है।
0: बिल्कुल,
1: यहाँ घरों में बनने वाली मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, दाल, छाछ, मौसमी सब्जियाँ और स्थानीय तरीके से तैयार किए जाने वाले खाद्य पदार्थ केवल भोजन नहीं होते बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही जीवन शैली का हिस्सा है। पहले के समय में लोगों का भोजन काफी हद तक स्थानीय खेती पर निर्भर करता था।
0: जी हाँ।
1: खेत में जो अनाज पैदा होता घर में उसी से भोजन तैयार होता था। फसल कटने के बाद अनाज को सुरक्षित रखा जाता था और जरूरत के अनुसार उसका उपयोग किया जाता था।
0: जी हाँ।
1: घर की महिलाएं अनाज को साफ करती, पीसती, आटा तैयार करती और परिवार के लिए अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाती थी। उस समय भोजन का संबंध केवल स्वाद से नहीं था, मौसम के अनुसार भोजन बदलता था। सर्दियों में बाजरे की रोटी और गर्म तासीर वाले पारंपरिक व्यंजन पसंद किए जाते थे। गर्मी में छाछ, दही, स्थानीय पेय, हल्का भोजन अधिक लिया जाता था।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं। तो ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से मोटा अनाज जो है वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, यहीं बात करें तो श्रोता साथियों, मोटा अनाज जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हमने बाजरा, कोदो और कई सारे जो मोटे अनाज होते हैं उनके बारे में जाना। यहीं बात करें तो श्रोता साथियों, घर में उपलब्ध और मौसम के अनुसार मिलने वाला जो अनाज, फल, सब्जियां, दालें इस्तेमाल हम करते हैं वो बाजार के महंगे खाद्य पदार्थों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हम देखते हैं कि मोटे अनाजों को साफ सुथरे तरीके से हमें रखना चाहिए, उनमें नमी नहीं आने देना चाहिए, आटे को बहुत लंबे समय तक खुला नहीं रखना है और जहाँ संभव हो जरूरत के अनुसार ताजा आटा पिसवाना चाहिए। अनाज को अच्छी तरह पकाकर खाएं। बहुत अधिक तेल, घी, नमक, चीनी डालने से किसी भी पौष्टिक खाद्य पदार्थ का संतुलन बिगड़ सकता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए श्रोता साथी, व्यंजन तैयार करते समय मात्रा और पकाने के तरीके का भी ध्यान रखें। यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का रोग या कोई समस्या है तो उसके लिए हमें विशेषज्ञ से सलाह लेने की जरूरत है, फिर ही इन सारी चीजों का हम किस तरीके से, किस समय और कितनी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी अनुसार हमें इस्तेमाल करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं श्रोता साथियों कि मोटे अनाज में फाइबर पाया जाता है। फाइबर युक्त भोजन पाचन तंत्र के सामान्य स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है।
0: बिल्कुल।
1: जब श्रोता साथियों भोजन में पर्याप्त फाइबर होता है तो आहार संतुलित बनने में मदद मिलती है, लेकिन फाइबर बढ़ाने के साथ पानी की पर्याप्त मात्रा भी बहुत जरूरी होती है। यदि श्रोता साथियों कोई व्यक्ति अचानक बहुत अधिक फाइबर वाला भोजन शुरू कर देता है तो कुछ लोगों को पेट में गैस या भारीपन जैसी परेशानियां हो सकती हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए श्रोता साथियों भोजन में बदलाव धीरे धीरे करना हमारे लिए बेहतर होता है। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि भोजन को हमें अच्छी तरह से चबा कर खाना है।
0: बिल्कुल। इसी के साथ श्रोता साथियों, आज हम देखते हैं कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में आजकल हर घर में हमें देखने को मिल जाता है। इस स्थिति में शरीर रक्त में मौजूद ग्लूकोज यानी शर्करा को सामान्य रूप से नियंत्रित नहीं कर पाता। ऐसे में भोजन का चुनाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम जो भी अनाज खाते हैं उसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट पाचन के दौरान टूटकर ग्लूकोज में बदल सकते हैं। इसलिए यह समझना गलत होगा कि मोटे अनाज खाने से रक्त शर्करा बिल्कुल नहीं बढ़ती, लेकिन साबुत अनाजों में मौजूद फाइबर और उसकी संरचना भोजन के पाचन और ग्लूकोज के अवशोषण की गति को प्रभावित कर सकती है। कुछ मोटे अनाज और उनसे बने कम संसाधनीय खाद्य पदार्थ संतुलित भोजन का हिस्सा बनकर रक्त शर्करा के प्रबंधन में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मनीषा, कोई व्यक्ति केवल बहुत अधिक मात्रा में रोटी खाता है तो उसके भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है वो अधिक हो सकती है, लेकिन यदि वह उचित मात्रा में रोटी के साथ दाल, सब्जी, सलाद भी लेता है तो भोजन में पोषण की विविधता पड़ती है। मधुमेह से पीड़ित जो व्यक्ति है उसे बाजरा, ज्वार, रागी को अपने जरूरत के अनुसार भोजन में शामिल करना चाहिए, लेकिन अनाज की मात्रा और उसे तैयार करने का तरीका भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज पूरी दुनिया में पानी और पर्यावरण को लेकर चिंता भी बढ़ रही है। ऐसे समय में श्रोता साथियों ऐसी फसलों पर ध्यान देना हमारे लिए बहुत जरूरी है जिन्हें स्थानीय परिस्थितियों में उगाना आसान होता है। कई मोटे अनाज कम पानी में भी उगाए जा सकते हैं और कठिन मौसम सहन करने की क्षमता भी रखते हैं। इस कारण श्रोता साथियों मोटे अनाज को टिकाऊ खेती और स्थानीय खाद्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जाता है। जब हम स्थानीय अनाज खाते हैं तो हमें अपने क्षेत्र की कृषि, पारंपरिक भोजन के बारे में जानने का अवसर भी मिलता है।
0: बिल्कुल मनीषा, हमारे शरीर को मजबूत बनाए रखने में हड्डियों और दांतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हड्डियों का विकास बचपन से शुरू होकर किशोरावस्था और वयस्क जीवन तक जारी रहता है। उम्र बढ़ने के साथ में भी हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखना बहुत जरूरी है। हड्डियों की मजबूती के लिए हमें कैल्शियम, विटामिन डी, महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही पर्याप्त प्रोटीन, शारीरिक गतिविधियां और धूप से मिलने वाला विटामिन डी भी महत्वपूर्ण होता है। रागी यानी की नाचनी, इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसे भोजन में शामिल करना कैल्शियम के सेवन को बढ़ाने का एक उपयोगी तरीका हो सकता है। रागी से दलिया, रोटी, चिल्ला और कई तरीके के अलग अलग व्यंजन बनाकर हम खुद और बच्चों को भी खिला सकते हैं। यहीं अब बात करें तो महिलाओं में खून की कमी और मोटे अनाज का क्या योगदान है, तो श्रोता साथियों हमारे समाज में महिलाओं का स्वास्थ्य परिवार और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कई बार महिलाएं घर के काम, बच्चों की देखभाल और रोजगार की जिम्मेदारी के बीच में अपने भोजन को पीछे छोड़ देती हैं। महिलाओं में एनीमिया यानी कि खून की कमी एक महत्वपूर्ण पोषण संबंधित समस्या है। एनीमिया में शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम हो सकती है। इसके कारण कई स्वास्थ्य समस्याएं उन्हें होती हैं। इसके लिए अगर वे भोजन में बाजरे और अन्य जो दालें हैं, चना है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, विटामिन सी से भरपूर जो खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि नींबू, अमरूद, आंवला, इनको अगर शामिल करें, तुम देखेंगे कि महिलाएं इस समस्या से बच सकती हैं। इसी के साथ मोटे अनाज को खाने से हम देखते हैं कि हमारे स्वास्थ्य पर कई सारे लाभ हैं, लेकिन सावधानी भी बहुत जरूरी है। मोटे अनाज को अपने रोजमर्रा के भोजन में किस तरीके से शामिल किया जाए, ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बाजरे की रोटी के साथ दाल, हरी सब्जी, ज्वार की रोटी के साथ दही, रागी का दलिया और मक्का के साथ दाल और अन्य प्रोटीन स्रोत, ये सभी भोजन में विविधता लाने के उदाहरण है। अनाज को अच्छी तरह साफ करके पका कर खाना चाहिए। आटे को नमी से बचा कर रखना चाहिए और उसमें फफूंद या खराब गंध आने पर उसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हम हमारे स्वास्थ्य को सही भी बनाकर रख सकते हैं। और ये जो मोटे अनाज हमारी थाली से दूर हो गए हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, फिर से हमें उन्हें हमारी थाली का हिस्सा बनाना होगा।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दे।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी।
1: बिल्कुल।
0: आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वाग रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपनी राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर हो चुकी हूं कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर एक नए विषय के साथ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कार्यक्रम में जब भी हाजिर होते हैं तो आपसे बातचीत करते हैं एक नए विषय को लेकर। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय हमारे बीच जुड़ रहा है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हर दिन 1% बेहतर बनने की आदत को लेकर। साथियों, जानेंगे कि किस प्रकार से हम हर दिन खुद को बेहतर बना सकते हैं और इसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं। तो बातें ढेर सारी होंगी इस विषय को लेकर, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है। तो आइए साथियों, पहले सुनते हैं यहाँ पर एक प्यारा सा गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में और सुनते रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: दोस्तों, गीत तो यहाँ पर पूरा हो गया और इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान में जब भी हमारी आपसे बातें होती हैं, तो हम उन सपनों की, उन आंखों में पलते हुए हौसलों की बात करते हैं श्रोता साथियों, जो हमारी पूरी जिंदगी को बदल देती है। और आज के इस कार्यक्रम में विषय भी काफी हमारा रोचक है। हम बात कर रहे हैं कि हर दिन हम खुद को बेहतर बना कैसे सकते हैं और इसकी शुरुआत हम 1% से कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए हर दिन कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? थोड़ा मुश्किल होगा साथियों। अगर मैं कहूं कि आपको एक ही दिन में अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ने की जरूरत नहीं है, एक ही दिन में बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल करने की भी जरूरत आपको नहीं है, एक ही दिन में साथियों अपनी पूरी जिंदगी आपको बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको बस इतना करना है कि आज के अपने आप से कल का अपना आप थोड़ा आपको बेहतर बनाना है, और वो है बस 1%। हाँ दोस्तों, सिर्फ 1% बेहतर बनने की शुरुआत हम एक दिन में कर सकते हैं। और शायद आपको सुनकर ये लग सकता है कि 1% तो काफी छोटी चीज है, इससे भला जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि बड़े बदलाव अक्सर छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। एक दिन में कोई व्यक्ति महान नहीं बनता, एक दिन में कोई शानदार विद्यार्थी भी नहीं बनता, एक दिन में तो साथियों कोई कुशल खिलाड़ी भी नहीं बनता है, और एक दिन में कोई सफल उद्यमी भी नहीं बनता। इन सभी चीजों के पीछे होते हैं सैकड़ों छोटे प्रयास, हजारों छोटे फैसले और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की आदत। जी हाँ, तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उसी छोटी आदत की जो देखने में तो छोटी है, लेकिन अगर जीवन में उतर जाए साथियों तो बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। वो आदत है हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाने की आदत। दोस्तों, अक्सर हम अपनी जिंदगी बदलने के लिए बहुत बड़े बड़े संकल्प लेते हैं। हम नए साल पर कहते हैं कि अब सब कुछ बदल जाएगा, कल से सुबह जल्दी उठूंगा, कल से पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगा, कल से मोबाइल कम चलाऊंगा, कल से व्यायाम करूंगा, कल से कुछ नई स्किल सीखूंगा, कल से समय बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, वही पुरानी दिनचर्या, वही काम टालम टोल वाले और वही कल से शुरू करने की आदत। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि साथियों, हमने बदलाव को बहुत बड़ा बना दिया है। हमने सोचा है कि बदलना है तो पूरी तरह बदलना है, लेकिन जिंदगी हमेशा ऐसे नहीं बदलती। कई बार जिंदगी बदलने का सबसे अच्छा तरीका होता है छोटे से शुरुआत करना। अगर आप अभी रोज 5 घंटे पढ़ाई नहीं कर पाते, तो अचानक 5 घंटे बैठने का लक्ष्य रखने के बजाय शुरुआत थोड़े समय से आप करिए, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाइए। अगर आपको किताब पढ़ने की आदत नहीं है, तो पूरी किताब खत्म करने का दबाव मत बनाइए, रोज कुछ पन्ने पढ़िए। अगर आपको लगता है कि आप मोबाइल पर बहुत समय बिताते हैं, तो एकदम से मोबाइल छोड़ने की बजाय आपको अपने अनावश्यक स्क्रीन टाइम को थोड़ा थोड़ा कम कर देना होगा। अगर आपको कोई नई भाषा सीखनी है या फिर कोई तकनीक कौशल सीखना है, बोलने का आत्मविश्वास बढ़ाना है या अपने क्षेत्र से जुड़ा कोई ज्ञान हासिल करना है, तो इन सभी बातों में ये मत सोचिए कि मुझे सब कुछ एक साथ ही सीखना है। ये सोचिए इसके विपरीत कि आज मैं कल से थोड़ा बेहतर क्या सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ। यही सोच साथियों धीरे धीरे आदत बन जाएगी और आदत धीरे धीरे हमारा व्यक्तित्व बनाएगी। तो इस तरीके से, जैसा कि कार्यक्रम में मैं आपसे ढेर सारी बातें कर ही रही हूँ हर दिन 1% खुद को बेहतर बनाने की आदत को लेकर, तो ये बातें आगे भी चलती रहेंगी। लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं यहाँ पर एक और गीत के साथ में। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से रुक करती हूँ कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि बातें बहुत अच्छी चल रही थी 1% खुद को रोजाना बेहतर बनाने की, और गीत से पहले मैंने आपको बताया था श्रोता साथियों कि हमें शुरुआत थोड़े थोड़े करनी होगी। अगर हम किसी कार्य को छोड़ना चाहते हैं तो हम उसे अगर एकदम से छोड़ेंगे तो वो हमारे लिए उचित नहीं होगा साथियों। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके उस कार्य को छोड़ने की आदत बनानी होगी। अब यही बात करूं कि 1% का मतलब क्या है, तो दोस्तों हर दिन 1% बेहतर बनने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर दिन कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करनी ही होगी। ऐसा नहीं है कि आज आपने 10 पन्ने पढ़े हैं तो कल 20 पन्ने पढ़ने ही होंगे। कभी आपका दिन अच्छा होगा, कभी आपका दिन मुश्किल होगा, कभी आपके पास समय ज्यादा होगा तो कभी परिस्थितियां आपके साथ नहीं होंगी। ऐसे में 1% बेहतर बनने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप खुद को पूरी तरह नहीं छोड़ें। आज अगर आपने किसी गलती को पहचाना है तो ये भी सुधार है। आज अगर आपने किसी काम को कल से थोड़ा बेहतर किया है दोस्तों, तो ये भी एक सुधार है। अगर आज आपने अपनी टालमटोल पर थोड़ा नियंत्रण किया है तो ये भी आपके लिए एक सुधार का ही कार्य है। आज अगर आपने किसी अच्छे व्यक्ति से बात की है तो ये भी एक सुधार का ही तरीका है। क्योंकि श्रोता साथियों, विकास हमेशा दिखाई नहीं देता, कई बार बदलाव बहुत शांत तरीके से होता है, जैसे कि पेड़ का बढ़ना। हम किसी पेड़ को देखकर ये नहीं कह सकते दोस्तों कि आज सुबह से इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ गई, लेकिन जब हम उसे महीनों बाद देखेंगे तब वो पेड़ हमें बड़ा दिखाई देगा। तब हमें समझ आता है कि हर दिन कुछ न कुछ बदल रहा था। इंसान का विकास भी कुछ ऐसा ही है। रोजाना होने वाले बदलाव को हम नहीं देख पाते, लेकिन जब लंबे समय के बाद एक नया बदलाव आता है तो हम उसे अच्छी तरीके से महसूस कर पाते हैं और समझ पाते हैं साथियों। जैसे कि कल्पना कीजिए कि दो युवा हैं, दोनों के सपने बड़े हैं, दोनों कुछ हासिल करना चाहते हैं और दोनों के पास लगभग सामान्य ही समय है। ऐसे में पहला युवा सोचता है, जब सही समय आएगा तब मैं पूरी तरह मेहनत करूँगा। वहीं दूसरा युवा सोचता है कि मैं सही समय का इंतजार क्यों करूं? आज जितना कर सकता हूं उतना कर लेता हूं। साथियों, पहला युवा सही समय का इंतजार करता रहता है और दूसरा युवा रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहता है। कुछ दिनों तक दोनों में शायद कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, लेकिन कुछ महीनों बाद हम खुद ही देखेंगे कि फर्क नजर आएगा। फिर हमें पता चलेगा कि जो पहला युवा था वो सही समय का इंतजार करता रहेगा, लेकिन दूसरा युवा उसके पास अनुभव है, जानकारी है, बेहतर आदतें हैं और काम करने की क्षमता भी है। और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर भरोसा होगा कि मैं लगातार आगे बढ़ सकता हूँ। और दोस्तों, यही है छोटे सुधार की ताकत। आज की दुनिया बहुत तेज है, हम चाहते हैं कि मेहनत का परिणाम हमें तुरंत मिले। हमने 1 सप्ताह पढ़ाई की तो परिणाम चाहिए, हमने कुछ दिन कोई स्किल सीखी तो हम विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, हमने कुछ दिन तक अभ्यास किया तो हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन प्रकृति हमें एक अलग कहानी सिखाती है, और वो ये कि बीज बोने के बाद फसल के लिए समय चाहिए होता है, मिट्टी तैयार करने के बाद पौधे को बढ़ने के लिए भी समय चाहिए होता है, और इंसान को भी अपने भीतर बदलाव लाने के लिए समय चाहिए होता है। इसलिए साथियों, अगर आपने आज शुरुआत की है और आपको तुरंत परिणाम नहीं दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। हो सकता है कि बदलाव अभी जमीन के नीचे हो रहा हो, जैसे बीज पहले मिट्टी के अंदर जड़े बनाता है और उसके बाद बाहर दिखाई देता है, वैसे ही हमारी मेहनत भी पहले हमारे भीतर बदलाव लाती है, फिर हमारी सोच बदलती है, फिर हमारी आदत बदलती है, फिर हमारा व्यवहार बदलता है और आखिर में परिणाम हमारे सामने ही होता है श्रोता साथियों। तो इसलिए कार्यक्रम के माध्यम से आपसे यही कहना चाहूंगी कि आज से अपनी जिंदगी को एक प्रतियोगिता की तरह मत देखिए। आप हर दिन खुद को थोड़ा समझिए, थोड़ा सीखिए, थोड़ा सुधारिए और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाइए। और किसी दिन अगर आप 1% ही बेहतर बन पाए तो भी उसे छोटा मत समझिए, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक कदम से सफर पूरा होता है और एक एक ईंट से घर बनता है दोस्तों, और एक एक दिन की मेहनत से हमारा भविष्य संवरता है। इसलिए आप अपने सपनों को बड़ा रखिए, शुरुआत छोटी रखिए, कदम लगातार बढ़ाते रहिए और खुद से बस इतना वादा कीजिए कि मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करूंगा, थोड़ा बढ़ूंगा, कल के अपने आप से बेहतर बनने की। इसी सकारात्मक संदेश के साथ श्रोता साथियों, अब मैं कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी।
क्योंकि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का और बातें भी हमारी आपसे ढेर सारी हो चुकी हैं। तो विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं यहाँ पर एक और गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

श्रोता साथियों, किसी ने सही कहा है कि चलते रहोगे तो रास्ता मिलेगा, कोशिश करोगे तो अवसर मिलेगा। आज का छोटा सुधार ही कल सफलता का मुकाम बनेगा। सपनों की उड़ान वही बढ़ता है जो रोज अपने पंख मजबूत करता है। छोटी कोशिशों का सिलसिला ही इंसान को बड़ा बनाता है। साथियों, इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ साथियों कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

भाई ने बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, ने सोरा ने मुस्कान। होवे इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपनो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भाई ने बोनो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हूं, या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जैया हवा में आपड़े हाल रह हूं, ये भी आपड़ा थकी कई आश रागे है। हो भी अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं, बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ूंगा, पानी ने बचाड़ूंगा, ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलूंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना ना कदम है, ये अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: साथियों, उम्र छोटी थी मगर विचार महान। भगत सिंह बने युवाओं की पहचान। साहस हो दिल में, विचारों में उजास, देश और समाज के लिए हो प्रयास। जी हाँ, सिर्फ शहादत को याद न करें, भगत सिंह के विचारों को जीवन में उतारें, सवाल करें, सीखें और आगे बढ़ें, समाज की जिम्मेदारियों में खड़े रहें।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, इन्हीं पंक्तियों के साथ वागड़ रेडियो परिवार भारत के महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और युवाओं के प्रेरणा स्रोत भगत सिंह जी की जयंती पर उन्हें शत-शत नमन करता है। जैसा कि दोस्तों, आज हम सभी मिलकर भगत सिंह जी की जयंती मना रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास अनेक वीरों के त्याग और संघर्ष का बलिदान से लिखा गया है और इन्हीं महान सेनानियों में थे भगत सिंह जी, अंजलि जी, जिनका नाम अत्यंत सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। आज के इस कार्यक्रम में हम इसी महत्वपूर्ण दिवस को लेकर श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत सुनवाएं हम।
0: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और गीत से पहले विषय भी हम आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं भगत सिंह जी की जयंती को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अनिल जी, हम देखते हैं कि जो भगत सिंह जी जो थे उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लालपुर जिले के बगा गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। श्रोता साथियों, उनका परिवार देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह तथा स्वर्ण सिंह स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे।
1: बिल्कुल,
0: घर के वातावरण ने बालक भगत सिंह के मन में बचपन से ही देश के प्रति प्रेम और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की भावना विकसित की थी। कहा जाता है कि बचपन से ही भगत सिंह जी को सामान्य बालकों से अलग चिंतन कर वह रखते थे। वे भारत को गुलामी से मुक्त देखने का सपना देखते थे और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी वैसे वैसे देश की राजनीतिक परिस्थितियों और अंग्रेजी शासन के दमन ने उनके विचारों को और गहरा कर दिया।
1: बिल्कुल कशिश, बचपन से ही भगत सिंह के मन में देश की परिस्थितियों को लेकर सवाल उठने लगे थे। उस समय भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था, लोगों के अधिकार सीमित थे और स्वतंत्रता आंदोलन लगातार मजबूत हो रहा था।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन भगत सिंह केवल भावनाओं से प्रभावित होने वाले युवा नहीं थे। वे पढ़ते थे, सोचते थे और घटनाओं के पीछे के कारण को समझने की कोशिश करते थे। यही बात उनके व्यक्तित्व को अलग बनाती है। साथियों, कहना चाहेंगे कि भगत सिंह के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू था पढ़ने और सीखने की उनकी आदत। उन्होंने इतिहास, राजनीतिक, समाज और अर्थव्यवस्था और दुनिया में चल रहे आंदोलन से संबंधित अनेक किताबों और लेख पढ़े। उनके लिए पढ़ना केवल परीक्षा पास करने का साधन नहीं था, पढ़ना उनके लिए दुनिया को समझने का तरीका था।
0: जी।
1: आज जब हमारे पास किताबों के साथ साथ मोबाइल और इंटरनेट जैसे साधन भी है, तब भगत सिंह की यह आदत हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि जानकारी बहुत है लेकिन सही जानकारी को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है।
0: जी
1: किसी
0: हाँ।
1: बात को केवल इसलिए सही मान लेना चाहिए क्योंकि उसे बहुत लोग कह रहे हैं, उसे पढ़िए, समझिए, सवाल कीजिए, फिर अपनी समझ उसमें हमें बनाने की जरूरत है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। साथ ही अगर बात करें तो भगत सिंह जी के जीवन पर जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का गहरा प्रभाव पड़ा था। साथियों, अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्ते लोगों पर अंग्रेजी शासन की ओर से की गई गोलीबारी ने पूरे देश को झंझोर दिया था।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, उस घटना ने युवा भगत सिंह के मन में एक अंग्रेजी शासन के प्रति गहरा विरोध पैदा किया। उन्होंने समझा कि देश की स्वतंत्रता केवल इच्छा से नहीं बल्कि संगठित संघर्ष और बलिदान से ही प्राप्त होगी।
1: बिल्कुल,
0: हम जानते हैं कि भगत सिंह ने अपने शिक्षा के साथ साथ इतिहास, राजनीति, समाज और क्रांतिकारी विचारधाराओं का गंभीर अध्ययन भी किया था। वे केवल हथियारों के सहारे परिवर्तन में विश्वास रखने वाले व्यक्ति नहीं थे, वे एक गहरे चिंतक और अध्ययनशील युवा भी थे। अंजलि जी,
1: जी हाँ, भगत सिंह का नाम कशिश भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी दौर से जुड़ा हुआ है। उन्होंने युवाओं को केवल दर्शक बनकर रहने के बजाय देश और समाज के सवालों पर सोचने के लिए प्रेरित किया। 1928 में लाला लाजपत राय पर हुए लाठीचार्ज के बाद भगत सिंह और उनके साथियों के मन में अंग्रेजी शासन के लिए बहुत आक्रोश बढ़ गया था। बाद में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका।
0: बिल्कुल,
1: इस घटना का उद्देश्य किसी व्यक्ति की हत्या करना नहीं था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत को अपने विचार को जनता तक पहुंचाने के मंच के रूप में इस्तेमाल किया गया।
0: जी बिल्कुल,
1: यहाँ भगत सिंह के व्यक्तित्व का एक और पहलू सामने आता है कि वे केवल संघर्ष करना नहीं जानते थे बल्कि अपने विचारों को तर्क के साथ सामने रखना भी जानते थे।
0: जी हाँ।
1: भगत सिंह कशिश जब जेल में थे तब भी उनका संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने जेल में कैदियों के साथ होने वाले भेदभाव और खराब परिस्थितियों के खिलाफ आवाज उठाई। उनका संघर्ष केवल अपने लिए नहीं था, वे चाहते थे कि कैदियों के साथ भी मानवीय व्यवहार हो।
0: बिल्कुल,
1: जेल के दौरान उनका अध्ययन जारी रखा जाए। उन्होंने वहाँ पर लिखा, पढ़ा और अपने विचारों को व्यक्त किया। यह हमें बताता है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, सीखने और अपने विचारों को मजबूत करने की जो प्रक्रिया है वो कभी भी जीवन में नहीं रुकनी चाहिए।
0: बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही अगर बात करें तो युवावस्था में भगत सिंह स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे और बाद में क्रांतिकारी संगठनों के साथ काम करने लगे थे। श्रोता साथियों, वे हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन से जुड़े और बाद में संगठन की पुनर्गठन में महत्वपूर्ण भूमिका उनके द्वारा निभाई गई।
1: जी।
0: उन्होंने संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन कर दिया गया था। भगत सिंह और उनके साथियों का उद्देश्य था केवल अंग्रेजी शासन को समाप्त करना ही नहीं, बल्कि वे एक ऐसे समाज की कल्पना भी करते थे जिसमें शोषण, असमानता और अन्याय का पूरा अंत हो।
1: बिल्कुल कशिश, भगत सिंह ने अपनी शिक्षा लाहौर के नेशनल कॉलेज में की। यहाँ उन्हें इतिहास, राजनीतिक और विश्व के अलग अलग स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ने का अवसर मिला। वे केवल पाठ्यक्रम की किताबें ही नहीं पढ़ते बल्कि अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक विचारों से जुड़ी पुस्तकों का अध्ययन भी करते थे। युवा होने पर भगत सिंह स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप में शामिल हो गए। वे नौजवान भारत सभा से जुड़े और युवाओं को देश और समाज के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाहौर में हुए प्रदर्शन में पुलिस की लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय घायल हुए और बाद में उनका निधन हो गया। इस घटना का भगत सिंह और उनके साथियों पर गहरा प्रभाव पड़ा था।
0: बिल्कुल,
1: जेल में भगत सिंह ने कैदियों के अधिकारों और बेहतर व्यवहार की मांग को लेकर भूख हड़ताल की। इस दौरान उनका स्वास्थ्य काफी कमजोर हुआ लेकिन उन्होंने अपने विचारों और संघर्षों को जारी रखा।
0: जी हाँ।
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि भगत सिंह एक गंभीर पाठक और विचारक भी थे। उन्होंने धर्म, समाज, राजनीतिक स्वतंत्रता, समानता जैसे विषयों पर विचार किया और लेख भी लिखे। उनका मानना था कि देश की आजादी केवल अंग्रेजी शासन से मुक्ति तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि समाज में समानता, न्याय और शोषण से मुक्ति भी जरूरी है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि श्रोता साथियों से हम कार्यक्रम के माध्यम से बातें कर ही रहे हैं, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना साथियों को यहाँ पर एक और गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए, कहीं ये फल और फूल उगाए, केस

बंसी जहां बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि आज कार्यक्रम में हम भगत सिंह को लेकर ढेर सारी बातों को जान पा रहे हैं,
1: जी हाँ,
0: यही श्रोता साथियों आपको कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि भगत सिंह का समय अलग था और आज का जो समय है वो अलग है। आज हमारे सामने अपनी तरह की चुनौतियां हैं, बेरोजगारी, शिक्षा से जुड़ी समस्याएं, नशे की बढ़ती चिंता, पर्यावरण, पानी की समस्या, सामाजिक भेदभाव और युवाओं में बढ़ता तनाव। इन समस्याओं का समाधान कशिश केवल सरकार या किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं हो सकता। एक जागरूक नागरिक अपने स्तर पर भी भूमिका निभा सकता है। गाँव में पानी की बर्बादी रोकना, बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करना, नशे से दूर रहने का संदेश देना, स्वच्छता रखना, पेड़ लगाना, महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान करना और समाज में गलत जानकारी फैलाने से बचना, ये छोटे कदम हैं लेकिन सामुदायिक जीवन को मजबूत बनाते हैं।
1: जी हाँ दिलेश जी, आपने सही कहा। साथ ही अगर बात करें तो श्रोता साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके। इस घटना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या करना नहीं था। दोनों ने अंजलि जी ऐसे बमों का इस्तेमाल किया जिनका उद्देश्य विरोध दर्जा कराना और अपनी बात लोगों तक पहुंचाना था। श्रोता साथियों, घटना के बाद दोनों ने भागने के बजाय स्वयं गिरफ्तारी दी। उनका उद्देश्य अदालत को अपने विचारों को जनता के सामने रखने के मंच के रूप में इस्तेमाल करना भी था। अदालत में भगत सिंह जी और उनके साथियों ने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखा। जेल में रहते हुए भी उनका संघर्ष जारी रहा। उन्होंने कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार और राजनीतिक बंदियों के अधिकारों के लिए भूख हड़ताल की और उनकी भूख हड़ताल ने पूरे देश का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया। साथियों, इसी दौरान उनके साथी क्रांतिकारी जतिन दास की लंबी भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई। इससे देश में व्यापक जन भावना भी उत्पन्न हुई।
0: बिल्कुल कशिश, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। उनका जीवन बहुत छोटा रहा लेकिन उन्होंने अपने विचारों और साहस से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गहरी छाप छोड़ी। आज 28 सितंबर को उनकी जयंती पर उन्हें याद करते हुए हमें केवल यह नहीं कहना चाहिए कि वे महान थे, हमें यह भी पूछना चाहिए कि हम अपने जीवन में उनसे कौन से सकारात्मक गुण अपना सकते हैं। क्या हम पढ़ने की आदत डाल सकते हैं? क्या हम सही और गलत के बीच अंतर समझने की कोशिश कर सकते हैं और उनके लिए सवाल उठा सकते हैं? क्या हम समाज में जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभा सकते हैं? क्या हम बिना सोचे किसी अफवाह को आगे बढ़ाने से बच सकते हैं? यही सवाल भगत सिंह की स्मृति को हमारे वर्तमान जीवन में जोड़ते हैं। भगत सिंह की कहानी श्रोता साथियों केवल इतिहास के एक अध्याय की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे युवा की कहानी है जिसने अपने समय को समझने की कोशिश की, किताबों से ज्ञान लिया और अपने विचारों को तर्क के साथ रखा और अपने विश्वास के लिए बड़ा व्यक्तिगत बलिदान भी दिया।
1: जी हाँ,
0: उनकी उम्र हमें बताती है कि बड़ा काम करने के लिए उम्र बड़ी होना जरूरी नहीं है, लेकिन उनका जीवन यह भी सिखाता है कि केवल जोश पर्याप्त नहीं होता, जोश के साथ ज्ञान चाहिए, भावनाओं के साथ समझ चाहिए और अधिकारों के साथ जिम्मेदारी। आज भगत सिंह की जयंती पर हम उनके चित्र पर फूल चढ़ाएं, उन्हें श्रद्धांजलि दें, लेकिन इसके साथ एक और काम करें, एक किताब उठाएं, एक नई बात सीखें, किसी जरूरी सवाल पर सोचें और अपने समाज के लिए एक छोटा सा अच्छा काम करने का संकल्प लें। क्योंकि किसी महान व्यक्ति को याद करने का सबसे सार्थक तरीका केवल उसकी प्रशंसा करना नहीं बल्कि उनके जीवन से मिलने वाली अच्छी सीख को अपने व्यवहार में जगह देना भी है।
1: जी हाँ अंजलि जी, भगत सिंह जी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक श्रोता साथी उनका अध्ययन और वैचारिक चिंतन भी था। उनका प्रसिद्ध लेख है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ उनके वैचारिक चिंतन का एक उदाहरण है। इसमें उन्होंने अपने विश्वासों और तर्क के आधार पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने युवाओं को केवल भावनाओं से नहीं बल्कि अध्ययन, तर्क और विचार से समाज को समझने का संदेश भी दिया।
0: जी।
1: उनका मानना था कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं बल्कि स्वतंत्रता का संबंध सामाजिक और आर्थिक न्याय से भी है। अंजलि जी, इसी कारण से भगत सिंह जी का व्यक्तित्व केवल एक क्रांतिकारी के रूप में सीमित नहीं है, वे एक ऐसे युवा विचारक के रूप में याद किए जाते हैं जिसने अपने समय के सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों पर गंभीरता से विचार किया था। भगत सिंह जी और उनके साथियों से जुड़ा प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में अमर हो गया। श्रोता साथियों, इनकलाब का मतलब होता है केवल हिंसक परिवर्तन नहीं बल्कि व्यापक परिवर्तन भी व्यवस्था में बदलाव की आकांक्षा से भी जोड़ा जाए।
0: बिल्कुल।
1: भगत सिंह के विचारों को समझने के लिए उनके लेखों, वक्तव्यों और ऐतिहासिक संदर्भों का अध्ययन बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ, कशिश, भगत सिंह का जीवन हमें यह समझने का अवसर देता है कि किसी व्यक्ति की पहचान केवल उसके जीवन की लंबाई से नहीं बल्कि उनके विचारों और कर्मों से होती है। उन्होंने बहुत कम उम्र में अपने आसपास की परिस्थितियों को समझने की कोशिश की और अपने समय के महत्वपूर्ण सवालों पर गंभीरता से विचार किया।
1: बिल्कुल।
0: आज जब हम भगत सिंह को याद करते हैं तो उनके जीवन को केवल एक ऐतिहासिक घटना मानकर आगे बढ़ जाना पर्याप्त नहीं है। उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष था जिज्ञासा, अध्ययन, तर्क के साथ अपनी सोच विकसित करना। यही गुण आज के युवाओं के जीवन में भी महत्वपूर्ण है। आज का युवा अपने गांव, समाज और देश के भविष्य को आकार देने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। शिक्षा प्राप्त करना, गलत जानकारी से बचना, अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझना, भेदभाव का विरोध करना, पर्यावरण की रक्षा करना और जरूरतमंद व्यक्ति के साथ खड़ा होना, ये सभी जिम्मेदार नागरिकता के हिस्से हैं।
1: बिल्कुल।
0: भगत सिंह की जयंती पर हम उनके बलिदान को सम्मान पूर्वक याद करें और साथ ही यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन में साहस के साथ सही बात समझने, ज्ञान के साथ निर्णय लेने और जिम्मेदारी के साथ समाज में योगदान देने का प्रयास करेंगे।
1: जी हाँ।
0: किसी महान व्यक्ति को सच्ची श्रद्धांजलि तब मिलती है कशिश, जब उसकी स्मृति हमारे व्यवहार में दिखाई दे। इसलिए आज का दिन केवल भगत सिंह को याद करने का दिन नहीं बल्कि अपने भीतर जागरूकता, जिम्मेदारी और बेहतर समाज के लिए योगदान की भावना जगाने का भी दिन है।
1: बिल्कुल।
0: उनके जीवन से प्रेरणा लेकर श्रोता साथियों, हम अपने आसपास एक ऐसा वातावरण बनाए जहां युवा सवाल पूछ सके, बच्चे सीख सके, हर व्यक्ति को सम्मान मिले और समाज में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे के साथ हम खड़े रहें।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो इस तरीके से कहा जा सकता है श्रोता साथियों कि भगत सिंह जी आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण भी है कि उनके जीवन से आज की पीढ़ी क्या सीख सकती है।
0: बिल्कुल।
1: उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है श्रोता साथियों कि हमें प्रश्न पूछने हैं, पढ़ना है, तर्क करना है और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना है। उन्होंने अंजलि जी जैसा कि बहुत ही कम उम्र में व्यापक साहित्य को पढ़ा, अपने विचार विकसित किए। वे चाहते थे कि युवा केवल किसी विचार को इसलिए स्वीकार न करे क्योंकि वह लोकप्रिय है, बल्कि उसके बारे में स्वयं सोचे और तर्क के आधार पर अपनी समझ विकसित करे। आज के समय में जब सूचनाओं की भरमार है, तब भगत सिंह का अध्ययनशील व्यक्तित्व हमें ये याद दिलाता है कि जानकारी और ज्ञान में अंतर कैसा होता है।
0: बिल्कुल।
1: किसी भी विषय को समझने के लिए पढ़ना, तथ्यों की जांच करना और स्वतंत्र रूप से विचार करना जरूरी है। दोस्तों, भगत सिंह जी का जीवन आज भी इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता को केवल राजनीतिक आजादी के रूप में नहीं देखा। वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जिसमें मनुष्य का शोषण न हो, सामाजिक भेदभाव कम हो और लोगों को समान अवसर मिले।
0: बिल्कुल कशिश, तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना। अब समय हो गया है एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का, तो क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, जैसा कि गीत से पहले हमने जाना भगत सिंह जी की जयंती पर ढेर सारी बातों को, यही बात करते हैं कि व्यस्तता ने हमारी बातचीत छीन ली है। जी हाँ श्रोता साथियों, कहते हैं कि रिश्ते शब्दों से नहीं बातचीत से जीवित रहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन आज हमारी जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि घर में लोग साथ रहते हुए भी एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। सुबह उठते ही काम की चिंता, बच्चों को तैयार करने की जल्दी, नौकरी और खेती किसानी की जिम्मेदारियां, बाजार के काम, मोबाइल की घंटियां और दिन भर की भागदौड़, और जब शाम को घर लौटते हैं तो शरीर थका हुआ होता है।
1: जी हाँ।
0: ऐसे में अक्सर घर का एक छोटा सा सवाल भी सुनाई देता है कि आज बात करने का समय ही नहीं मिला। लेकिन श्रोता साथियों, ये सवाल जो है वो ये नहीं है कि क्या सच में हमारे पास समय नहीं है या हमने बातचीत को अपनी प्राथमिकताओं से पीछे कर दिया है।
1: बिल्कुल।
0: एक समय था कशिश जब परिवार के लोग शाम को साथ बैठते थे, दिन भर में क्या हुआ, किसने क्या देखा, किससे सीखा, किसे किस काम को लेकर खुशी मिली, किस बात की परेशानी रही, इन सब पर बातचीत होती थी। आज परिस्थितियां बदल गई हैं, काम बड़े हैं, जिम्मेदारियां बड़ी हैं, सुविधाएं भी बड़ी हैं। मोबाइल ने दूर बैठे व्यक्ति को पास कर लिया है, लेकिन कई बार पास बैठा जो व्यक्ति है वो बातचीत की कमी महसूस करता है। घर में चार लोग हैं तो जरूरी नहीं है कि चारों एक दूसरे से बात भी कर रहे हो। कोई मोबाइल देख रहा है तो कोई टीवी, कोई अपने काम में व्यस्त है तो कोई अपने मन की बात कहने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा है।
1: जी हाँ।
0: धीरे धीरे यह इंतजार आदत बन जाता है। माँ बच्चे से पूछना चाहती है कि स्कूल में दिन कैसा रहा, लेकिन काम के बीच बात टल जाती। पिता बच्चे की परेशानी जानना चाहते हैं, लेकिन थकान के कारण बातचीत नहीं हो पाती। पति पत्नी के पास एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कहने को होता है, लेकिन दिन खत्म होने तक ऊर्जा खत्म हो जाती है।
1: बिल्कुल।
0: फिर एक दिन महसूस होता है कि हम एक दूसरे के जीवन में मौजूद तो हैं, लेकिन एक दूसरे के जीवन को जान ही नहीं पा रहे हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। श्रोता साथियों, कभी आपने गौर किया है कि हमारे पास आज दुनिया से जुड़े रहने के इतने साधन हैं, लेकिन अपने ही लोगों से बात करने का समय कम होता जा रहा है।
0: बिल्कुल
1: अंजलि जी, मोबाइल में भी सैकड़ों कॉन्टेक्ट्स हैं, सोशल मीडिया पर सैकड़ों दोस्त है, हर पल नोटिफिकेशन आते रहते हैं, लेकिन जब मन की बात कहने की जरूरत पड़ती है तो हम सोचते हैं कि आखिर बात किससे करें।
0: जी जी।
1: कभी घर में शाम होते ही बातचीत शुरू हो जाती थी, कोई दिन भर का हाल सुनाता था तो कोई अपने अनुभव बताता था, बच्चे के स्कूल की बातें और बड़े अपने जीवन के किस्से बताया करते थे।
0: जी जी।
1: लेकिन आज की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। एक कमरे में बैठे चार लोग भी चार अलग अलग स्क्रीन पर व्यस्त होते हैं। माँ फोन पर, पिता काम के मैसेज में, बच्चा जो है वो वीडियो में, और हम खुद सोशल मीडिया पर व्यस्त हैं। साथियों
0: जी हाँ।
1: शायद हम एक दूसरे के पास तो हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से

0: व्यस्तता ने हमारे जीवन को, हमारी जिंदगी को छीन लिया है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हम देखते हैं कि बातचीत जो है वो कभी रिश्तों की जान हुआ करती थी। साथियों, बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बातचीत एक रिश्ता होता है, बातचीत अपनापन है, बातचीत किसी के मन को समझने का रास्ता है। कभी दादी के पास बैठकर घंटों उनकी बातें सुनना अपने आप में मनोरंजन हुआ करता था। कभी पिता के साथ बैठकर घंटों उनकी बातें सुनना और उनसे दिन भर की छोटी बड़ी बातें करना सामान्य बात थी। कभी दोस्त से मिलने के लिए किसी खास वजह की जरूरत ही नहीं होती थी,
1: बिल्कुल
0: बस मिलना था तो मिल लिए। लेकिन अब हमारे पास हर चीज के लिए समय है, ऑनलाइन रहने का समय, वीडियो देखने का समय, रील्स स्क्रॉल करने का समय, चैट पढ़ने का समय, बस कभी कभी एक दूसरे के सामने बैठकर बात करने का समय नहीं है। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सच में हमारे पास समय नहीं है या हमने अपनी प्राथमिकताएं बदल ली हैं?
1: बिल्कुल कशिश, बातचीत का अर्थ केवल बहुत देर तक बातें करना नहीं है, कभी कभी 5 मिनट की सच्ची बातचीत भी रिश्ते में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। किसी से पूछना कि आज तुम्हारा दिन कैसा रहा और उसके जवाब को बिना मोबाइल देखते हुए सुन लेना भी बातचीत है।
0: बिल्कुल,
1: बच्चे की कोई छोटी सी बात ध्यान से सुन लेना बातचीत है, घर के बुजुर्गों से उनके पुराने अनुभव पूछना बातचीत है, अपने साथी से यह पूछना कि तुम ठीक हो, ठीक तो हो, और जवाब सुनने के लिए कुछ देर रुक जाना भी बातचीत है।
0: जी हाँ,
1: कई बार श्रोता साथियों, सामने वाला समाधान नहीं चाहता, वह सिर्फ चाहता है कि कोई उसकी बात सुने। मोबाइल हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा बन चुका है, इससे पढ़ाई, काम, जानकारी और संपर्क बहुत कुछ आसान हुआ है।
0: बिल्कुल,
1: समस्या मोबाइल होना नहीं है कशिश, बल्कि यह है कि कहीं वह हमारी आमने सामने की बातचीत की जगह तो नहीं ले रहा। कई घरों में ऐसा होता है कि परिवार साथ बैठा है लेकिन हर व्यक्ति अपने स्क्रीन में व्यस्त है। एक संदेश का जवाब देने के लिए हम तुरंत फोन उठा लेते हैं, लेकिन सामने बैठे व्यक्ति की बात सुनने के लिए कहते हैं कि अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, बाद में बात करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और कई बार वह बात जो है वो कभी आता ही नहीं है। इसलिए दिन में कुछ समय ऐसा होना चाहिए जब परिवार के लोग मोबाइल को किनारे रख कर सिर्फ एक दूसरे के साथ रहें।
0: जी हाँ।
1: बच्चे हमेशा अपनी परेशानी सीधे शब्दों में नहीं बताते हैं श्रोता साथियों, कभी उनका चुप रहना, अचानक गुस्सा करना, पढ़ाई में मन न लगना या अकेले रहना भी उनके मन में चल रही किसी बात का संकेत हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: अगर माता पिता कशिश रोज कुछ समय बच्चे के साथ बैठकर उसकी बात सुने तो बच्चा अपनी भावनाएं व्यक्त करना सीखता है। उसे हर बार पढ़ाई, अंक या गलती के बारे में ही सवाल न करें, कभी पूछें कि आज तुम्हें सबसे अच्छी बात क्या लगी, कि आज किसी ने तुम्हें हंसाया, आज कोई ऐसी बात हुई जिससे तुम्हें बुरा लगा। ऐसे छोटे सवाल बच्चे के लिए यह संदेश देते हैं कि घर केवल रहने की जगह नहीं, अपनी बात कहने की सुरक्षित जगह भी है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, श्रोता साथियों, व्यस्तता जरूरी है लेकिन क्या हर समय व्यस्त रहना भी जरूरी है? जैसे कि आज की जिंदगी पहले से ज्यादा कहीं तेज है, पढ़ाई, नौकरी, व्यवसाय, घर की जिम्मेदारियां, प्रतियोगिताएं, लक्ष्य, करियर, हर किसी को अपनी दौड़ में ही भागना है और अपना ही संघर्ष है हर किसी का।
1: बिल्कुल,
0: युवा अपने भविष्य को लेकर मेहनत कर रहे हैं अंजलि जी, माता पिता परिवार की जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं, कामकाजी लोग लगातार समय के दबाव में हैं, ऐसे में व्यस्त होना कोई गलत बात नहीं है। साथियों, व्यस्तता हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब व्यस्तता हमारे रिश्तों के बीच दीवार बन जाती है।
1: बिल्कुल,
0: जब किसी अपने के पास बैठने पर भी हम कहते हैं अभी टाइम नहीं है, जब माँ कुछ बताना चाहती है तो हम कहते हैं हाँ हाँ बोलो मैं सुन रहा हूँ, लेकिन हमारी नजर मोबाइल पर ही होती है। जब पिता अपने दिन की कोई बात साझा करना चाहते हैं और हम कहते हैं कि बाद में बात करते हैं पापा, और वह बाद में श्रोता साथियों कई बार आता ही नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए हमें अपनी रिश्तों की प्राथमिकता उसको समझना होगा और अपने माता पिता को समय देना होगा।
1: जी हाँ कशिश, तो जैसा कि कार्यक्रम में ढेर सारी बातें हम जान पा रहे हैं, आगे भी ये बातें यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ अंजलि जी,

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि साथियों बातें बहुत अच्छी चल रही थी गीत से पहले भी, हमारी आपसे व्यस्तता ने हमारी बातचीत को किस प्रकार से छीन लिया है, यही अगर बात करें अंजलि जी की, मोबाइल ने दूरी घटाई है या बढ़ाई है? श्रोता साथियों, तकनीक ने दुनिया को हमारे हाथ में ला दिया है। हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से कुछ सेकंड में ही बात कर सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: वीडियो कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, फोटो भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत अजीब सा विरोधाभास है साथियों। तकनीक ने दूर रहने वालों को करीब किया है, लेकिन कभी कभी पास रहने वालों को भी दूर कर दिया है। हम देखते हैं कि घर बैठे परिवार के सदस्य एक दूसरे को मैसेज भेज रहे हैं, दो दोस्त आमने सामने बैठे हैं, लेकिन दोनों अपने अपने फोन में ही व्यस्त हैं।
1: बिल्कुल,
0: बच्चा माता पिता से बात करना चाहता है लेकिन माता पिता काम में व्यस्त हैं। और धीरे धीरे बच्चा सीख जाता है कि शायद मेरी बात सुनने का समय किसी के पास नहीं है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि एक समय था जब परिवार के लोग जो है वो एक साथ बैठा करते थे। बातचीत का अर्थ केवल बहुत देर तक बातें करना नहीं है, कभी कभी 5 मिनट की सच्ची बातचीत भी रिश्ते में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है।
0: बिल्कुल,
1: मोबाइल हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा बन चुका है। इससे पढ़ाई, काम, जानकारी और संपर्क बहुत कुछ आसान हुआ है। समस्या कशिश मोबाइल होना नहीं, बल्कि यह है कि कहीं वह हमारी आमने सामने की बातचीत की जगह तो नहीं ले रहा।
0: जी हाँ।
1: कई घरों में ऐसा होता है कि परिवार साथ बैठा है लेकिन हर व्यक्ति अपनी स्क्रीन में व्यस्त है। एक संदेश का जवाब देने के लिए हम तुरंत फोन उठा लेते हैं, लेकिन सामने बैठे व्यक्ति की बात सुनने के लिए कहते हैं कि अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, बाद में बात करता हूँ।
0: बिल्कुल,
1: बच्चे हमेशा अपनी परेशानी श्रोता साथियों सीधे तरीके से नहीं बता पाते हैं, इसलिए उनकी बातों को हमें ध्यान से सुनना है। व्यस्तता का असर कशिश केवल बच्चों पर ही नहीं पड़ता, घर के बुजुर्ग भी कई बार अकेलापन महसूस करते हैं।
0: जी हाँ।
1: उनके पास अनुभव की पूरी दुनिया होती है लेकिन हम उनके पास बैठने का समय नहीं निकाल पाते। कभी उनके बचपन की कहानी पूछिए, कभी गांव के पुराने समय के बारे में पूछिए, कभी उनके अनुभव से खेती, परिवार या जीवन की कोई बात समझिए। हो सकता है कि उनकी बात में हमारे लिए कोई पुराना ज्ञान छिपा हो जो किताब में आसानी से न मिले। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें यह महसूस होता है कि उनकी बात आज भी किसी के लिए मायने रखती है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि बातचीत क्यों जरूरी है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। क्योंकि बातचीत हमें सिर्फ जानकारी नहीं देती बल्कि हमें समझे जाने का एहसास भी दिलाती है।
1: बिल्कुल,
0: कभी कभी हमें किसी समाधान की जरूरत नहीं होती अंजलि जी, हमें सिर्फ कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो हमारी बात को सुन ले और हमसे कह सके कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं था, और सामने वाला बस इतना कह दे कि कोई बात नहीं, तुम मुझे बताओ क्या हुआ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। श्रोता साथियों, हमारे ये कुछ ऐसे छोटे से जो कह सकते हैं वाक्य हैं, वो किसी व्यक्ति का पूरा दिन अच्छा कर सकते हैं। उसके मन में ये महसूस करा सकते हैं कि उसकी बात सुनने के लिए आप दिलचस्पी रखते हैं और आप उसकी बात को अच्छी तरीके से समझ भी पा रहे हैं। इससे अंजलि जी होता ये है कि व्यक्ति अपने अंदर से काफी खुश महसूस करता है, उसे लगता है कि उसके पास कोई है, वो अकेला नहीं है और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसके पीछे कोई उसका सहारा खड़ा है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि बातचीत के लिए हमेशा 1 घंटा निकालना जरूरी नहीं है। हम अपने दिन में छोटी छोटी जगह बना सकते हैं। सुबह चाय के समय कुछ मिनट, खाने के समय बिना मोबाइल के साथ बैठना, शाम को घर लौट कर परिवार से दिन के बारे में पूछना और सोने से पहले अपने प्रिय व्यक्ति से दो बातें करना। हफ्ते में 1 दिन परिवार साथ बैठकर अपने अनुभव साझा कर सकता है। यह जरूरी नहीं है कि हर बातचीत गंभीर हो, कभी हंसी मजाक, कभी पुरानी यादें, कभी गांव की कोई बात और कभी आने वाले दिनों की योजना, यही छोटी बातें रिश्तों में अपनापन बनाए रखती है। हम अक्सर सोचते हैं कि वह मुझसे बात करेगा तो मैं करूंगी, लेकिन रिश्तों में पहल करने वाला हमेशा कमजोर नहीं होता। कभी हम ही शुरुआत कर सकते हैं। एक छोटा सा सवाल कि बहुत थक गए हो क्या, या आज कुछ परेशान लग रहे हो, बताना चाहो तो मैं सुन रहा हूँ।
0: बिल्कुल,
1: इतना कहना भी सामने वाले के लिए बहुत मायने रख सकता है। बातचीत का उद्देश्य हर समस्या का तुरंत समाधान निकालना नहीं है। कई बार बातचीत का सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि इंसान को लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी बात सुनने वाला कोई है। श्रोता साथियों, जिंदगी की व्यस्तता खत्म नहीं होगी, जिम्मेदारियां भी रहेंगी, काम भी रहेंगे और रोज की भागदौड़ भी चलती रहेगी, लेकिन इसी भागदौड़ के बीच हमें तय करना होगा कि हमारे अपने लोग हमारी प्राथमिकताओं में कहाँ हैं। समय अपने आप नहीं मिलता, समय निकालना पड़ता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो इस तरीके से जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में श्रोता साथियों से हमारी बातें ढेर सारी हो चुकी है और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
0: तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को हमारे कार्यक्रम का पता हम बता दें।
1: बिल्कुल, तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है, तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, आप भी आपकी फरमाइश की गीतों को सुनना चाहते हैं तो आप भी आपकी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, अब हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडितपुर सिटी से। फिल्म का नाम है वंश। गीत के बोल हैं, आके तेरी बाहों में हर शाम लगी सिंदूरी। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है प्रशांत सिंधी, सुनीता सिंधी, यशराज सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा घोड़के जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश से इशरत खान, शायरा खान, रफ्यू खान, साबरीन खान, शाहबाज खान, शेफ खान और ईशान जी खान। इस गीत के अनुरोध करता है कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा, मयंक जी शर्मा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं कोपरगांव से सुरेश मालोदी, वर्षा मालोदी, श्रद्धा मालोदी, मानसी मालोदी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है वंश। गीत के बोल हैं, आके तेरी बाहों में हर शाम लगी सिंदूरी। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंजडू द्वारा सी। फिल्म का नाम है आशा, गीत के बोल हैं शीशा हो या दिल टूट जाता है। इस गीत की फरमाइश करता है शमशुल कमर राही, साहिन फातिमा, अजनान खान, फिजाद खान, अनुजी खान। और भी श्रोता साथी जुन्नाचार्य भागपत यूपी से, आसिफ अली खान, मुमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। इस गीत के अनुरोध करता है निपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकृत शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। सलार पलगाम कश्मीर से जुड़ना चाह रहे पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, केसरुद्दीन जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते ही फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है आशा, गीत के बोल ही शीशा हो या दिल टूट जाता है। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, वाग रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है अमरावती महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है आपकी कसम, गीत के बोल हैं करवटे बदलते रहें। इस गीत के फरमाइश करता है हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका जी रामेकर और रामेकर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसी बीच जुड़ना चाह रहे मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माहीजी मलिक और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। अमरावती से जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्चना गुड़ाने। इस गीत की अनुरोध करता है भागवत सिंह, जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनीश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर न्यूतन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है आपकी कसम और गीत के बोल हैं करवटे बदलते रहें। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

श्रोता साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, करवटे बदलते रहें। इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है उत्तर प्रदेश से। गीत के बोल ही भर दो झोली मेरी। इस गीत की फरमाइश करता है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इज़ार, नरगिस जी खातून। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बीबी आलिया, आयन बाबू। इस गीत के अनुरोध करता है छत्तीसगढ़ से महेंद्र मेताम, मरकाम जया मेताम, जागेंद्र ज्योति, मनीषा मंजू, मानसी जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं डापकी रोड अकुला से शशिला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव जी मधुरकर। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है नसीब, गीत की बोल है जिंदगी इंतहा लेती है कभी कभी। इस गीत की फरमाइश करता है गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बीबी आयुष श्रीवास, बेलतारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमो और मानस जी राज। इस गीत के अनुरोध करता है मुरादाबाद से अजित कसाना, माया देवी कसाना, ऋतिक कसाना, आदित्य जी कसाना। इस गीत के अनुरोध करता है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फुरुद्दीन अब्बासी, सुहाजी अब्बासी, अभान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही जिंदगी इंतहा लेती है। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

दुर्गेश्वरी जयसवाल, राखी जयसवाल और तृप्ति जी जयसवाल इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं। जाकोत राजस्थान जी, शंभुदयाल खटक, विमला देवी खटक, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुम्हारी पूजा जी खटक। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही ए मेरे वतन के लोगों। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जलालाबाद वेस्ट सी। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी। गीत के बोल हैं परदेसी परदेसी जाना नहीं। इस गीत की फरमाइश करते हैं सूरज गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकी स्टोर, रोज डिकी स्टोर, पल डिकी स्टोर, विलिस डिकी स्टोर। इस गीत के अनुरोध करता है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से साहिद हुसैन अंसारी, नरसी अंसारी, नोरिन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद फेक अंसारी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं पटिया कला दुर्ग से संजय कुमार शाहू, सुजिता शाहू, शशंक शाहू, सीमाजी शाहू। इस गीत के अनुरोध करता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हेमंत नामदेव, नंदनी नामदेव, नेहा नामदेव, निशा नामदेव, छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, रंजन शाहू जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी गोस्वामी, टिंकल डिंपल, मीनाक्षी निशा और दिशा जी गोस्वामी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं परदेसी परदेसी जाना नहीं। इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण जी ने और अलका जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

आइए साथियों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है अमरावती महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है क्रांति, गीत के बोल ही जिंदगी की ना टूटे लड़ी। इस गीत की फरमाइश करता है हर्षा रामेकर, अक्षय रामेकर, रुचिका जी रामेकर। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रही है जमशेदपुर से, हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया, तमन्ना जी भाटिया। इस गीत के अनुरोध करता है आकोट से विनायक भिंडे, श्रीमती मंगला जी भिंडे, विजय शुभम जरिए, पवन जरिए, सजीव जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही जिंदगी की ना टूटे लड़ी।

नमस्कार श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम आपकी फरमाइश को। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। स्वीकार कीजिएगा साथियों मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आपका सभी का फिर से स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि फरमाइशों का सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है और अभी बहुत ही प्यारा सा गीत कार्यक्रम के माध्यम से चल ही रहा है, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि फरमाइश का सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है और अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, क्रांति फिल्म का जिंदगी की ना टूटे लड़ी। इसी गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत नरवेल महाराष्ट्र से आया है। फिल्म का नाम है बताना चाहूँगी, गीत के बोल हैं तेरा चेहरा नजर आए। इस गीत को आवाज़ दी अदनान शमी जी ने और फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं पीएस नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल नवाकर महाराष्ट्र से हैं, नारायण इंगले, सुपांता आईडी, आशीष मोहेरकर जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। रघुवीर नगर से हैं दिलावर खान, हसीना बानो, इलियाज नायब और लड्डू जी और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन कर रहे हैं। नाम बताना चाहूँगी, बोड़खरा पित्रा अमल से हैं विनोद मोड़न, देहा चैन, दीपक मयंक मोड़ा, चेतन नाटा, दीक्षा कुश मोड़ा, दिलीप सिंह पंवार जी। पटेना जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं बलकर्ण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र, मनहरण वर्मा जी। खंडवा से जुड़ना चाह रहे हैं अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जी आउलक, अब्दुल रहमान डावर, उमर डावर। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं तेरा चेहरा जब नजर आए। तब तक आप बने रहिएगा वगड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत आया है मलयान सरधना मेरठ से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों, आपको बताना चाहूँगी, मैंने प्यार किया। गीत के बोल हैं कबूतर जा। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं अनिल जैन, सेयम जैन, मुस्कान, मास्टर जीवीएम जैन, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन, अंशिका जैन। इसी बीच हमारे और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। बाटापारा से जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, दनेश तिवारी, सावन नायक, अंकिता जोशी, वेदही जोशी जी। मधुबनी बिहार से है शबीर परवाना, शाहिद अली, जाहिद अली जी और शाहिद अली दी। पथरोड से है विजय अंबाडकर, सुनीता अंबाडकर, अक्षय, ऋषिकेश, राधिका अंबाडकर जी। साथी जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुणाने, अर्चना ताई गुणाने, हीरामन शेंडे, प्रेम प्रसिद्धि, प्रतिभा गुणाने जी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं कबूतर जा। तब तक आप बने रहिएगा वगड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है भोपालगढ़ राजस्थान से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों खुदा गवाह, गीत के बोल हैं तो मुझे को बोल मैं तुझे को बोल। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार, ईशान छिपा जी और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं हरिद्वार उत्तराखंड से। ताज बदनसारी, गुलाम शाबिराही, मेहराज जहां, सहारनपुर से जुड़ रहे हैं सैयद मसूर, साना अक्सा, नाजमा आफिया, इब्राहिम सद्दाम जी। छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन जी। रोरमी चिचड़ी छत्तीसगढ़ से हैं कमलकांत मरावी, प्रेमिरा मरावी, नेहा पुष्परा, ऋषभ मरावी जी। औरंगाबाद से हैं जलाना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, उमा जाधव, सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, जगुतय राजे जाधव, संचित वयाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणय देशमुख, सरविता देशमुख और सारदा देशमुख जी। मुंडा टोला डोरी लोहारा से है डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम, माहिर नेताम। मुंगी पैठण महाराष्ट्र से हैं बाबा साहेब गगनक्कर, सागरबाई गगनक्कर, परमेश्वरी रोहिणी, श्रावणी, ईश्वरी गगनक्कर परिवार के सभी सदस्यगण। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं तू मुझे को बोल मैं तुझे को बोल। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था खुदा गवाह, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी। फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। गीत के बोल हैं, श्रोता साथियों, हो गया है तुझको तो प्यार सजना। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंका भाटिया। इसी बीच हमारे और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। मैं आपको नाम बताना चाहूँगी जुड़ रहे हैं। दोस्त जुड़ रहे हैं बेलतरा छत्तीसगढ़ से, गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, आयुष श्रीवास। छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमो, मानस राज। और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूँगी जुड़ रहे हैं। राजस्थान बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान जी। करेली से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद आबिन अंसारी, शमीम अंसारी, नरसिंह अंसारी, शमा अंसारी, माइनूर अंसारी जी। कोलगांव से जुड़ना चाह रहे हैं पांडू चंदन, उषा चंदन, रानी प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष पांडुरंग कुम्हार जी। महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं किशोर वड़तकर, शुभम वड़तकर, पुन्नू वड़तकर जी। एकता कॉलोनी रोहतक से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोध, अंकित कांगड़ा जी। और भी हमारे साथी जोड़ रहे हैं, आपको बताना चाहूँगी। शिवाजी नगर कटनी से अनिल ताम्रकर, अमर ताम्रकर, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकर, रजन रजक जी, विपिन गुप्ता, प्रकाश सोनी, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू सोना, मोना हनी, यश और सौम्या जी। पटियाला से जुड़ना चाह रहे हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक जी, करण गीतू, निहारिका और हार्दिक और वंश बत्ता जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, हो गया है तुझको तो प्यार सजना। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

அனல்கரி வயார் த கிரவுஸ் சுனில் பாட்டக் கமல் பாட்டக் தீபிகா மல்ஹோத்ரா ஆஷிஷ் மல்ஹோத்ரா சுச்சா சிங் பாட்டக் வினோத் பூரி ஜி और भी हमारे दोस्त हैं, महाराष्ट्र परभणी से हैं रुपेश सिंगे मैस ब्रिगेश प्रीतेश संगी पूरा संगी परिवार। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, मैं तुझसे ऐसे मिलूं तेरी जान बन जाऊं। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी। फिल्म का नाम है गिरडीह, झारखंड से ये फरमाइश आई है। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों, गीत के बोल हैं ए दिल है मुश्किल, फिल्म का नाम है तमाशा। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद यासिन आशमित, शाइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू ऐत, मिफ्रा नवाज, बीबी चाहत और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूँगी और भी श्रोता साथी हैं, फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देवी कर्णी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हेयांश कुमार चंदन, सोंगा धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं ये, अमरावती से हैं श्याम कीटे, वंदना कीटे, कार्तिक कीटे, भाविका कीटे, समस्त कीटे परिवार सदस्यगण और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। पोपलगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं खुपटी, महाराष्ट्र से बंडू लोहार, चंद्रकला, देवीदास और बंडू जी। दुलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इरकास, नरगिस खातून जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं ए दिल है मुश्किल, तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की। और अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है वीर ज़ारा, गीत के बोल हैं क्यों हवा। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं मोहम्मद फरमान सलमान इरफान इरकास नरगिस खातून जी। और भी श्रोता साथी हैं, वसीम महाराष्ट्र से, मास्टर विठल सुरशी सुषमा सुर से, प्रदीप शुरू से, मायरा शुरू से जी। और भी हमारे दोस्त हैं जो जुड़ रहे हैं इसी गीत के साथ में। बदायूं से हैं इसरत खान, शारा बेगम, शहबूत खान, शबरीन खान, शहबाज खान, शेफ खान, ईशान खान, नंदकिशोर कटे, संगीता कटे, साक्षी कटे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, जयश्री मेथरे, रामनिवास अग्रवाल, दिनेंद्र डहुल, बीपी कुलथे जी। दूल्हा ऊपर उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष सोहिनी, मोहितिक, बलवीर सिंह जी। और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं हेमंत नामदेव, नंदिनी नामदेव, नेहा निशा नामदेव, छनुला शिवा, रंजन साहू जी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से और भी दोस्त हैं छनुला श्रीवास, नीता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रंजन साहू, हेमंत नामदेव जी। आगरा से हैं सरिता चौरसिया, सुमित चौरसिया, वीर अबीर जी। कानपुर से हैं सुजाता चौरसिया, पंकज चौरसिया जी, दिया चौरसिया जी। पटापरा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी, अरविंद सिंह चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अग्रवाल, रानू अग्रवाल, वीरेंद्र अग्रवाल, लक्ष्मी जोशी जी और अंकिता जोशी, हंसिका जोशी, विदही जोशी। और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं। करेली बरेली से आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, नशीन मोहम्मद अंसारी, शमा अंसारी, माहिनूर अंसारी जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं क्यों हवा। साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी गीत के साथ हमारा कार्यक्रम आपकी फरमाइश का सिलसिला यहीं समाप्त होगा साथियों, क्योंकि देख रहे हैं कि समय भी हो चला है। तो आप सभी से फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेषर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

गहराई से अंधेरे की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है।

तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को कैसे लगी, इस बारे में आप अपनी राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता ही वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज की सभा से जाने की। आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल और स्वागत करती हूं आपका हमारे आज की सायकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। साथ ही श्रोता साथियों, बताना चाहूंगी कि स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। श्रोता साथियों, संध्याकालीन सभा की शुरुआत से पहले आइए जानते हैं पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम हम सुनेंगे भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। अगला कार्यक्रम शुरू होगा आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज। इसे लेकर आएंगे प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 5:30 पर। इसके बाद हम रुख करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन की ओर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगे प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:00। फिर अगला कार्यक्रम शुरू होगा इसी कड़ी में किसान भाइयों का खेतीबाड़ी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगी अंजलि पारेशर और इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। दोस्तों, कार्यक्रमों की रूपरेखा में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7:00। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी अंजलि पारेशर। अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मनीषा पटेल यानी कि मेरे साथ में, और मेरे साथ होगी हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इसके बाद आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे ठीक 8:00। दोस्तों, मनोरंजन की होगी पूरी भरमार, तभी आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत ठीक 8:30 पर। श्रोता साथियों, इन्हीं नगमों के बाद हम रुक करेंगे गजलों की ओर, सुनेंगे कुछ प्यार भरी गजलों को रात्रि 9 से 10 बजे तक। तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी आज की संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए सभा की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

0: आज के सुविचार।
1: दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करते हैं। हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि इन सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं, और यदि अनजाने में भी कोई अन्य व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है, क्या हमने कभी विचार किया? सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देते, अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोपते, अर्थात किसी की स्वतंत्रता का अस्वीकार करते हैं। और जब स्वतंत्रता का अस्वीकार किया जाता है तो उसका हृदय दुख से भर जाता है, और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का देह है, क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं? स्वयं विचार कीजिए।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़े में देखाय तो आपड़े आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोनू, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ की छाव में आपड़े रह हूं या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जैया हवा में आपड़े हाल हूं ई भी आपड़ा थकी कई आश रागे है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा, प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना ना कदम है ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: दोस्तों अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसे स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हमारी बातें रहने वाली है कि एक सफर हजार सीख यात्रा युवाओं को कितना बदल सकती है। श्रोताओं, जैसा कि कभी आपने सोचा होगा कि हम जब अपने घर से बाहर निकलते हैं, किसी नए शहर में जाते हैं, किसी गांव को देखते हैं, पहाड़ों के बीच पहुंचते हैं, किसी ऐतिहासिक जगह को देखते हैं या फिर किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत करते हैं, तो आखिर हमारे भीतर क्या बदलता है?
0: बिल्कुल,
1: कि यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का नाम है या फिर यात्रा हमारे सोचने का तरीका है, लोगों को समझने का नजरिया है और खुद को पहचानने का तरीका भी बदल सकती है।
0: जी हाँ।
1: तो इसी सवाल के साथ आज का हमारा विषय है, जैसा कि एक सफर हजार सीख यात्रा युवाओं को कितना बदल सकती है। तो
0: जी
1: इसी
0: हाँ,
1: विषय को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत में, जैसा कि हमारा दस्तूर है कि शुरुआत में हम हमारे श्रोता साथियों को गीत संगीत सुनवाते हैं, तो सुनवा देते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।
0: बिल्कुल, तो युवा साथियों आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय से रूबरू आपको करा ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं एक सफर हजार सीख को लेकर, और यात्रा हमारे युवाओं को कितना बदल सकती है। जागृति जी, अगर यहाँ पर बात करें कि यात्रा सिर्फ रास्ता नहीं है बल्कि अनुभव होती है, तो हम अक्सर यात्रा को छुट्टियों, घूमने फिरने और तस्वीरें खींचने से जोड़कर देखते हैं। किसी नई जगह जाना, वहाँ की खूबसूरत तस्वीरें लेना, दोस्तों के साथ समय बिताना या फिर वापस घर आ जाना। लेकिन दोस्तों, अगर हम थोड़ा गहराई से देखेंगे तो यात्रा इससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है।
1: बिल्कुल,
0: यात्रा हमें किताबों से बाहर की दुनिया पढ़ाती है। किताब में हम किसी गांव के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम उस गांव में जाकर वहां के लोगों से मिलते हैं, जागृति जी, उनकी दिनचर्या देखते हैं, उनके संघर्षों और खुशियों को समझते हैं, तब उस जानकारी का अर्थ हमारे लिए और अलग हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: हम किसी संस्कृति के बारे में किताबों में पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम उस संस्कृति के लोगों के साथ बैठते हैं, उनका भोजन देखते हैं, उनकी भाषा सुनते हैं और उनकी परंपराओं को समझते हैं साथियों, तब हमें महसूस होता है कि दुनिया कितनी विविध है। इसलिए कहा जा सकता है कि एक सफर कई बार हजार किताबों जितना अनुभव दे सकता है।
1: जी हाँ,
0: हालांकि यात्रा किताबों का विकल्प नहीं है, लेकिन किताबों से मिली जानकारी और यात्रा से मिले अनुभव एक दूसरे को और मजबूत कर सकते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि युवा अवस्था जीवन का वो समय है जब व्यक्ति अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में और दुनिया के बारे में बहुत कुछ समझने की कोशिश करता है। यही वो समय है जब हमारे सामने कई सवाल आते हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मेरा क्या लक्ष्य है, मुझे किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहती हूँ, मेरी ताकत क्या है, मेरी कमजोरी क्या है। श्रोताओं, इन सवालों के जवाब हमेशा सिर्फ घर या किताबों में

0: नहीं मिलते, कई बार हमें अपने जवाब अनुभव से मिलते हैं और यात्रा ऐसे अनुभव का एक महत्वपूर्ण माध्यम हो सकती है। जब युवा अपने परिचित वातावरण से बाहर निकलते हैं कशिश, तो उसे अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हम देखते हैं कि उन्हें नए लोगों से बात करनी पड़ती है, रास्ते समझने पड़ते हैं, समय का ध्यान रखना होता है और कभी कभी अचानक बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना भी पड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: और यहीं से शुरू होती है असली सीख।
1: जी हाँ जागृति जी, अगर हम बात करें कि यात्रा से हमारे युवा साथियों को क्या क्या सीख मिलती है, तो श्रोता साथियों पहली सीख है आत्मनिर्भर बनना। जैसे कि यात्रा हमें सबसे पहले चीज जो सिखाती है वो है आत्मनिर्भरता। जागृति जी, घर में रहते हुए बहुत सी चीजें हमारे लिए पहले से व्यवस्थित होती है, जैसे कि समय पर खाना हमें मिल जाता है, जरूरत की चीजें आसानी से मिल जाती हैं, कहीं पर अगर जाना हो तो कोई साथ छोड़ देता है। लेकिन जब हम यात्रा पर होते हैं तो कई निर्णय हमें खुद लेने पड़ते हैं साथ।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि कहाँ जाना है, कितने समय में पहुँचना है, अपनी चीजों का ध्यान कैसे रखना है, अनजान परिस्थिति में किससे मदद लेनी है। इन छोटी छोटी परिस्थितियों से और जिम्मेदारियों से आत्मनिर्भरता विकसित होती है।
0: जी हाँ,
1: ऐसे में हमारी युवा साथियों को धीरे धीरे ये समझ आ जाता है कि हर समस्या का समाधान कोई दूसरा नहीं करेगा, कई बार हमें खुद भी रास्ता तलाशना होगा।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, ये सीख आगे चलकर जीवन की बड़ी परिस्थितियों में भी हमारे काफी काम आती है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि हम जिस वातावरण में बड़े होते हैं वही हमें दुनिया की पहली तस्वीर देता है। हमारे घर की परंपराएं, हमारे आसपास के लोग, हमारा शहर या गांव, इन सब का हमारी सोच पर प्रभाव पड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जब हम दूसरी जगह जाते हैं तो हमें पता चलता है कि दुनिया में चीजों को देखने के बहुत सारे तरीके हैं। कहीं लोग अलग भाषा बोलते हैं, कहीं पहनावा अलग होता है, कहीं भोजन अलग होता है, कहीं रहने का तरीका अलग होता है, कहीं लोग त्योहार अलग तरीके से मनाते हैं, लेकिन इन सभी विविधताओं के बीच इंसान की भावनाएं कई जगह एक जैसी होती है।
1: जी बिल्कुल,
0: खुशी, दुख, मेहनत, उम्मीद, परिवार, दोस्ती और सपने, ये जो भावनाएं हैं वो सीमाओं से बड़ी होती है। यात्रा युवाओं को ये समझने में मदद कर सकती है श्रोताओं कि अलग होना गलत नहीं है।
1: बिल्कुल जागृति जी, साथी दोस्तों, यात्रा हमें सिर्फ जगहों से नहीं बल्कि लोगों से भी मिलाती है। तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से बातें कर ही रहे हैं और आगे भी ये बातें हमारी जारी रहेंगी, हम जानेंगे कि लोगों को समझना क्या होता है, तो ये बातें आगे भी जरूर होंगी। लेकिन अभी यहाँ पर सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
0: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी कि एक सफर हजार सीख यात्रा युवाओं को कितना बदल सकती है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जान पा रहे थे कि यात्रा सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि हमारा अनुभव भी होती है।
1: बिल्कुल,
0: युवा और यात्रा का क्या रिश्ता होता है इसके बारे में भी हमने जाना था। साथ ही आत्मनिर्भर बनाना किस तरह से यात्रा हमें सिखाती है और दुनिया हमारी सोच से बड़ी किस तरह से हो सकती है, यही जानते हैं कि लोगों को समझना क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि कशिश, यात्रा हमें सिर्फ जगहों से नहीं लोगों से भी मिलाती है। किसी यात्रा में हम ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जिनकी जिंदगी हमारे अनुभव से बिल्कुल अलग हो।
1: जी जी,
0: किसी छोटे गांव का किसान हमें खेती के बारे में ऐसी बात बता सकता है जो हमने किताब में कभी नहीं पढ़ी हो।
1: बिल्कुल,
0: किसी स्थानीय कारीगर से मिलकर हमें पता चल सकता है कि एक साधारण सी दिखने वाली वस्तु के पीछे कितनी मेहनत और कौशल छिपी है। किसी दुकानदार से बातचीत हमें स्थानीय अर्थव्यवस्था समझा सकती है। किसी बुजुर्ग से बातचीत हमें इतिहास की ऐसी कहानी सुना सकती है जो किसी किताब के पन्ने से भी ज्यादा जीवंत लगे।
1: बिल्कुल,
0: यात्रा हमें समझाती है श्रोताओं की हर व्यक्ति के पास एक कहानी है और हर कहानी से कुछ सीखा जा सकता है।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि साथियों कई बार हम किसी वस्तु को तैयार रूप में देखते हैं और उसके पीछे की मेहनत भूल जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जब हम किसी गांव में जाकर खेती देखते हैं, किसी हस्तशिल्प केंद्र में कारीगर को काम करते हुए देखते हैं, किसी पहाड़ी क्षेत्र में लोगों की दिनचर्या देखते हैं या किसी स्थानीय बाजार में छोटे व्यापारियों से मिलते हैं श्रोता साथियों, तो हमें ये समझ आता है कि रोजमर्रा की जिंदगी कितनी मेहनत से चलती है। यात्रा हमारे भीतर श्रम के प्रति सम्मान पैदा कर सकती है। तब हमें महसूस होता है जागृति जी कि किसी भी काम को छोटा समझना सही नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: हर काम के पीछे किसी व्यक्ति का समय होता है, कौशल होता है और मेहनत छिपी हुई होती है।
0: जी हाँ कशिश, इसी के साथ समस्या समाधान की क्षमता भी हमें यात्रा सिखाती है। साथ ही समय और जिम्मेदारी भी हमें यात्रा से हमें अनुभव हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: हर यात्रा कैमरे में नहीं बल्कि हमारे अनुभव में होती है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी भी हमारी बढ़ जाती है जब हम यात्रा करते हैं। अपनी पहचान को भी हमें समझना होता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपसे कहना चाहेंगे कि मान लीजिए श्रोताओं कि एक युवा अपने शहर से पहली बार किसी दूसरे राज्य की यात्रा पर जाता है। शुरुआत में उसे लगता है कि ये बस कुछ दिनों की घूमने की यात्रा है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात अलग अलग लोगों से होती है।
1: बिल्कुल,
0: वो एक छोटे से गाँव में रुकता है, वो एक किसान से बातचीत करता है, उसे पता चलता है कि किसान मौसम, पानी और बाजार की कई चुनौतियों के बीच खेती करता है। आगे वो एक स्थानीय कारीगर से मिलता है और देखता है कि एक साधारण वस्तु बनाने में घंटों की मेहनत लगती है।
1: बिल्कुल,
0: फिर वो किसी ऐतिहासिक स्थान पर जाता है और समझता है कि जिस इतिहास को उसने किताबों में सिर्फ कुछ पन्नों में पढ़ा था उसके पीछे कितनी लंबी कहानी है। घर लौटते समय वह वही व्यक्ति नहीं होता जो यात्रा शुरू करते समय था। उसका शहर वही है, उसका घर वही है, उसके दोस्त वही है,

0: लेकिन उसकी नजर अब बदल चुकी है। अब वो मेहनत को अलग नजर से देखने लगता है कशिश, लोगों के जीवन को समझने की कोशिश करता है, प्रकृति के प्रति ज्यादा जिम्मेदार महसूस करता है।
1: जी हाँ।
0: और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि वो खुद को थोड़ा बेहतर समझने लगता है, और यही है यात्रा की असली ताकत।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि युवाओं के लिए यात्रा का मतलब सिर्फ महंगे होटल, बड़ी गाड़ी या सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालना नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: साथियों, यात्रा का मतलब हमारे लिए होना चाहिए नई जगह देखना, नई भाषा सुनना, नई संस्कृति को समझना, इतिहास को जानना, स्थानीय लोगों से मिलना, प्रकृति को समझना, नई परिस्थितियों का सम्मान करना, और सबसे बढ़कर खुद को थोड़ा और जानना।
0: जी हाँ।
1: जरूरी नहीं है कि सीखने के लिए हमेशा दूर देश ही जाना पड़े। कई बार हमारे आसपास का कोई गांव भी हमारे लिए एक नई दुनिया हो सकता है।
0: बिल्कुल।
1: साथियों, अपने ही जिले का कोई ऐतिहासिक स्थल हमें एक नया इतिहास सिखा सकता है, किसी स्थानीय बाजार की यात्रा हमें छोटे व्यापार की समझ दे सकती है, और किसी किसान से बातचीत हमें मिट्टी और मेहनत की कीमत समझा सकती है। यानी कि जागृति जी, सफर की कीमत दूरी से नहीं, अनुभव से तय होती है।
0: बिल्कुल कशिश, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि यात्रा हमें संवेदनशील भी बनाती है। जब हम केवल अपने जीवन को देखते हैं तो हमारी समस्या हमें सबसे बड़ी लग सकती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जब हम अलग अलग लोगों की जिंदगी देखते हैं तो हमें समाज की विविध वास्तविकताओं का अनुभव हो जाता है। किसी के पास कम साधन हो सकते हैं लेकिन फिर भी वो खुश रहने की कोशिश कर रहा है, कोई कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपना काम कर रहा है, कोई अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे अनुभव हमें दूसरों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बना सकते हैं। हम समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी अलग परिस्थितियाँ होती है, इसलिए किसी को उसकी स्थिति देखकर तुरंत जज करने के बजाय उसके अनुभव को समझने की कोशिश करनी चाहिए।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि दोस्तों सवाल ये नहीं है कि हमने कितनी यात्राएं की हैं, सवाल तो ये है कि उन यात्राओं ने हमें कितना बदला है।
0: बिल्कुल।
1: अगर यात्रा के बाद हम थोड़ा अधिक जिम्मेदार बने हैं तो यात्रा सफल रही। अगर हम दूसरों की संस्कृति का सम्मान करने लगे हैं तो अभी हमारी यात्रा सफल है। अगर हम प्रकृति को लेकर ज्यादा संवेदनशील हुए हैं श्रोता साथियों, और अगर हमने किसी नए कौशल या करियर के बारे में सोचना शुरू कर दिया है तो भी हमारी यात्रा सफल हो चुकी है।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि असली यात्रा वह नहीं होती जो केवल हमें किसी स्थान तक ले जाए, असली यात्रा तो वह है जागृति जी जो हमें अपने पुराने विचारों से आगे लेकर जाए।
0: जी हाँ कशिश, तो हमारे श्रोता साथियों को यही कहना चाहेंगे हमारी आज की इस बातचीत से कि श्रोता साथियों, सफर हमेशा मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होता, कई सफर हमें खुद तक पहुंचाने के लिए भी होते हैं। एक रास्ता हमें नया शहर दिखा सकता है, एक मुलाकात हमें नई सोच दे सकती है, एक गांव हमें मेहनत का अर्थ समझा सकती है, एक पहाड़ हमें धैर्य सिखा सकता है कशिश, और एक नदी हमें निरंतर आगे बढ़ना सिखा सकती है।
1: जी हाँ।
0: और एक छोटी सी यात्रा भी हमारे भीतर कोई बड़ा बदलाव ला सकती है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए श्रोताओं, अगली बार जब आप यात्रा पर निकले तो केवल ये मत सोचिए कि मैं क्या देखने जा रहा हूँ, बल्कि ये भी सोचिए कि मैं क्या सीखने जा रहा हूँ, क्योंकि एक सफर हजार सीख दे सकता है अगर हमारी नजर सिर्फ रास्ते पर नहीं सीख पर हो तो।
1: बिल्कुल। याद रखिए युवा साथियों, रास्ते बदलते रहेंगे, जगह बदलती रहेंगी।
0: बिल्कुल।
1: और लोग भी मिलते और बिछड़ते रहेंगे, लेकिन हर सफर अपने साथ कोई ना कोई सीख जरूर छोड़ सकता है।
0: जी हाँ।
1: तो निकलते रहिए यात्रा पर, सीखते रहिए, अनुभव करते रहिए, और अपने हर सफर को अपनी जिंदगी की एक नई पाठशाला बनाते रहिए।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि कशिश, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, और उम्मीद करते हैं कि बातें हमारे श्रोता साथियों को जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ।
0: इन्हीं उम्मीदों के साथ आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेना चाहेंगे, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो दोस्तों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को। नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाए
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

भाई बोनो, घर के निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, ने सोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। साथियों आज हम कार्यक्रम में बात करने वाले हैं कि बच्चों के लिए अच्छा खाना बहुत जरूरी है या सिर्फ खाना खिलाना ही पर्याप्त नहीं है। यह भी समझना जरूरी है कशिश कि बच्चे क्या कितना और किस उम्र में खा रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: आजकल बच्चों के पोषण को लेकर कई तरह की बातें सुनने को मिलती है। कोई कहता है कि बच्चा मोटा है तो स्वस्थ है, कोई कहता है कि महंगा हेल्थ ड्रिंक ही बच्चे के लिए बहुत ताकतदार होता है, कोई सोशल मीडिया पर देखकर किसी एक खाद्य पदार्थ को बच्चों के लिए सबसे अच्छा मान लेता है। लेकिन श्रोता साथियों, क्या हर सुनी सुनाई बात सही है? ये जरूरी नहीं है। तो आज कार्यक्रम सच्चा बचपन में हम बात करेंगे सही जानकारी से सही पोषण, भ्रम से कैसे बचें।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो बातें इस विषय को लेकर ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत-संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्या ना शुरुआत इसी दस्तूर को निभाते हुए एक प्यारे से गीत के साथ हम करें?
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले विषय से तो रूबरू आपको करा ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं सही जानकारी से सही पोषण को लेकर, साथ ही हम भ्रम से कैसे बच सकते हैं। अगर बात करें अंजलि जी की सही पोषण क्यों जरूरी होता है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चों का शरीर लगातार बढ़ रहा होता है, उनकी हड्डियों, मांसपेशियों, दिमाग और रोगों से लड़ने की क्षमता के विकास के लिए अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत होती है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए साथियों, बच्चे की थाली में केवल पेट भरने वाला भोजन नहीं बल्कि विविध और संतुलित भोजन भी होना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: जैसे कि दालें, अनाज, सब्जियां, मौसमी फल, दूध, दही, अंडा, परिवार में उपलब्ध होने वाली पौष्टिक खाद्य पदार्थ जो होते हैं, वो बच्चे की उम्र और जरूरत के अनुसार बच्चों के भोजन का हिस्सा बनाए जा सकते हैं। साथ ही एक ही चीज रोज खिलाने से श्रोता साथियों भोजन में विविधता नहीं देखी जाती, इसलिए आपसे कहना चाहेंगे कि आप बच्चे को एक ही चीज रोज न खिलाएं बल्कि भोजन में विविधता बनाए रखें।
1: जी हाँ, यही कशिश अब बात आती है कि भ्रम से कैसे बचें। तो श्रोता साथियों, बच्चे के भोजन को लेकर सबसे जरूरी बात है कि हर सलाह को तुरंत सच न माने। मोबाइल पर कोई वीडियो देखकर या किसी रिश्तेदार से सुनकर बच्चे के खाने में बड़ा बदलाव करने से पहले यह जरूर देखें कि जानकारी विश्वसनीय है या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है कि कोई एक खाद्य पदार्थ बच्चे की हर कमजोरी दूर कर देगा, तो ऐसी बातों पर सावधानी जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह किसी बच्चे को देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि वह स्वस्थ है।

0: है या नहीं। केवल मोटा या दुबला दिखना ही बच्चे के स्वास्थ्य का पूरा पैमाना नहीं है। अगर बच्चे का वजन और विकास ठीक नहीं लग रहा, बच्चा लगातार खाना नहीं खा रहा या कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानी है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ANM और चिकित्सक से सलाह लेना बेहतर होगा।
1: बिल्कुल अंजलि जी, यही हम बात करें तो कई माता पिता बच्चे को खाना खिलाने के लिए मोबाइल चलाते हैं या बच्चे के मना करने पर जबरदस्ती खिलाते हैं। ऐसे में हम उनसे कहना चाहेंगे कि बच्चों को प्यार और धैर्य से भोजन कराना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: उसे श्रोता साथियों, अलग अलग पौष्टिक चीजों का स्वाद और बनावट समझने का आप मौका दें। छोटे बच्चों के लिए उम्र के अनुसार भोजन की मात्रा और बनावट में बदलाव जरूरी होता है। जैसे कि 6 महीने पूरे होने के बाद स्तनपान के साथ उम्र के अनुरूप पूरक आहार शुरू किया जा सकता है।
0: बिल्कुल।
1: हर बच्चे की जरूरत अलग हो सकती है साथियों, इसलिए किसी दूसरे बच्चे की डाइट देखकर अपने बच्चे की डाइट तय करना सही तरीका नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल कशिश, यही बात आती है मोबाइल की जानकारी को कैसे परखें, क्योंकि जब भी बच्चों के पोषण से जुड़ी कोई जानकारी मोबाइल पर मिले तो 3 बातें हमेशा याद रखनी है। पहली, जानकारी किसने दी है। दूसरी, कि क्या उसका कोई विश्वसनीय आधार है। तीसरी, कि क्या जानकारी मेरे बच्चे की उम्र और जरूरत के लिए सही है। अगर जवाब स्पष्ट नहीं है तो उसे आगे भेजने के बजाय पहले किसी स्वास्थ्य कर्मी से पूछें।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि गलत जानकारी सिर्फ एक संदेश नहीं होता बल्कि वह हमारे बच्चे की थाली तक पहुंच सकती है। इसलिए बच्चे का स्वस्थ बचपन केवल इस बात से तय नहीं होता कि उसने आज कितना खाना खाया है, जरूरी यह है कि उसे मिलने वाला भोजन पौष्टिक, सुरक्षित और उसकी उम्र के अनुसार होना चाहिए।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से बातें हमारी बहुत अच्छी चल रही है, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, आज हम कार्यक्रम में जान रहे हैं सही जानकारी से सही पोषण, भ्रम से कैसे बचें। यही श्रोता साथियों बात बताना चाहेंगे आपको कि हमें बच्चों के भोजन को लेकर सुनी सुनाई बातों और सोशल मीडिया के हर दावे पर आंख बंद करके विश्वास करने के बजाय सही जानकारी की पहचान करनी होगी।
1: बिल्कुल,
0: हमारे घर में उपलब्ध दाल, अनाज, सब्जियां, फल और अन्य खाद्य पदार्थ भी बच्चे के लिए उपयोगी हो सकते हैं। जरूरत है कशिश तो बस उन्हें सही तरीके से और विविधता के साथ भोजन में शामिल करने की।
1: जी
0: और
1: हाँ।
0: सबसे जरूरी, अगर बच्चे के पोषण या विकास को लेकर कोई चिंता हो तो अनुमान लगाने के बजाय स्वास्थ्य कर्मी से सलाह ले, क्योंकि सही जानकारी से सही थाली बनती है और सही थाली से मजबूत बचपन बनता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें तो बच्चों की भूख को समझना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि हर दिन बच्चे की भूख एक जैसी नहीं होती, कभी बच्चा ज्यादा खाएगा तो कभी कम। इसलिए श्रोता साथियों, एक दो बार कम खाने पर घबराने के बजाय पूरे दिन के भोजन और बच्चे की सक्रियता पर आप ध्यान दें।
0: बिल्कुल,
1: खाने की तुलना दूसरे बच्चों से न करें, जैसे कि देखो तुम्हारी उम्र का बच्चा कितना खाता है और तुम इतना कम। श्रोता साथियों, ऐसी तुलना बच्चे पर दबाव डाल सकती है।
0: बिल्कुल,
1: हर बच्चे की पसंद और खाने की क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए आप खाने की क्षमता पर ध्यान न दें।
0: बिल्कुल कशिश, यही बात करें तो बिस्किट, नमकीन, मीठे पेय और दूसरे पैकेट वाले खाद्य पदार्थ जो हैं वो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आ सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन उन्हें पौष्टिक भोजन का विकल्प नहीं समझना चाहिए। घर का जो अलग अलग खाना होता है उसको ही हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। इसी के साथ, बच्चे ने अच्छा काम किया है तो हर बार उसे चॉकलेट देना या गलती करने पर खाना रोक देना सही आदत नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: इससे बच्चे के मन में भोजन को लेकर गलत संबंध बन सकते हैं।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही अगर बात करें श्रोता साथियों तो भोजन की स्वच्छता भी पोषण का एक हिस्सा होती है। जैसे कि पौष्टिक खाना अगर साफ सफाई के बिना तैयार किया गया हो तो बच्चा बीमार पड़ सकता है। ऐसे में हाथ धोना, साफ पानी इस्तेमाल करना और भोजन को ढककर रखना उतना ही जरूरी है अंजलि जी।
0: बिल्कुल,
1: माता पिता की चिंता स्वाभाविक होती है, लेकिन बच्चे को उसकी इच्छा के विरुद्ध बार बार खिलाने के बजाय शांत वातावरण में भोजन की आदत विकसित करना बेहतर हो सकता है। इसलिए ज्यादा खिलाना हमेशा सही नहीं है साथियों। आपको कहना चाहेंगे कि बच्चे की थाली देखकर सिर्फ ये मत पूछिए कि उसने कितना खाना खाया, ये भी देखिए कि उसने क्या खाया, कैसे खाया और क्या वो भोजन उसकी जरूरत के अनुसार था। भ्रम से बचने का सबसे आसान तरीका है सुनी हुई बात को तुरंत मानना नहीं, सही स्रोत से जानना, क्योंकि बच्चों के पोषण में छोटी सी सही जानकारी रोज की आदत बदल सकती है और गलत जानकारी लंबे समय तक बच्चों को और उनकी सेहत पर नुकसान पहुंचा सकती है।
0: बिल्कुल कशिश, यही श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि बच्चे की सेहत की नींव किसी एक दिन या किसी एक भोजन से नहीं बनती, रोज की छोटी छोटी आदतों से तैयार होती है। बच्चा क्या खाता है, खाने का माहौल कैसा है, परिवार भोजन को लेकर उससे किस तरह बात करता है और बीमारी या कमजोरी के समय सही सलाह कहाँ से लेता है, इन सभी बातों का असर उसके बचपन पर पड़ता है। इसलिए बच्चों के पोषण को लेकर हमें डर या भ्रम के बजाय समझ और धैर्य अपनानी चाहिए। हर नई जानकारी को सच मानने की जल्दबाजी न करें, खासकर जब बात बच्चे के स्वास्थ्य की हो तो सोशल मीडिया की सलाह या किसी के व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर निर्णय लेने के बजाय विश्वसनीय स्वास्थ्य कर्मी से जानकारी लेना ज्यादा सुरक्षित है।
1: बिल्कुल,
0: तो जैसा कि कशिश बातें कार्यक्रम में बहुत अच्छी चल रही है, कुछ और छोटी मोटी महत्वपूर्ण बातें हैं वो कार्यक्रम के माध्यम से हम आगे अवश्य करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: जी हाँ अंजलि जी।
2: चकरका चीचा चो चकलो रम गंडो वंडो लकरका टम अक्को टक्को इडी गिडी गिडी गो इडी पाई विडी पाई चिकी चकचो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकरका हुकु बुकुरे टुकु बुकुरे चकरका भिको चिको सिली सिली सिली गो बगड़ दुम चकड़ दुम चिकी चकचो।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि कशिश गीत से पहले तो हमने ढेर सारी बातों को जान ही लिया, यही श्रोता साथियों से अंत में कहना चाहेंगे कि बच्चों को स्वस्थ बनाने की जिम्मेदारी केवल माँ की नहीं होती है, पिता, दादा दादी और परिवार के दूसरे सदस्य भी भोजन और देखभाल में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। जब पूरा परिवार मिलकर बच्चे की थाली और उसकी आदतों पर ध्यान देता है तो बच्चे के लिए स्वस्थ वातावरण बनता है। बच्चों को भी धीरे धीरे अपने भोजन को पहचानना सिखाएं, उन्हें बताएं कि अलग अलग रंग की सब्जियां क्यों खानी चाहिए, दाल और दूसरे प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ क्यों जरूरी है, पानी क्यों पीना चाहिए और हाथ साफ रखना क्यों जरूरी है। जब बच्चा भोजन का कारण समझने लगता है तो स्वस्थ आदतें केवल माता पिता के कहने से नहीं उसकी अपनी समझ से बनने लगती है। और हाँ श्रोता साथियों, बच्चों के स्वस्थ होने का मतलब यह नहीं है कि वह हमेशा ज्यादा खाए, उसका वजन लगातार बढ़ता रहे। असली बात यह है कि उसका उम्र के अनुसार विकास सक्रिय रहना, सामान्य रूप से खाना पीना और जरूरत पड़ने पर समय पर स्वास्थ्य सलाह मिलना। तो इस तरीके से हम अपने घर से छोटे से शुरुआत कर सकते हैं, बच्चे की थाली में बदलाव के साथ अपनी जानकारी में भी बदलाव ला सकते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी हो चुकी है और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी जी,
1: तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे कार्यक्रम का पता हम हमारे दोस्तों को बताएं।
0: बिल्कुल, तो लिख लीजिए श्रोता साथियों, हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
1: बिल्कुल,
0: हमारा फोन नंबर है 9414082643।
1: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
0: नमस्कार।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बुनो ने आपनी बुन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बुन आप हमरी रहो आपरो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु घणे मन स्वागत करो हो अमारे आसे कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम की भाई बुनो अमे अमारे टेम माते हासिल थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाथे। तो भाई बुनो आज हमारे कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नु विषय है कि खरीफ नु आज सीजन चाली रू है, इनमें अपने अवड़े ना टेम में कई कई बात नु ध्यान रखू है ने अणी वातनु ध्यान रखते तके आपड़े आपड़ा उत्पादन ने असल तरीका तकी हेते प्राप्त करी शकाओ। तो अणा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी अब तकी घणा कानी वाते थाएंगा, पण कार्यक्रम शुरू कर इने पहले आपने हमरा विदा गीत ने मोरे कर आपड़ी वाते। तो बाइन बोनो आप हमरते रेजू आपड़ू रेडियो आपड़ी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: जी जी।
1: दूसरा क्या है कि जैसे हमारे यहाँ खेती करते हैं तो हम बहुत अच्छी स्थिति से करते हैं कि लाइन से करते हैं, तो होता क्या है कि हमारे जो पौधों की दूरियां ज्यादा होती है तो इस कारण वो जो धूप आती है वो सीधी मिट्टी पे गिरती है।
0: बिल्कुल।
1: तो इसलिए उनको बचा कर रखिए। दूसरा है, अगर आपके पास में कुछ फसलों का अवशेष है या आपने गाय भैंस जो आप रखते हैं पशु उनके जो चारा का अवशेष निकलता है आप उसको फैला सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: ताकि वो आपको अच्छे से मल्चिंग का काम करेगा। इस तरह से हमें रखना चाहिए। दूसरा कि अगर आपके पास पानी है तो क्योंकि अभी फसल पकने की स्थिति है तो आप उसमें पानी जरूर दे सकते हैं, हल्का पानी पिलाए ताकि उसको नुकसान ना हो। नहीं तो फिर दाने जो है आपके वो पकने में क्या होगा कि उस गुणवत्ता के साथ नहीं पकेंगे।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से हमें मिट्टी की नमी का ध्यान रखना है, खरपतवार का जो नियंत्रण है वो कैसे करना है, यही कीट और रोग की पहचान हमारे किसान भाई बहन कैसे कर सकते हैं?
1: देखिए, कीट और रोग है उसकी पहचान का सबसे आसान तरीका है वो है हमारा निरीक्षण। आप पौधों को बहुत नजदीक से देखें और देखें कि उसमें जैसे कोई कीट लग रहा है या पत्तियों में है या फिर जो पेड़ की जड़ों में है या उसके तना में दिक्कत है या फिर जो फसल लगी हुई है जैसे अगर मक्की के भुट्टे लगे हुए हैं तो उनको वो एक दो को खोलकर जरूर देखें कि अंदर की स्थिति क्या है। अगर उसमें जैसे सफेद मक्खी है या नीचे फंगस है या इस तरह की कोई दिक्कतें हैं या जो शत्रु कीट है वो पूरी तरह से उस पर हावी है या कुछ नुकसान हो रहा है,
0: बिल्कुल,
1: तो उसका बिल्कुल बारीकी से आपको फसल को देखना पड़ेगा। कहीं जैसे आपके अगर मूंग है या आपने उड़द लगा तुअर है तो उसकी फली को आप खोल के देखें,
0: बिल्कुल,
1: तो उससे आपको पता लगेगा कि क्या स्थिति है। तो इस तरह से हमें है जो उसको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा कि अगर आपको लग रहा है कि कोई कीट है तो हमारे जो परंपरागत जो हम दवाइयां हैं जैसे दसपर्णी है, हमारे नीमास्त्र है, जीवामृत है, तो ये चीजें हैं दोनों काम करती है। एक तो फसल को पोषण भी देती है और इनसे खाद भी मिलता है,
0: बिल्कुल,
1: तो और ये आपके कीटों को जो दूर भगाती है। वो कीट तो आप उसका छिड़काव करें लेकिन वो स्थिति देखने के बाद आप ये निर्णय लें कि कौन सी दवाई आपको छिड़कनी है और कौन से खेत में देनी है।
0: बिल्कुल।
1: हो सकता है कि सभी खेतों में ना हो, थोड़ी एक दो खेत में हो, तो उस तरह से देखकर हमें परंपरागत जो दवाइयां हो उसका छिड़काव करना चाहिए।
0: बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातों से हमें अवगत करवा रहे हैं, तो और भी कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिनका हमारे किसान भाई बहनों को इस समय ध्यान रखने की जरूरत है?
1: जी, तो अगर और जो हम बात करते हैं कि अभी हमें और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो एक तो ये है कि खेत में अगर अभी पानी नहीं है, बारिश नहीं है, लेकिन हो सकता है तेज बारिश हो जाए अचानक,
0: बिल्कुल,
1: तो उसकी निकासी की व्यवस्था आप पहले से तैयार रखें। दूसरा, जो पौधे हैं जो अनावश्यक पौधे होते हैं जिसको बोलते हैं, तो वहां पे क्या है कि होता है क्या कि हम उस मिट्टी को खोद के पौधों को निकालने की कोशिश करते हैं या उनको काट लेते हैं। तो पहले देखें कि अगर आपने मिट्टी में कोई गड्ढा कर रहे हो तो गड्ढा आसपास की जो फसल आपको उसको नुकसान पहुंचा सकता है,
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि वो आपकी मिट्टी का जो नमी है उसको प्रभावित करता है। इसी तरह जो है जैसे हम बात करते हैं कि इस समय फसल पक रही है तो इस समय एक ये भी कर सकते हैं, बीजों की जो पहचान है वो भी आप कर सकते हैं कि जो अच्छे पौधे हैं जिनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है तो आप उनको टेक लगा सकते हैं, मतलब कुछ कपड़ा बांध दिया आपने कि ये पौधों से मुझे बीज लेना है, तो वो भी आप अभी कर सकते हैं,
0: बिल्कुल,
1: उसको पहचान करके। इसके साथ में जो है जब बीज की बात हम करते हैं क्योंकि अभी फिर अपनी फसल का समय आ जाएगा तो अभी क्या उसी तरह से हमको सिलेक्शन करना चाहिए, चुनाव करना चाहिए ताकि आपकी जो आगे फिर से आपको बीज की जरूरत ना पड़े या फिर हमको बाजार में नहीं जाना, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है कि खेत में फसल लगी हुई है उसको आप परिवार के साथ जाकर उसको देखें ताकि इससे एक प्रभाव और होगा कि आप बच्चों को भी साथ लेकर जाएंगे तो वो भी किस तरह से आप उसका संरक्षण कर रहे हो, निरीक्षण कर रहे हो, वो लोग चीजें समझते हैं।
0: बिल्कुल।
1: दूसरा कि कीट दिखाई अगर दे रहा है तो आपने तुरंत उस पर कुछ छिड़कने की कोशिश ना करें,
0: बिल्कुल,
1: पहले उसको अच्छे से जाने पहचाने क्या प्रकोप है, कौन सी दवा उसमें काम करेगी, कैसे करेगी, वो जरूर। इसके बाद में जो खरपतवार है जिसमें हमने बोला है कि उसका नियंत्रण है वो आप सोच समझ के रखें ताकि उसकी जो पैदावार है उसको प्रभावित ना करें।
0: बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आपने कार्यक्रम में बताया हमारे श्रोता साथियों को कि खरीफ की जो फसल अभी के समय में है उसका ध्यान उन्हें कैसे रखना है और किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान देते हुए उन्हें अपने उत्पादन को बनाए रखना है,
1: जी,
0: तो बात

0: ढेर सारी हो गई हैं, तो अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: जी, तो मैं सभी को ये संदेश देना चाहूंगा कि खरीफ की फसल की जो अंतिम अवस्था है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो वर्तमान की फसल को बचाने का समय है। तो आप जो है बल्कि अपने जो मौसम है, नींव है, तो उसकी जो आने वाली फसल की नींव भी आप रखने वाले और इसको बचाना भी है।
0: बिल्कुल।
1: तो बहुत सोच समझ के जो है आप लोग अपना खेत का निरीक्षण करें, उसकी अवस्था को जाने और अच्छे पैदावार के लिए फसल का संरक्षण करें।
0: बिल्कुल। तो सर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: जी, धन्यवाद।
0: भाई बोनो, जिम की अवडे आपड़े वैसे में मांगीलाल जी जुड़े तक हता ने एणे आपड़ा ने घणी असल तरीका ते की घणा आकानी वाते बताड़ी है। आशा करो हो कि आ हंगरी वाते आपने गमी होंगा, क्योंकि अभी टाइम थे गयो है आपड़े अणस कार्यक्रम तक की सूटा पड़वानो। तो सूटा तो पड़ा, पण साथे पहले हमरी लायक और गीत ने मोरे पड़ो सूटा।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है सही जानकारी, जागरूक नागरिक और मजबूत लोकतंत्र को लेकर। अंजलि, लोकतंत्र केवल चुनाव के दिन मतदान करने का नाम नहीं है। लोकतंत्र की असली ताकत एक ऐसे नागरिक में होती है जो अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझता है, सही जानकारी प्राप्त करता है और किसी भी बात को बिना जांचे परखे आगे नहीं बढ़ता।
0: बिल्कुल,
1: आज के समय में हमारे हाथ में मोबाइल फोन है, इंटरनेट है और कुछ ही सेकंड में देश दुनिया की खबरें हमारे सामने आ जाती है। लेकिन जानकारी की ये तेजी अपने साथ एक चुनौती भी लेकर आती है, सही और गलत जानकारी में अंतर करना।
0: बिल्कुल,
1: किसी भी समाज में गलत सूचना भ्रम पैदा कर सकती है श्रोताओं, लोगों के बीच अविश्वास बढ़ा सकती है और सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकती है। इसके विपरीत हम देखते हैं अंजलि कि तथ्यपूर्ण और विश्वसनीय जानकारी नागरिकों को समझदारी से निर्णय लेने में मदद करती है। इसलिए कहा जा सकता है कि सही जानकारी जागरूक नागरिक की पहचान है और जागरूक नागरिक मजबूत लोकतंत्र की नींव है।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी कार्यक्रम में इस विषय पर हम ढेर सारी बातों को जानेंगे, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था और बातें भी रही थी कि हमारा विषय है सही जानकारी, जागरूक नागरिक और मजबूत लोकतंत्र को लेकर।
1: बिल्कुल, तो यही बात करें कि सही जानकारी क्यों जरूरी है। तो श्रोता साथियों, हम अपने दैनिक जीवन में अनेक निर्णय जानकारी के आधार पर लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: खेती से जुड़ा निर्णय हो, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हो, शिक्षा का विषय हो या सरकारी योजना का लाभ लेना हो, सही जानकारी आवश्यक है। क्योंकि जागृति जी, यदि किसी किसान को मौसम, फल, बीज या सरकारी सहायता से संबंधित गलत जानकारी मिल जाए तो उसका नुकसान हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: इसी तरह स्वास्थ्य से जुड़ी अफवाह किसी व्यक्ति को गलत कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकती है। इसलिए जानकारी प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी विश्वसनीयता से जांच करना भी जरूरी है। क्योंकि सही जानकारी हमें तथ्यों को समझने, सवाल पूछने और अपने निर्णय स्वयं लेने की क्षमता भी देती है।
0: बिल्कुल अंजलि, जागरूक नागरिक वो है जो केवल अपने अधिकारों की बात नहीं करता, बल्कि अपने कर्तव्य को भी समझता है। वो समाज और देश से जुड़े विषयों में रुचि रखता है, कानून और नियमों का सम्मान करता है और दूसरों के अधिकारों का भी ध्यान रखता है। श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कहना चाहेंगे कि जागरूक नागरिक वो है जो अपने अधिकारों और कर्तव्य को समझता है, मतदान के महत्व को जानता है, सरकारी योजना और सार्वजनिक सेवाओं की जानकारी प्राप्त करता है, अफवाहों पर तुरंत विश्वास करता, सूचना के स्रोत की जांच करता है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करता है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जिम्मेदार रहता है, जाति, भाषा, क्षेत्र या किसी अन्य आधार पर भेदभाव से बचता है, समाज में शांति और भाईचारे को बढ़ावा देता है, अपनी बात के साथ दूसरों की बात सुनने का भी सम्मान करता है। ऐसे नागरिकों की सक्रिय भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आज हम देखते हैं कि सोशल मीडिया सूचना का बड़ा माध्यम बन चुका है।
0: बिल्कुल,
1: कोई संदेश, वीडियो या तस्वीर कुछ ही समय में हजारों लोगों तक पहुंच सकती है। यही कारण है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय नागरिक की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हमें किसी भी संदेश को केवल श्रोता साथियों इसलिए सही नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि वह किसी परिचित व्यक्ति ने भेजा है। किसी समाचार या दावे को आगे भेजने से पहले ये जरूर देखें कि वह जानकारी किस स्रोत से आई है, कब की है और क्या किसी विश्वसनीय माध्यम से उसकी पुष्टि हुई है। पहले जांचें, फिर माने, उसके बाद ही साझा करें, क्योंकि यह डिजिटल नागरिकता का महत्वपूर्ण सिद्धांत हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि गलत जानकारी को आगे बढ़ाना केवल एक छोटी गलती नहीं होती है, इससे किसी व्यक्ति, संस्था, समुदाय के बारे में गलत धारणा बन सकती है। इसलिए जिम्मेदार नागरिक सोशल मीडिया पर भी सोच समझकर व्यवहार करता है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि लोकतंत्र नागरिकों को कई अधिकार देता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा, सूचना और अन्य लोकतांत्रिक अधिकार नागरिकों को सशक्त बनाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अधिकारों के साथ कर्तव्यों की समझ भी जरूर रखते हैं। अपनी बात रखना हमारा अधिकार हो सकता है श्रोताओं, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति का अपमान करना या जानबूझकर गलत सूचना फैलाना जिम्मेदार नागरिकता नहीं है। इसी तरह हमें अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन साथ ही कानून का पालन, सार्वजनिक व्यवस्था का सम्मान और समाज के प्रति जिम्मेदारी को भी समझना होगा।
1: जी हाँ, क्योंकि हम देखते हैं जागृति जी कि लोकतंत्र में अलग अलग विचार होना स्वाभाविक हो सकता है। हर व्यक्ति किसी विषय को अपने अनुभव और समझ के आधार पर अलग तरीके से देख सकता है। मजबूत लोकतंत्र में विचारों की विविधता के लिए स्थान होते हैं। जागरूक नागरिक असहमति को दुश्मनी नहीं समझता, वो अपनी तर्क और तथ्यों के आधार पर रखता है और दूसरे व्यक्ति की बात सुनने का प्रयास करता है। इसलिए संवाद लोकतंत्र को जोड़ता है, जबकि अफवाह और गलत जानकारी समाज में दूरी बढ़ा सकती है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि गांव की ग्राम सभा से लेकर बड़े लोकतांत्रिक संस्थानों तक लोगों की भागीदारी और संवाद लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। जब नागरिक सवाल पूछते हैं, सुझाव देते हैं और जागृति जी सार्वजनिक विषयों पर चर्चा करते हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था अधिक सहभागी बनती है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि लोकतंत्र की शुरुआत हमारे आसपास के समाज से होती है। गांव में ग्राम सभा जैसी व्यवस्थाएं लोगों को स्थानीय विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा और भागीदारी का अवसर देती है। सड़क, पानी, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सार्वजनिक संसाधन और विकास कार्यों से जुड़े विषयों की जानकारी रखना गांव के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है। कह सकते हैं कि एक जागरूक ग्रामीण नागरिक यह जानने का प्रयास करता है कि उसके गांव में कौन से विकास कार्य हो रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य है और उपलब्ध जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं उनका उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। जब गांव के लोग जानकारी के साथ अपनी बात रखते हैं तो श्रोता साथियों सामूहिक रूप से समस्याओं पर चर्चा करते हैं, तो स्थानीय लोकतंत्र मजबूत हो पाता है।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें निरंतर चल रही है, तो बातें आगे भी चलती रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि जागृति जी गीत से पहले हम जान पाए कि सही जानकारी, जागरूक नागरिक और मजबूत लोकतंत्र क्या है और उसका क्या महत्व है।
1: बिल्कुल अंजलि, यही जानते हैं युवाओं की भूमिका को लेकर। युवा किसी भी समाज की महत्वपूर्ण शक्ति है। आज युवा तकनीक से जुड़े हैं और तेजी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि युवाओं के लिए डिजिटल साक्षरता और तथ्य जांच की समझ बहुत आवश्यक है। अंजलि, अगर युवा सोशल मीडिया का उपयोग सकारात्मक जानकारी, शिक्षा, रोजगार, नवाचार और सामाजिक जागरूकता के लिए करेंगे तो वे समाज में अपना बड़ा योगदान दे सकते हैं। युवाओं को भी समझना होगा कि हर वायरल चीज सही नहीं होती और हर आकर्षक संदेश तथ्यपूर्ण नहीं होता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होगी।
1: बिल्कुल,
0: महिलाओं को अपने अधिकारों, सरकारी योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसरों की जानकारी होना बहुत जरूरी है और ये जो जानकारी होती है वो उन्हें अधिक सशक्त बनाती है।
1: बिल्कुल,
0: जब महिलाएं परिवार और समाज से जुड़े तो निर्णय में अपनी बात रख पाती हैं और सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेती हैं तो लोकतांत्रिक भागीदारी का दायरा भी बढ़ पाता है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने में सामुदायिक रेडियो अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। स्थानीय भाषा और स्थानीय संदर्भ में प्रसारित जानकारी लोगों तक आसानी से पहुंचती है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, मौसम, सरकारी योजनाएं, स्थानीय समस्या और सामाजिक जागरूकता, ये सारे विषयों पर विश्वसनीय जानकारी लोगों को अपने निर्णय बेहतर तरीके से लेने में मदद कर सकती है। श्रोताओं, सामुदायिक रेडियो केवल सूचना देने का माध्यम नहीं है बल्कि समुदाय की आवाज को सामने लाने का माध्यम भी बन सकता है।
0: बिल्कुल,
1: और बन भी रहा है। जब स्थानीय लोग अपनी समस्या अनुभव साझा करते हैं अंजलि, तो संवाद और सहभागिता मजबूत होती है। अफवाहें अक्सर अधूरी या बिना प्रमाण वाली जानकारी से जन्म लेती है। कभी कभी एक छोटी सी गलत बात कई लोगों तक पहुंचते पहुंचते बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। इसीलिए श्रोताओं, हमें कुछ सरल बातें याद रखनी होगी। रुके, स्रोत देखें, तथ्य को जांचें, समझें और फिर साझा करें। अगर किसी जानकारी से डर, नफरत या भ्रम पैदा हो रहा है तो उसे बिना पुष्टि के आगे बढ़ाने के बजाय विश्वसनीय स्रोत से जांच कराना भी जरूरी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है। सही और गलत जानकारी में अंतर करना भी एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, एक शिक्षित और जागरूक नागरिक सवाल पूछता है, यह जानकारी कहाँ से आई है? क्या इसके पीछे कोई प्रमाण है? क्या अन्य विश्वसनीय स्रोत में यही बात कह रहे हैं? ऐसी सोच जागृति जी केवल जानकारी का उपभोक्ता व्यक्ति को नहीं बनाती बल्कि जिम्मेदार सूचना उपयोगकर्ता भी बनाती है।
1: बिल्कुल,
0: यही बात करें कि लोकतंत्र को मजबूत करने के क्या प्रयास हैं जो हम कर सकते हैं, तो श्रोता साथियों, हम हमेशा कहते हैं कि बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ हमारे रोजमर्रा के छोटे व्यवहार में परिवर्तन लाने की जरूरत है। सही जानकारी साझा करना, मतदान के महत्व को समझना, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता रखना, नियमों का पालन करना, ग्राम सभा और स्थानीय बैठकों में भाग लेना, दूसरों की बात सुनना और अफवाहों से बचना, ये सभी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी के उदाहरण हैं। जब लाखों नागरिक अपने छोटे छोटे कर्तव्यों को जिम्मेदारी से निभाएंगे जागृति जी, तब लोकतंत्र की नींव मजबूत हो सकती है।
1: जी हाँ अंजलि, लोकतंत्र केवल संस्थाओं से नहीं चलता बल्कि नागरिकों की जागरूकता और भागीदारी से मजबूत होता है। सही जानकारी नागरिकों को समझ देती है, समझ उसे जागरूक बनाती है और जागरूक नागरिक लोकतंत्र को मजबूत करता है। इसलिए श्रोताओं, आज आवश्यकता केवल अधिक जानकारी की नहीं बल्कि सही जानकारी की पहचान और जिम्मेदार उपयोग की है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी सूचना को बिना जांचे आगे नहीं बढ़ाए, अपने अधिकारों के साथ कर्तव्य को भी समझे, दूसरों के विचारों का सम्मान करे और समाज के हित में जिम्मेदारी से भागीदारी निभाए, क्योंकि सही जानकारी से जागरूक नागरिक बनता है, जागरूक नागरिक से जिम्मेदार समाज बनता है और जिम्मेदार समाज से मजबूत लोकतंत्र बनता है। कहना चाहेंगे कि जानकारी सही होगी, सोच जागरूक होगी तो लोकतंत्र की नींव और भी मजबूत बनेगी।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, इस तरीके से आज कार्यक्रम में

0: ने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से सही जानकारी, जागरूक नागरिक और मजबूत लोकतंत्र का निर्माण हो सकता है। आशा करते हैं कि सभी बातें श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: जी हाँ,

0: इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है हमारी परंपराओं की और हमारे अपने स्वास्थ्य से जुड़ी बातों। श्रोता साथियों, जरा सोचिए कि जब हम छोटे थे तब हमारे घरों में सुबह का नाश्ता क्या होता था। कहीं बाजरे की रोटी पर घर का बना घी लगाया जाता था, तो कहीं मक्के की रोटी के साथ छाछ पी जाती थी, कहीं ज्वार की रोटी और लहसुन की चटनी खाने को मिलती थी, तो कहीं रागी का दलिया बनता था, तो कहीं मक्का भूनकर बच्चों को दिया जाता था। उस समय शायद हम इन चीजों को मनीषा साधारण भोजन समझते थे।
0: जी हाँ,
1: हमें लगता था कि यह तो रोजमर्रा का खाना है, इसमें कौन सी खास बात है। लेकिन आज समय बदल गया है, हमारी थाली में कई तरीके के पैकेट वाले खाद्य पदार्थ, मैदा से बनी चीजें, मीठे पेय और जल्दी तैयार होने वाला जो खाना है वो हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। श्रोता साथियों, आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हमने कई बार अपने पारंपरिक भोजन को पीछे छोड़ दिया है।
0: बिल्कुल,
1: जिस बाजरे, ज्वार, मक्का और रागी को कभी हमारे घरों में बड़े चाव से खाया जाता था, आज उन्हीं अनाजों को दोबारा पहचानने और अपनाने की हमें जरूरत महसूस होती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं मोटे अनाज, परंपरागत भोजन और आधुनिक स्वास्थ्य को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं हमारे देश में भोजन की परंपरा बहुत पुरानी है। हमारे पूर्वज अपने आसपास उगने वाली चीजों को अपने भोजन का हिस्सा बनाते थे। उस समय श्रोता साथियों, आज की तरह बाजार में हर तरह के पैकेज्ड खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं थे। गांव में लोग खेतों में पैदा होने वाले अनाज, दाल, सब्जियां, फल और दूसरे प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का उपयोग करते थे। श्रोता साथियों, इन्हीं पारंपरिक खाद्य पदार्थों में एक महत्वपूर्ण स्थान था मोटे अनाज का।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं श्रोता साथियों कि बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का, कोदो, कुटकी, सागा और दूसरे जो अनाज होते हैं वे हमारे देश की पुरानी परंपरा का हिस्सा रहे हैं। इन्हें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और देश के कई हिस्सों में श्रोता साथियों इन्हीं अनाजों से रोटी, खिचड़ी, दलिया, लड्डू और कई तरह के पारंपरिक व्यंजन भी बनाए जाते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, उसी भोजन के गुणों को आधुनिक पोषण विज्ञान भी समझने और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। तो क्या श्रोता साथियों, हमारे दादा दादी और नाना नानी की रसोई में स्वास्थ्य का कोई ऐसा खजाना छिपा था जिसे हम आधुनिक जीवन की दौड़ में भूलते जा रहे हैं? क्या मोटे अनाज केवल पेट भरने का साधन है या ये हमारे शरीर को पोषण देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? क्या हम अपनी पुरानी खान पान की परंपराओं को आज के जीवन के साथ जोड़ सकते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब के साथ आज हम कार्यक्रम में ढेर सारी बातें जान रहे हैं कि किस तरीके से मोटे अनाज जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। मोटे अनाज जिन्हें आजकल मिलेट्स भी कहा जाता है, ऐसे अनाजों का समूह मनीषा जिनमें बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, सावा और अन्य छोटे अनाज शामिल होते हैं। मक्का भी हमारे पारंपरिक भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि श्रोता साथियों, पोषण की दृष्टि से उसे मिलेट्स के इस समूह से अलग अनाज माना जाता है।
0: जी हाँ,
1: हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में जलवायु, मिट्टी और खान पान की परंपराओं के अनुसार अलग अलग प्रकार के अनाज उगाए और खाए जाते हैं। जैसा कि मनीषा आपने बताया, राजस्थान के शुष्क इलाकों में बाजरा लंबे समय से लोगों के भोजन की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा है। वहीं हमारे वागड़ क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की मिट्टी, मौसम, खेती और ग्रामीण जीवन का भोजन जो है वो उससे उनका बहुत ही गहरा रिश्ता है।
0: बिल्कुल,
1: यहाँ घरों में बनने वाली मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी, दाल, छाछ, मौसमी सब्जियां और स्थानीय तरीके से तैयार किए जाने वाले खाद्य पदार्थ केवल भोजन नहीं होते बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही जीवन शैली का हिस्सा है। पहले के समय में लोगों का भोजन काफी हद तक स्थानीय खेती पर निर्भर करता था।
0: जी हाँ।
1: खेत में जो अनाज पैदा होता घर में उसी से भोजन तैयार होता था। फसल कटने के बाद अनाज को सुरक्षित रखा जाता था और जरूरत के अनुसार उसका उपयोग किया जाता था।
0: जी हाँ।
1: घर की महिलाएं अनाज को साफ करती, पीसती, आटा तैयार करती और परिवार के लिए अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाती थी। उस समय भोजन का संबंध केवल स्वाद से नहीं था, मौसम के अनुसार भोजन बदलता था। सर्दियों में बाजरे की रोटी और गर्म तासीर वाले पारंपरिक व्यंजन पसंद किए जाते थे। गर्मी में छाछ, दही, स्थानीय पेय, हल्का भोजन अधिक लिया जाता था।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं। तो ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से मोटा अनाज जो है वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, यही बात करें तो श्रोता साथियों, मोटा अनाज जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हमने बाजरा, कोदो और कई सारे जो मोटे अनाज होते हैं उनके बारे में जाना। यही बात करें तो श्रोता साथियों, घर में उपलब्ध और मौसम के अनुसार मिलने वाला जो अनाज, फल, सब्जियां, दालें इस्तेमाल हम करते हैं वो बाजार के महंगे खाद्य पदार्थों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हम देखते हैं कि मोटे अनाजों को साफ सुथरे तरीके से हमें रखना चाहिए, उनमें नमी नहीं आने देना चाहिए, आटे को बहुत लंबे समय तक खुला नहीं रखना है और जहाँ संभव हो जरूरत के अनुसार ताजा आटा पिसवाना चाहिए। अनाज को अच्छी तरह पकाकर खाएं। बहुत अधिक तेल, घी, नमक, चीनी डालने से किसी भी पौष्टिक खाद्य पदार्थ का संतुलन बिगड़ सकता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए श्रोता साथी, व्यंजन तैयार करते समय मात्रा और पकाने के तरीके का भी ध्यान रखें। यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का रोग या कोई समस्या है तो उसके लिए हमें विशेषज्ञ से सलाह लेने की जरूरत है, फिर ही इन सारी चीजों का हम किस तरीके से, किस समय और कितनी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी अनुसार हमें इस्तेमाल करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं श्रोता साथियों कि मोटे अनाज में फाइबर पाया जाता है। फाइबर युक्त भोजन पाचन तंत्र के सामान्य स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है।
0: बिल्कुल।
1: जब श्रोता साथियों भोजन में पर्याप्त फाइबर होता है तो आहार संतुलित बनने में मदद मिलती है, लेकिन फाइबर बढ़ाने के साथ पानी की पर्याप्त मात्रा भी बहुत जरूरी होती है। यदि श्रोता साथियों कोई व्यक्ति अचानक बहुत अधिक फाइबर वाला भोजन शुरू कर देता है तो कुछ लोगों को पेट में गैस या भारीपन जैसी परेशानियां हो सकती हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए श्रोता साथियों भोजन में बदलाव धीरे धीरे करना हमारे लिए बेहतर होता है। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि भोजन को हमें अच्छी तरह से चबा कर खाना है।
0: बिल्कुल। इसी के साथ श्रोता साथियों, आज हम देखते हैं कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में आजकल हर घर में हमें देखने को मिल जाता है। इस स्थिति में शरीर रक्त में मौजूद ग्लूकोज यानी शर्करा को सामान्य रूप से नियंत्रित नहीं कर पाता। ऐसे में भोजन का चुनाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम जो भी अनाज खाते हैं उसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट पाचन के दौरान टूटकर ग्लूकोज में बदल सकते हैं। इसलिए यह समझना गलत होगा कि मोटे अनाज खाने से रक्त शर्करा बिल्कुल नहीं बढ़ती, लेकिन साबुत अनाजों में मौजूद फाइबर और उसकी संरचना भोजन के पाचन और ग्लूकोज के अवशोषण की गति को प्रभावित कर सकती है। कुछ मोटे अनाज और उनसे बने कम संसाधनीय खाद्य पदार्थ संतुलित भोजन का हिस्सा बनकर रक्त शर्करा के प्रबंधन में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मनीषा, कोई व्यक्ति केवल बहुत अधिक मात्रा में रोटी खाता है तो उसके भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है वो अधिक हो सकती है, लेकिन यदि वह उचित मात्रा में रोटी के साथ दाल, सब्जी, सलाद भी लेता है तो भोजन

0: में पोषण की विविधता बढ़ती है। मधुमेह से पीड़ित जो व्यक्ति है उसे बाजरा, ज्वार, रागी को अपने जरूरत के अनुसार भोजन में शामिल करना चाहिए, लेकिन अनाज की मात्रा और उसे तैयार करने का तरीका भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज पूरी दुनिया में पानी और पर्यावरण को लेकर चिंता भी बढ़ रही है। ऐसे समय में श्रोता साथियों, ऐसी फसलों पर ध्यान देना हमारे लिए बहुत जरूरी है जिन्हें स्थानीय परिस्थितियों में उगाना आसान होता है। कई मोटे अनाज कम पानी में भी उगाए जा सकते हैं और कठिन मौसम सहन करने की क्षमता भी रखते हैं। इस कारण श्रोता साथियों, मोटे अनाज को टिकाऊ खेती और स्थानीय खाद्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जाता है। जब हम स्थानीय अनाज खाते हैं तो हमें अपने क्षेत्र की कृषि, पारंपरिक भोजन के बारे में जानने का अवसर भी मिलता है।
0: बिल्कुल मनीषा, हमारे शरीर को मजबूत बनाए रखने में हड्डियों और दांतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हड्डियों का विकास बचपन से शुरू होकर किशोरावस्था और वयस्क जीवन तक जारी रहता है। उम्र बढ़ने के साथ में भी हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखना बहुत जरूरी है। हड्डियों की मजबूती के लिए हमें कैल्शियम, विटामिन डी, महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही पर्याप्त प्रोटीन, शारीरिक गतिविधियां और धूप से मिलने वाला विटामिन डी भी महत्वपूर्ण होता है। रागी यानी कि नाचनी, इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसे भोजन में शामिल करना कैल्शियम के सेवन को बढ़ाने का एक उपयोगी तरीका हो सकता है। रागी से दलिया, रोटी, चिल्ला और कई तरीके के अलग अलग व्यंजन बनाकर हम खुद और बच्चों को भी खिला सकते हैं। यही अब बात करें तो महिलाओं में खून की कमी और मोटे अनाज का क्या योगदान है, तो श्रोता साथियों, हमारे समाज में महिलाओं का स्वास्थ्य परिवार और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कई बार महिलाएं घर के काम, बच्चों की देखभाल और रोजगार की जिम्मेदारी के बीच में अपने भोजन को पीछे छोड़ देती हैं। महिलाओं में एनीमिया यानी कि खून की कमी एक महत्वपूर्ण पोषण संबंधित समस्या है। एनीमिया में शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम हो सकती है, इसके कारण कई स्वास्थ्य समस्याएं उन्हें होती हैं। इसके लिए अगर वे भोजन में बाजरे और अन्य जो दालें हैं, चना है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, विटामिन सी से भरपूर जो खाद्य पदार्थ हैं जैसे कि नींबू, अमरूद, आंवला, इनको अगर शामिल करें तो हम देखेंगे कि महिलाएं इस समस्या से बच सकती हैं। इसी के साथ मोटे अनाज को खाने से हम देखते हैं कि हमारे स्वास्थ्य पर कई सारे लाभ हैं, लेकिन सावधानी भी बहुत जरूरी है। मोटे अनाज को अपने रोजमर्रा के भोजन में किस तरीके से शामिल किया जाए ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बाजरे की रोटी के साथ दाल, हरी सब्जी, ज्वार की रोटी के साथ दही, रागी का दलिया और मक्का के साथ दाल और अन्य प्रोटीन स्रोत, ये सभी भोजन में विविधता लाने के उदाहरण हैं। अनाज को अच्छी तरह साफ करके पका कर खाना चाहिए, आटे को नमी से बचा कर रखना चाहिए और उसमें फफूंद या खराब गंध आने पर उसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हम हमारे स्वास्थ्य को सही भी बनाकर रख सकते हैं और ये जो मोटे अनाज हमारी थाली से दूर हो गए हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, फिर से हमें उन्हें हमारी थाली का हिस्सा बनाना होगा।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दे।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी।
1: बिल्कुल।
0: आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपनी राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। जी हां दोस्तों, लेकर हाजिर हो चुकी हूं कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर एक नए विषय के साथ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कार्यक्रम में जब भी हाजिर होते हैं तो आपसे बातचीत करते हैं एक नए विषय को लेकर। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय हमारे बीच जुड़ रहा है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हर दिन 1% बेहतर बनने की आदत को लेकर। साथियों, जानेंगे कि किस प्रकार से हम हर दिन खुद को बेहतर बना सकते हैं और इसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं। तो बातें ढेर सारी होंगी इस विषय को लेकर, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है। तो आइए साथियों, पहले सुनते हैं यहाँ पर एक प्यारा सा गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में और सुनते रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

दोस्तों, गीत तो यहाँ पर पूरा हो गया और इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान में जब भी हमारी आपसे बातें होती हैं, तो हम उन सपनों की, उन आंखों में पलते हुए हौसलों की बात करते हैं श्रोता साथियों, जो हमारी पूरी जिंदगी को बदल देती है। और आज के इस कार्यक्रम में विषय भी काफी हमारा रोचक है। हम बात कर रहे हैं कि हर दिन हम खुद को बेहतर बना कैसे सकते हैं और इसकी शुरुआत हम 1% से कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए हर दिन कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? थोड़ा मुश्किल होगा साथियों। अगर मैं कहूं कि आपको एक ही दिन में अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ने की जरूरत नहीं है, एक ही दिन में बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल करने की भी जरूरत आपको नहीं है, एक ही दिन में साथियों अपनी पूरी जिंदगी आपको बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको बस इतना करना है कि आज के अपने आप से कल का अपना आप थोड़ा आपको बेहतर बनाना है, और वो है बस 1%। हाँ दोस्तों, सिर्फ 1% बेहतर बनने की शुरुआत हम एक दिन में कर सकते हैं। और शायद आपको सुनकर ये लग सकता है कि 1% तो काफी छोटी चीज है, इससे भला जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि बड़े बदलाव अक्सर छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। एक दिन में कोई व्यक्ति महान नहीं बनता, एक दिन में कोई शानदार विद्यार्थी भी नहीं बनता, एक दिन में तो साथियों कोई कुशल खिलाड़ी भी नहीं बनता है, और एक दिन में कोई सफल उद्यमी भी नहीं बनता। इन सभी चीजों के पीछे होते हैं सैकड़ों छोटे प्रयास, हजारों छोटे फैसले और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की आदत। जी हाँ, तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उसी छोटी आदत की जो देखने में तो छोटी है, लेकिन अगर जीवन में उतर जाए साथियों तो बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। वो आदत है हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाने की आदत। दोस्तों, अक्सर हम अपनी जिंदगी बदलने के लिए बहुत बड़े बड़े संकल्प लेते हैं। हम नए साल पर कहते हैं कि अब सब कुछ बदल जाएगा, कल से सुबह जल्दी उठूंगा, कल से पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगा, कल से मोबाइल कम चलाऊंगा, कल से व्यायाम करूंगा।

0: से कुछ नई स्किल्स सीखूंगा, कल से समय बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, वही पुरानी दिनचर्या, वही काम टालम टोल वाले और वही कल से शुरू करने की आदत। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि साथियों, हमने बदलाव को बहुत बड़ा बना दिया है। हमने सोचा है कि बदलना है तो पूरी तरह बदलना है, लेकिन जिंदगी हमेशा ऐसे नहीं बदलती। कई बार जिंदगी बदलने का सबसे अच्छा तरीका होता है छोटे से शुरुआत करना। अगर आप अभी रोज 5 घंटे पढ़ाई नहीं कर पाते, तो अचानक 5 घंटे बैठने का लक्ष्य रखने के बजाय शुरुआत थोड़े समय से आप करिए, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाइए। अगर आपको किताब पढ़ने की आदत नहीं है, तो पूरी किताब खत्म करने का दबाव मत बनाइए, रोज कुछ पन्ने पढ़िए। अगर आपको लगता है कि आप मोबाइल पर बहुत समय बिताते हैं, तो एकदम से मोबाइल छोड़ने की बजाय आपको अपने अनावश्यक स्क्रीन टाइम को थोड़ा थोड़ा कम कर देना होगा। अगर आपको कोई नई भाषा सीखनी है या फिर कोई तकनीक कौशल सीखना है, बोलने का आत्मविश्वास बढ़ाना है या अपने क्षेत्र से जुड़ा कोई ज्ञान हासिल करना है, तो इन सभी बातों में ये मत सोचिए कि मुझे सब कुछ एक साथ ही सीखना है। ये सोचिए इसके विपरीत कि आज मैं कल से थोड़ा बेहतर क्या सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ। यही सोच साथियों धीरे धीरे आदत बन जाएगी और आदत धीरे धीरे हमारा व्यक्तित्व बनाएगी। तो इस तरीके से, जैसा कि कार्यक्रम में मैं आपसे ढेर सारी बातें कर ही रही हूँ, हर दिन 1% खुद को बेहतर बनाने की आदत को लेकर, तो ये बातें आगे भी चलती रहेंगी। लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं यहाँ पर एक और गीत के साथ में। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से रुक करती हूँ कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि बातें बहुत अच्छी चल रही थी 1% खुद को रोजाना बेहतर बनाने की, और गीत से पहले मैंने आपको बताया था श्रोता साथियों कि हमें शुरुआत थोड़े थोड़े करनी होगी। अगर हम किसी कार्य को छोड़ना चाहते हैं तो हम उसे अगर एकदम से छोड़ेंगे तो वो हमारे लिए उचित नहीं होगा साथियों। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके उस कार्य को छोड़ने की आदत बनानी होगी। अब यही बात करूं कि 1% का मतलब क्या है, तो दोस्तों हर दिन 1% बेहतर बनने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर दिन कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करनी ही होगी। ऐसा नहीं है कि आज आपने 10 पन्ने पढ़े हैं तो कल 20 पन्ने पढ़ने ही होंगे। कभी आपका दिन अच्छा होगा, कभी आपका दिन मुश्किल होगा, कभी आपके पास समय ज्यादा होगा तो कभी परिस्थितियां आपके साथ नहीं होंगी। ऐसे में 1% बेहतर बनने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप खुद को पूरी तरह नहीं छोड़ें। आज अगर आपने किसी गलती को पहचाना है तो ये भी सुधार है। आज अगर आपने किसी काम को कल से थोड़ा बेहतर किया है दोस्तों, तो ये भी एक सुधार है। अगर आज आपने अपनी टालमटोल पर थोड़ा नियंत्रण किया है तो ये भी आपके लिए एक सुधार का ही कार्य है। आज अगर आपने किसी अच्छे व्यक्ति से बात की है तो ये भी एक सुधार का ही तरीका है। क्योंकि श्रोता साथियों, विकास हमेशा दिखाई नहीं देता, कई बार बदलाव बहुत शांत तरीके से होता है, जैसे कि पेड़ का बढ़ना। हम किसी पेड़ को देखकर ये नहीं कह सकते दोस्तों कि आज सुबह से इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ गई, लेकिन जब हम उसे महीनों बाद देखेंगे तब वो पेड़ हमें बड़ा दिखाई देगा। तब हमें समझ आता है कि हर दिन कुछ न कुछ बदल रहा था। इंसान का विकास भी कुछ ऐसा ही है। रोजाना होने वाले बदलाव को हम नहीं देख पाते, लेकिन जब लंबे समय के बाद एक नया बदलाव आता है तो हम उसे अच्छी तरीके से महसूस कर पाते हैं और समझ पाते हैं साथियों। जैसे कि कल्पना कीजिए कि दो युवा हैं, दोनों के सपने बड़े हैं, दोनों कुछ हासिल करना चाहते हैं और दोनों के पास लगभग सामान्य ही समय है। ऐसे में पहला युवा सोचता है, जब सही समय आएगा तब मैं पूरी तरह मेहनत करूँगा। वहीं दूसरा युवा सोचता है कि मैं सही समय का इंतजार क्यों करूँ, आज जितना कर सकता हूँ उतना कर लेता हूँ। साथियों, पहला युवा सही समय का इंतजार करता रहता है और दूसरा युवा रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहता है। कुछ दिनों तक दोनों में शायद कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, लेकिन कुछ महीनों बाद हम खुद ही देखेंगे कि फर्क नजर आएगा। फिर हमें पता चलेगा कि जो पहला युवा था वो सही समय का इंतजार करता रहेगा, लेकिन दूसरा युवा, उसके पास अनुभव है, जानकारी है, बेहतर आदतें हैं और काम करने की क्षमता भी है। और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर भरोसा होगा कि मैं लगातार आगे बढ़ सकता हूँ। और दोस्तों, यही है छोटे सुधार की ताकत। आज की दुनिया बहुत तेज है, हम चाहते हैं कि मेहनत का परिणाम हमें तुरंत मिले। हमने 1 सप्ताह पढ़ाई की तो परिणाम चाहिए, हमने कुछ दिन कोई स्किल सीखी तो हम विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, हमने कुछ दिन तक अभ्यास किया तो हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन प्रकृति हमें एक अलग कहानी सिखाती है, और वो ये कि बीज बोने के बाद फसल के लिए समय चाहिए होता है, मिट्टी तैयार करने के बाद पौधे को बढ़ने के लिए भी समय चाहिए होता है, और इंसान को भी अपने भीतर बदलाव लाने के लिए समय चाहिए होता है। इसलिए साथियों, अगर आपने आज शुरुआत की है और आपको तुरंत परिणाम नहीं दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। हो सकता है कि बदलाव अभी जमीन के नीचे हो रहा हो, जैसे बीज पहले मिट्टी के अंदर जड़े बनाता है और उसके बाद बाहर दिखाई देता है, वैसे ही हमारी मेहनत भी पहले हमारे भीतर बदलाव लाती है, फिर हमारी सोच बदलती है, फिर हमारी आदत बदलती है, फिर हमारा व्यवहार बदलता है और आखिर में परिणाम हमारे सामने ही होता है श्रोता साथियों। तो इसलिए कार्यक्रम के माध्यम से आपसे यही कहना चाहूंगी कि आज से अपनी जिंदगी को एक प्रतियोगिता की तरह मत देखिए। आप हर दिन खुद को थोड़ा समझिए, थोड़ा सीखिए, थोड़ा सुधारिए और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाइए। और किसी दिन अगर आप 1% ही बेहतर बन पाए तो भी उसे छोटा मत समझिए, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक कदम से सफर पूरा होता है और एक एक ईंट से घर बनता है दोस्तों, और एक एक दिन की मेहनत से हमारा भविष्य संवरता है। इसलिए आप अपने सपनों को बड़ा रखिए, शुरुआत छोटी रखिए, कदम लगातार बढ़ाते रहिए और खुद से बस इतना वादा कीजिए कि मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करूंगा, थोड़ा बढ़ूंगा। कल के अपने आप से बेहतर बनने की इसी सकारात्मक संदेश के साथ श्रोता साथियों, अब मैं कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी।
क्योंकि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का और बातें भी हमारी आपसे ढेर सारी हो चुकी हैं। तो विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं यहाँ पर एक और गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

श्रोता साथियों, किसी ने सही कहा है कि चलते रहोगे तो रास्ता मिलेगा, कोशिश करोगे तो अवसर मिलेगा। आज का छोटा सुधार ही कल सफलता का मुकाम बनेगा। सपनों की उड़ान वही बढ़ता है जो रोज अपने पंख मजबूत करता है। छोटी कोशिशों का सिलसिला ही इंसान को बड़ा बनाता है। साथियों, इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ साथियों कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग की प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

भाई बोनो, घर के निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, ने सोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित्ती जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

इसकी ट्रांसलेशन कर दूं, उनके जमाल रुख पे, उनके रोशन चेहरे पे, जमाल रुख रोशन चेहरा, उनके जमाल रुख पे उन्हीं का जमाल था, उनके रोशन चेहरे पे उन्हीं की

तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को कैसे लगी, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता ही वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज की सभा से जाने की। आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को इसी अनुमति के साथ नमस्कार।